0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: जिस प्रकार एक मोमबत्ती बिना आग के नहीं जल सकती, उसी प्रकार व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन के बिना अधूरा है। ये कहना है भगवान गौतम बुद्ध का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा, सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान,

दरवाजा जांचे। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हर कोई कहता है कि ईश्वर नजर नहीं आता, लेकिन सच तो ये है कि संकट के समय कोई साथ नहीं देता, तब किसी न किसी रूप में भगवान ही साथ देता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: से शुक्र करूं तेरी रहमतों का ऐ खुदा, मुझे मांगने का सलीका नहीं है पर तू देने की हर अदा जानता है। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा।
1: This is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda. Yeah.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: कम एंड एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट व्हिच मेक्स यू इंडस्ट्री रेडी।
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: सो वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा University।
5: Solo Sharda।
6: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
8: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
9: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
5: सुनो शारदा।
10: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते यहाँ से वो सारी बातें हम आप तक पहुँचाते हैं जो आप सुनना समझना चाहते हैं कि एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन क्या काम करता है, किन किन विषयों पर काम करता है। जाहिर सी बात है कि हम हेल्थ पर बात करते हैं, एजुकेशन पर बात करते हैं, लेकिन आज एक ऐसा सब्जेक्ट है जिस पर हम बात करने जा रहे हैं। प्रकृति के बारे में हम बात करेंगे, वन्य जीवों के बारे में बात करेंगे, इनकी देखभाल किस तरीके से हम कर रहे हैं या कोई शख्स कैसे कर सकता है। मुझे लगता है कि जो इनके आसपास रहता है वो बेहतर तरीके से बता सकते हैं इन सारी चीजों के बारे में। मेरे साथ एक शख्सियत जुड़ रही हैं, उनके बारे में बताने से पहले मैं थोड़ा उनके बारे में आपको बताना चाहूंगा। आप IIM कलकत्ता के एलुमनाई रह चुके हैं, आपने मास्टर डिग्री कॉमर्स में हासिल की है रांची विश्वविद्यालय से, आपके पास 20 से अधिक वर्षों का अनुभव अलग अलग क्षेत्रों में आपने काम किया है, जैसे कि सोशल मीडिया, सोशल सेक्टर, और आप सिलिकॉन वैली फेलोशिप के विजेता रह चुके हैं। आप इको हीरोज कैंपेन के लिए नॉमिनेट किए जा चुके हैं और आपने कॉरपोरेट करियर को 2010 में अलविदा इसलिए कह दिया था क्योंकि आप अपने पैशन को जीना चाहते हैं। जी हाँ, हमारे साथ जुड़ रहे हैं growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
11: बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी, और इतना बढ़िया तरीके से आपने मेरा ये व्याख्या किया है, मैं बड़ा प्रभावित हूँ
10: सर। ये बहुत कम है, बहुत कम है। मुझे खुशी है इस बात की कि मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, एक नेचर लवर से बात कर पा रहा हूँ कि जो प्रकृति के बीच में जाकर नेचर का ख्याल रख रहे हैं, वन्य जीवों का ख्याल रख रहे हैं। तो सर एक बार पुनः बहुत बहुत दिल की गहराइयों से आपका स्वागत है।
11: जी शुक्रिया जी।
10: सर शुरुआत हम यहाँ से करना चाहेंगे, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि ये आप मुझे बताएं, मेरे श्रोताओं को बताएं कि growtrees.com के बारे में, इसके बारे में आप हमें बताएं।
11: जी बिल्कुल करें। सबसे पहले तो मैं आपके श्रोताओं को ये बताना चाहूंगा कि growtrees.com जो है एक सोशल इंटरप्राइज है, और ये आज लगभग 12 साल पहले वर्ल्ड एनवायरमेंट डे 5 जून 2010 को हमने चालू किया था। और जब चालू किए थे तो उस समय हमारा एक मकसद था, मकसद ये था कि हमने ये देखा कि उस वक्त मुझे आई एम श्योर कि आपके बहुत सारे श्रोता ऐसे भी होंगे जो 80s और 70s के दौर में 90s के दौर में ग्रीटिंग कार्ड दिया करते होंगे अपने दोस्तों को, अपने चाहने वाले को
12: जन्मदिन
11: से, नए साल से। तो हमारे बीच में उस समय आशीष हॉलमार्क की ग्रीटिंग कार्ड देने की प्रथा थी 80s-90s में उस टाइम पर। तो जब ये चालू किया गया इस 2010 में तो हमने सोचा कि क्या एक ऐसा कॉन्सेप्ट हम लाएं जहां हर व्यक्ति अपने खास दिनों को जो सेलिब्रेट करने के लिए जो ग्रीटिंग कार्ड या उसके बदले में जो फ्लावर के गुलदस्ते होते हैं, चॉकलेट बॉक्स होते हैं देते हैं, उसकी जगह में वृक्ष लगा करके, रियल पेड़ लगा कर, पौधे लगा करके उसको डेडिकेट करें गिफ्ट के रूप में।
12: क्या बात,
11: ये आइडिया था जिसको जिसको हम बहुत साधारण भाषा में अपने टैगलाइन में बोलते हैं ग्रीट विथ ट्रीज। तो ये जो कॉन्सेप्ट है ग्रीट विथ ट्रीज का कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट के साथ हमने चालू किया और हमने ये देखा कि अधिकांशतः, मतलब मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला होगा इतने साल के, जो हमने कहा 20 साल के करियर में
12: जी,
11: जो पेड़ से प्यार नहीं करता होगा। लेकिन मैंने जो ये देखा कि चैलेंज क्या है कि लोगों को ये नहीं पता कौन सा पौधा लगाना है, कहाँ लगाना है, कैसे लगाना है वगैरह वगैरह, है ना, टाइम नहीं है बिकॉज हर आदमी को लगता है कि कोई और देखभाल कर लेगा, कोई और पेड़ लगा देगा। तो ये चीजों को दूर करने के लिए हमने growtrees.com को चालू किया और आज 12 साल में हमने एक मकसद को काफी हद तक अचीव करने के लिए आगे बढ़े हैं। अभी तो पूरा हुआ नहीं है क्योंकि आज भी लोग जो है हर दिन अपने जन्मदिन पर अपने खास दिन का वृक्ष लगा कर सेलिब्रेट करने लगे हैं। ऐसा फिलहाल माहौल नहीं बना है, बन जरूर रहा है लेकिन बन नहीं गया। तो यही मॉडल है जिस पर हमने काम शुरू किया।
12: जी बहुत खूबसूरत सर, वाकई बहुत अच्छी बात आपने हमारे श्रोताओं को बताई। इस बात के लिए, इस प्रोजेक्ट के लिए, आपके लिए, आपकी संस्था के लिए बहुत दिल की गहराइयों से बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप मेरी बातों से समझ पा रहे होंगे कि मैं कितना खुश हूँ, एक पर्यावरण प्रेमी से मैं बात कर रहा हूँ जो कि पर्यावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज होता क्या है कि विक्रांत जी, एक पौधा मैंने लगा दिया, उसको सींच दिया, जब वो वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है, उस वट वृक्ष के नीचे एक गर्मी में, एक तपती गर्मी में बंदा आकर रुकता है, अपनी प्यास बुझाता है, छांव में बैठता है, बड़ी खुशी होती है कि मेरा एक पौधा आज बहुत बड़ा रूप उसने ले लिया है। तो सर अभी आप बातों में हमें बता रहे थे कि लोगों को ये थोड़ी जानकारी नहीं है कि कौन सा पौधा लगाना है, किस मौसम में लगाना है, किस मिट्टी में लगाना है, अगर इसके बारे में थोड़ा सा आप हमें बता पाएं।
11: जी, हमने इन्हीं सवालों को ध्यान रखते हुए, चैलेंजेस को ध्यान रखते हुए हमने तय किया कि growtrees.com भारत के विभिन्न राज्यों में काम करेगा और वहाँ की भौगोलिक स्थिति को, पर्यावरण को ध्यान रखते हुए, है ना, किसी भी प्रोजेक्ट्स को इनिशिएट करेगा, चालू करेगा। एग्जांपल के तौर पे समझाने के लिए, जैसे अभी जम्मू एंड कश्मीर में वृक्षारोपण का काम शुरू हो गया, गड्ढे लगना शुरू हो गए, है ना
12: जी,
11: वहाँ पौधे अभी लगेंगे। तो वहाँ पर जो हम पौधे लगा रहे हैं जम्मू एंड कश्मीर के हाई एल्टीट्यूड एरिया में, जहाँ पर ताशीकाम नेशनल पार्क है, ताशीकाम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताशीकाम नेशनल पार्क बोलते हैं, जहाँ पर हंगुल एक इंडेंजर्ड प्रजाति है। हंगुल एक तरह का डियर की तरह होता है, लोगों को समझाने के लिए, रॉयल स्टैक जिसको बोलते हैं। तो ये जो प्रजाति है हिरण की तरह देखने वाला, बहुत ही अब दुर्लभ होते जा रहा है। तो वहां पर हम उनके जो हैबिटेट है, जो उनके जंगल है, जिस पौधों को वो ज्यादा पसंद करते हैं, उस तरह के पौधों को हम वहां लगा रहे हैं। तो हम हमेशा कोशिश करते हैं कि वो पौधा जो वहां के लिए लोकल हो, वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन में फेवरेबल हो उसके लिए, और वहां के लोकल लोगों के द्वारा मानसून सीजन में ही लगाते हैं। हम ऐसा नहीं है कि रैंडमली कभी भी लगाते
12: जी जी।
11: हम हमेशा पौधे वहां के
12: मौसम के हिसाब से
11: ध्यान रखते हुए लगाते हैं। जैसे एग्जांपल मैंने आपको दी जम्मू कश्मीर का, वैसे ही आप एग्जांपल दीजिए कन्याकुमारी में। कन्याकुमारी में हम मैंग्रोव लगा रहे हैं, ठीक है। तो मैंग्रोव जो होता है ये समुद्र, बहुत से लोगों को मैंग्रोव पता ही नहीं था, है ना, और शायद आज ही नहीं पता बहुत लोगों को। मैंग्रोव जो होते हैं खास करके समुद्री एरिया में, जो समुद्र तट से सटे हुए एरिया होते हैं, वहां पर उनके जनजीवन को बहुत प्रभावित करता है। अगर मैंग्रोव्स रहते हैं तो समझिए कि आपका वहाँ बाढ़ का जो तकलीफ होता है, फ्लड का, सुनामी का,
12: रुक जाता है, आई थिंक
11: वो काफी कम हो जाता है। उसके बाद में आपका जो वृक्ष हम मैंग्रोव लगाते हैं, उस मैंग्रोव के चलते काफी कार्बन जो है अवशोषित होता है, जो समुद्र के इसमें हम उसको अवशोषित कर लेते हैं। ये एक बहुत बड़ा इकोसिस्टम है जो हम सामान्य बोलचाल बोलते हैं एक्वाटिक इकोसिस्टम को डेवलप करने बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अब ये वृक्षारोपण कब होगा? ये वृक्षारोपण होगा सितंबर अक्टूबर में, बिकॉज सदर्न पार्ट में बारिश लेट से जाती है। तो मैं आपको बेसिकली जम्मू कश्मीर और कन्याकुमारी का एग्जाम्पल इसलिए दिया कि आपके श्रोता ये समझे कि वृक्षारोपण हम रैंडमली कहीं भी नहीं लगा देते हैं। हम वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के मानसून को ध्यान में रखते हुए, वहाँ के जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए उन पौधों का सिलेक्शन करते हैं, उसके हिसाब से नर्सरी बनता है और पेड़ लगाते हैं वहाँ पर.
12: नाइस,
11: है ना. क्योंकि अगर मैं आपको एक एक करके पौधे बताऊंगा तो कम से कम सैकड़ों पौधे हैं ऐसे, और आप कंफ्यूज होंगे. तो हम रूल समझ जाइए आप.
12: जी जी, मैं समझ गया.
11: पौधे जैसे दिल्ली के लिए जो बेहतर है, हम दिल्ली में उस वक्त में मॉनसून जब आएगा तो दिल्ली के हिसाब से पौधे लगाएंगे, है ना.
12: जी, आपने इस सवाल के साथ साथ एक और सवाल का जवाब दे दिया जो मैं आपसे आगे चलकर बात करने वाला था, कि आपकी संस्था पारिस्थितिक तंत्र में किस तरीके से सामंजस्य बैठाने का काम करती है. तो मुझे लगता है कि इस सवाल का जवाब हमें मिल गया है. आप उस एरिया की भौगोलिक परिस्थिति को पहले जानते हैं, स्टडी करते हैं, उसके बाद वहां जाते हैं, आपकी टीम जाती है और उसके अनुसार, मौसम के अनुसार ही आप वहां पौधे लगाते हैं, वृक्षारोपण करते हैं. तो सर, ये जो सिलसिला है बातों का लगातार जारी है. यहां पर एक छोटा सा म्यूजिकल ब्रेक ले लेते हैं. चूंकि आप नेचर लवर हैं तो ऐसा हो नहीं सकता कि म्यूजिक आपके आसपास ना रहता हो. तो कोई एक ऐसा गाना जो आपके दिल के आसपास हो, जो आप हमारे लिसनर्स को सुनाना चाहते हो, वही गाना हम आपके लिए प्ले करेंगे.
11: एक बड़ा अच्छा गाना है, बारिश के लिए होता है, बरसो रे मेघा बरसो रे मेघा.
12: हर कोई यही सुनना चाहता है, हर कोई यही चाहता है कि बारिश की बूंद तन पर गिरे और इंसान झूम जाए, प्रकृति झूम जाए. तो चलिए इस ब्यूटीफुल ट्रैक का आनंद लेते हैं और उसके बाद मैं आपको मिलूंगा यहीं, कहीं जाएगा मत. सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM.

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े हुए हैं growtrees.com के सीईओ विक्रांत जी, जो कि इस क्षेत्र में काफी अरसे से बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। नेचर लवर हैं, प्रकृति के बीच में जाते हैं, लोगों के बीच में जाते हैं, वन्य जीवों का भी ख्याल रख रहे होते हैं। तो सर आपका एक बार पुनः बहुत बहुत स्वागत है।
1: शुक्रिया गगन जी और आपके श्रोता जो मुझे अब तक सुन रहे हैं।
0: जी थैंक यू सर। सर मैं अगला सवाल आपसे ये जानना चाहता हूँ कि आपको कब लगा, क्योंकि आप ऑलरेडी पहले से काम कर रहे थे, सब कुछ सेटल था, कहीं ना कहीं एक चीज कोई सामने आई होगी या आपने कुछ सोचा होगा, देखा होगा कि मुझे नेचर के लिए काम करना है, वन्य जीवों के लिए काम करना है, वन्य अपराधों को रोकने के लिए काम करना है।
1: मैं आपको बहुत ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं बताने जा रहा हूँ जिससे लगे अरे कुछ डिफरेंट है। मेरे लाइफ में बहुत साधारण सी घटना नहीं मुझे प्रभावित किया, वो घटना ये है कि मेरा जन्म जो है एक ऐसे शहर में हुआ था जिसको भारत में ग्रीन सिटी क्लीन सिटी के नाम से जानते हैं। जी जमशेदपुर के नाम से शहर है।
0: जी जी
1: मुझे नहीं पता आप कितने श्रोता जानते होंगे, जमशेदपुर एक शहर है जो झारखंड राज्य में पड़ता है,
0: ठीक
1: है, और वहाँ काफी ग्रीनरी है। अगर कभी आप के श्रोता जमशेदपुर के बारे में जानेंगे लिखेंगे लिखेगा तो मेरे बचपन जो है ना वो आम के पेड़ पर चढ़कर आम तोड़ना, अमरूद के पेड़ से अमरूद तोड़ना, नीम के पेड़ पर चढ़ जाना, छुपा छुपी के खेल खेलना, तो इससे जुड़ा रहा है। और मैं जब पेड़ों के साथ इतना सब खिला हूँ, मेरे घर के आंगन में दो चार पेड़ है, तो जब ये सब चीज देखकर बड़ा हुआ और जब कॉर्पोरेट दुनिया में जब मैं आया और मेरी तबादला मुंबई हो गई है ना, और उसके पहले मैं दिल्ली में था इनफैक्ट एक साल लगभग, तो मुझे दिखा गुड़गांव तरफ में या जिस तरफ में डेवलपमेंट के नाम पर कितने बढ़ गए हैं।
0: जी
1: डेवलपमेंट तो बहुत अच्छी बात है, बट एट व्हाट कॉस्ट, वो शायद किसी ने सोचा नहीं। डेवलपमेंट इज गुड, इट इज इम्पोर्टेंट, उसको हम ना नहीं कह रहे हैं, बट आप किस कीमत पर उस डेवलपमेंट को पा रहे हैं ये परखने की आवश्यकता थी।
0: जी
1: तो जब मुंबई में मैंने देखा कि हर तरफ से कॉन्क्रीट जंगल बने जा रहे हैं, हर दूसरे स्टेशन पर आप जाएंगे वहां पर बड़े बड़े होर्डिंग्स लगे हैं, यहाँ

0: है तो फिर ये पेड़ काटना ही क्यों है, है ना। और दूसरा तरफ मैंने देखा कि बहुत सारे एक्टिविस्ट हैं, मैं नहीं कहता हूँ कि वो गलत करते हैं सही करते हैं, वो उनका अपना नजरिया है देखने का, लेकिन हम अक्सर ये कहते हैं गवर्नमेंट ने ये कर दिया, गवर्नमेंट ने वो कर दिया, है ना, गवर्नमेंट ने खराब कर दिया या उस एजेंसी ने खराब कर दिया। हम खुद क्या कर सकते हैं इसकी बात हम नहीं करते।
1: क्या बात, बहुत खूब।
0: तो हमें वो लगा ठीक है ये शायद वो एक्टिविस्ट का काम है, उनका काम करना है, पॉलिटिशियन का काम है, वो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन मैं एज एन इंडिविजुअल मेरी जो जिम्मेदारी है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी है वो क्या है, इंडिविजुअल सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मेरी बनती है वो ये है कि मैं क्या कर सकता हूँ उस पर फोकस करूँ, रेदर देन कि लोग क्या कर रहे थे, क्या करना चाहिए था, क्यों नहीं किया, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। या तो आप उस काबिल बन जाइए कि आप उसको रखवा दें, या तो फिर आप भाई आप क्या कर रहे हैं वो देखिए। ये सोच करके हमें लगा कि लेट्स प्लांट ट्रीज, लेट्स प्लांट होप, लेट्स प्लांट फ्यूचर, है ना। क्योंकि अगर मान लीजिए कि बच्चे लोग बोलते हैं अरे विक्रांत भाई आप 100 पेड़ लगा रहे हैं, वो 100 पेड़ में से शायद 25 पेड़ बड़े होंगे, है ना, कुछ तो पेड़ आधे बीच में मर जाएंगे, उससे बढ़िया है कि आप एक पेड़ जो कट रहने से बचा दीजिए। आप देखिए उस एक पेड़ को कटने से बचाने के लिए मुझे बहुत फाइट करना पड़ेगा, तो भी गारंटी नहीं कि बचा पाऊंगा नहीं बचा पाऊंगा, ठीक है, बिकॉज वो अलग अलग एजेंसी की अपनी भी आवश्यकताएं हैं। लेकिन मैं जो 100 पेड़ लगा रहा हूँ वो 100% पता है कि भैया वो तो मेरे हाथ में है, किसी से परमिशन नहीं चाहिए, मैं खुद जाकर पेड़ लगा सकता हूँ। और मजे की बात है कि वो जो पेड़ लगाऊंगा वो आने वाले 25 पेड़ आपने खुद माना कि जिंदा रहेंगे कुछ साल बाद, 25 पेड़ में कितने फायदे होंगे आप ये सोचिए।
1: बहुत
0: तो
1: अच्छा।
0: हमारे हाथ में क्या है वो ध्यान दें आप ना।
1: बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा सर।
0: तो ये सोच करके ही फिर मैंने ध्यान दिया कि ग्रीन ट्रीज प्लांट करिए, पेड़ को लगाइए, और रेदर देन आप वो जो कहते हैं फर्स्ट प्रैक्टिस देन प्रीच। मैं बुरा मत मानिएगा, मैं जब खास करके मेट्रो सिटीज की बात समझता हूँ कि जब मैं यहाँ पे इंटरव्यू लेता हूँ कभी, और कोई कैंडिडेट आता है कहता है कि सर मैं आपके साथ यहाँ काम करना चाहता हूँ, मैंने पूछा ओके वेरी गुड, आपने कभी महुआ का पेड़ देखा है, महुआ, तो कहते सर महुआ होता क्या, मैंने कहा ओके महुआ ने देखा आपने, मैं उनसे फिर पूछता हूँ कि भैया आपने कभी शरीफा का पेड़ देखा कस्टर्ड एप्पल का, तो नहीं देखा है, मैंने पूछा लास्ट पेड़ कब लगाए थे, तो मनी प्लांट लगाए थे उसको ही पेड़ मानते हैं वो। तो मैं बोलना ही चाह रहा हूँ कि हमारे अभी जो यूथ हैं, जो लोग हैं, उन्हें पेड़ ही नहीं पता है कि कौन से पेड़ कहाँ होते हैं, उन्हें ये नहीं पता है कि लास्ट प्लांट कब किए थे वो, तो
1: अच्छा
0: कितनी बड़ी चिंता का विषय है।
1: सर ठीक है, मैं आपको यहाँ रोकना चाहूंगा बिकॉज क्योंकि मेरा जो सवाल था वो इसी से रिलेटेड था। जाहिर सी बात है कि कोई अगर आपसे जुड़ना चाहता है, आपके साथ काम करना चाहता है, उसे मालूमात नहीं है, लेकिन उसके अंदर एक इच्छा है कि आप अच्छा काम कर रहे हैं, आपकी संस्था बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उस वक्त जाहिर सी बात है कि आपने दो बातें उनसे कही या पूछा जाना समझा कि आप कितना जानते हैं, नेचर को कितना जानते हैं, तो किस तरीके से फिर किस तरीके से आप आकलन कर पाते हैं कि ये बंदा मेरे साथ जुड़कर नेचर के लिए बहुत अच्छा रहेगा या फायदेमंद रहेगा, या यूं कहें कि वॉलंटियर आपसे कैसे जुड़े, कुल मिलाकर अगर मैं बात का एक सार जानना चाहूं तो।
0: हमारे पास वॉलंटियर्स के अपॉर्चुनिटीज काफी कम होते हैं, क्यों मैं कम रखता हूँ, क्योंकि हमारा ऑफिस टास्क नहीं होता है ठीक है, और हमारा जो वर्क है वो बहुत ही सीजनल है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे नर्सरी का जो काम है वो दिसंबर से लेकर के जून तक चलता है, वो तभी ही हो सकता है, जून के बाद नर्सरी नहीं बन सकता है ठीक है। वैसे ही जो गड्ढे करने का काम है वो जून के पहले होने हैं, है ना। प्लांटेशन का काम जो है वो जुलाई से होने हैं, वो मैं चाह के भी पहले नहीं कर सकता हूँ, तो ये बहुत सीजनल वर्क है। वॉलंटियर हमेशा आपको सीजनल मिलते जाए इसकी गारंटी नहीं होती है, इसीलिए हम वॉलंटियर के ऊपर डिपेंडेंट नहीं होते हैं। हम क्या करते हैं, हम फेलो की तरह लेते लोगों को जो कम से कम एक साल का कमिटमेंट लेकर के आए, वो फेलो की तरह हमारे साथ काम करे, और अगर उसको लगता है कि वो बेहतर कर सकता है और हमें भी लगता है तो हम उनको अपने ही कंपनी में या किसी भी ऐसे इन्वायरमेंटल कंपनी में उनको जॉब ऑफर भी करा देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर मान लीजिए कि अभी आप रेडियो जॉकी हैं और आप बहुत अच्छा लोगों को कम्युनिकेट करते हैं, और आपको मन करता है कि नहीं मैं अभी कम्युनिकेशन में ही काम करना चाहता हूँ, लेकिन मैं ग्रोथिस के साथ या किसी इन्वायरमेंट ऑर्गेनाइजेशन साथ जुड़ना चाहता हूँ, तो मैं आपके साथ में आपकी जो क्वालिटी है उसको पेड़ के साथ कनेक्ट कराने की कोशिश करूंगा। मैं ये समझने की कोशिश करूंगा कि क्या पेड़ के साथ आप कनेक्ट कर पा रहे हैं आप। अगर मान लीजिए कि एक पेड़ है, एक पौधा है जिसको आपने आज से 15 साल पहले या 10 साल पहले लगाया था, आम का पौधा ठीक है, मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्या आप उस आम के पौधे की कहानी उसके जुबानी बता सकते हैं आप।
1: बहुत खूबसूरत, नाइस।
0: अगर आप बता सकते हैं कि हाँ मैं एक आम का पौधा हूँ, मेरा जन्म इस तारीख को हुआ था, फिर जब मैं छोटा था तो एक बार मुझे लू लग गया था तो पानी की आवश्यकता पड़ी तो फिर मेरे घर वालों ने पानी डाला मुझे पर।
1: जी जी
0: अगर आप उसकी कहानी सुना पा रहे हैं देन तो मुझे लगेगा कि आप

0: वो दम है और आप हमारे फेलो बन सकते हैं।
1: नाइस नाइस।
0: एक एग्जांपल दिया ना आपको।
1: नहीं मैं समझ गया,
0: है ना
1: जी। यानी कि मैं इस बात को ऐसे ले सकता हूँ कि थोड़ा जानना समझना जरूरी है कि उसके अंदर वो लगन है प्रकृति के बारे में, वो कुछ करना चाहता है, नेचर को कुछ देना चाहता है, समय दे पाएगा या नहीं दे पाएगा। कहीं कोई वृक्ष अगर कट रहा है तो अपना इन्वॉल्वमेंट इतना होना चाहिए कि उसको रोके, दो पौधे लगाए, लोगों को अवेयर करे। बाकी सर आपसे बात करके बहुत अच्छा लग रहा है। सो लिसनर्स मैं आपको बताना चाहूंगा मेरे साथ जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO मिस्टर विक्रांत जी। यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद बातों का सिलसिला लगातार जारी है। विक्रांत जी कोई और गाना जो आपके दिल के बेहद करीब हो जो सुनाना चाहते हो हमारे लिसनर्स को?
0: बहुत सारे गाना है। हाँ। एक गाना तो जैसे आप थोड़ा ये संगीत जो है आपका इससे जुड़ा हुआ नहीं होगा, मतलब बारिश से जुड़ा हुआ नहीं होगा।
1: हाँ।
0: लेकिन मैं एक गाना है कि तुम आए तो गली में चांद निकला।
1: क्या बात है, बहुत खूबसूरत, वाकई बहुत खूबसूरत
0: गाना है।
1: जी जी।
0: गली में चांद निकला। आप हैं, गली में चांद निकलवा दे तो बड़ा अच्छा
1: रहे। जरूर जरूर जरूर। देखिए हम दिन में चांद निकलवाने की पूरी कोशिश करते हैं, तो आइए ये गाना सुनते हैं। सो लिसनर्स आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और मेरे साथ चर्चा में जुड़े हुए हैं GrowTrees.com के CEO विक्रांत जी। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन।

0: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम। मेरे यानी गगन के साथ आज हम बात कर रहे हैं प्रकृति के बारे में। प्रकृति का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, पेड़ों का हम किस तरीके से ख्याल रख सकते हैं। विकास के नाम पर जो विनाश हो रहा है, जो प्रकृति का दोहन हो रहा है, तो ये सच है कि कहीं ना कहीं वातावरण में शुद्ध वायु की कमी है। मैं दिल्ली एनसीआर की अगर बात करूं तो ये सच बात है कि दिल्ली एनसीआर की वायु गुणवत्ता सूचकांक दिन ब दिन खराब होता जा रहा है, कि जिसकी वजह से यहां लोग रोजगार के लिए आना तक नहीं चाहते, यहां से दूर भागना चाहते हैं। खैर, जब हमें पता चलता है कि कोई व्यक्ति इस क्षेत्र में काम कर रहा है, समाज में परिवर्तन लाना चाहता है, तो वाकई बहुत खुशी होती है। जी हाँ, आज ऐसे ही शख्स हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक शख्सियत जुड़ रही है, मिस्टर विक्रांत जी, जो कि growtrees.com के सीईओ हैं। तो सर, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: जी, बहुत बहुत शुक्रिया गगन जी।
0: सर, मुझे वाकई बहुत खुशी हो रही है आपसे बात कर, क्योंकि मैं एक नेचर लवर से बात कर रहा हूं जो कि लोगों का ख्याल रख रहे हैं, वातावरण का ख्याल रख रहे हैं। अदरवाइज सर, हम देखते हैं कि जो मैंने अभी कहा कि विकास के नाम पर प्रकृति का जो विनाश हो रहा है, वो वाकई कहीं ना कहीं हम सबको सोचने के लिए मजबूर कर देता है कि हम क्या कर रहे हैं, किस दिशा में जा रहे हैं। छोटा सा एक एग्जांपल देना चाहूंगा। हमारे जो मंत्री साहब हैं नितिन गडकरी साहब, उन्होंने कुछ रोज पहले कहा था कि हम जब रोड बनाते हैं, बनवाते हैं, तो ठेका देते हैं पौधे लगवाने का। लोग ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होते, यानी कि वो ठेकेदार काम नहीं कर रहे होते, और उसके बाद उन्होंने सख्त हिदायत दी थी कि अगर पौधे नहीं लगेंगे तो मैं पैसा रोक दूंगा और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। तो ये सच्ची, देखिए सर, हम पैसा ले रहे हैं और उसके बाद वो कार्रवाई नहीं कर रहे। तो फिर जो दूर दराज व्यक्ति है जो अपने फायदे के लिए पेड़ों को काट रहा है, तो इस तरीके से अगर ये सब चलता रहा तो मतलब बहुत मुश्किल हो जाएगी हम सब के लिए। क्या कहना चाहेंगे इस संबंध में, जब सरकार को एक आगे आकर ये अपनी बात रखनी पड़ती है इस तरीके से।
1: देखिए, मैं अगर व्यक्तिगत रूप से बात करूं तो मुझे तो अभी आपने जो पहला लाइन बोला ना, वो लाइन ही जचा नहीं। जैसे एग्जांपल तो आपने कहा कि एक नेचर लवर है जो हम सब के पेड़ लगा रहा। मैं किसी के नहीं लगा रहा हूं, मैं खुद के लगा रहा हूं, मैं अपने बच्चे के लगा रहा हूं। सो ये धारणा हटा दीजिए दिमाग से कि कोई किसी के कर रहा है ना। हमारा दिमाग में ये चीज जो है ना, बचपन से घुसाने की आवश्यकता है हर बच्चों को। भाई साहब, जो पेड़ है ना, वो बोल नहीं रहा आपसे, लेकिन हकीकत तो ये है कि जब भी पेड़ नहीं रहेगा, आप सर्वाइव ही नहीं करेंगे।
0: जी जी।
1: बिना, लोग कहते जल ही जीवन है, मेरा तो मानना है जल कब है, जब जंगल है। जंगल है तभी जब आप वृक्ष लगा रहे। तो जंगल है तो जल है, जल है तो जीवन है,
0: क्या
1: जंगल ही जीवन है ना। तो आप जंगल से तो नहीं जा सकते हैं, हम जंगली ही थे, हम जंगल से ही जुड़े हुए हैं। अगर आप सोचेंगे हम जंगल से दूर कर ले अपने आप को, तो आपकी आपकी हैसियत नहीं कि आप रह पाए।
0: जी,
1: ठीक है। आप बिना जंगल के, बिना पेड़ पौधों के, आपकी सर्वाइवेबिलिटी ही नहीं है, आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। आप कोविड के टाइम पर सब लोग ऑक्सीजन के लिए इतने मारा मारी थे, है ना। किसके लिए भाई? ऑक्सीजन के लिए। बड़े बड़े लोगों के फोन आ रहे थे मुझसे, कितने लोगों ने कहा विकास सर, आप तो ये मिनिस्टर को जानते हैं, उनको जानते, थोड़ा फोन करके ऑक्सीजन दिलवा दीजिए। मैं कह रहा था ठीक है, उस वक्त की सिचुएशन समझ में आपको अभी भी नहीं आ रही है। ये शर्म और लानत की बात है हमारी इंसानियत पे। भाई साहब, आज वो ऑक्सीजन जो आप खरीद रहे थे वो फ्री में कहीं मिल रहा है आपको। आज सोचिए कि क्या आपके घर के सामने में पेड़ आता है। मैं देखता हूँ, वैसे मैं नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन मैं देखता हूँ कि घर के सामने अगर एक बड़ा पेड़ आ जाए तो बालकनी से व्यू खत्म हो जाने के लोग पेड़ कटवा देते हैं।
0: जी जी, आप सही कह रहे हैं।
1: आप तो ये जो कह रहे हैं ना कि वो रोड किनारे जो बिल्डर ने नहीं किया, वो नहीं किया, तो ये उन बिल्डरों के लिए भी, अगर वो आपके श्रोता है, सुन रहे हैं, तो मैं उनको भी अपील करूंगा कि भाई साहब ऐसी मूर्खता ना करें। आपको तो अपने बच्चों को देवल से बताना चाहिए कि भाई आप पेड़ लगाओ तो ही आपके जीवन है। अगर आप पेड़ नहीं लगा रहे हैं, पैसा लेकर के नहीं लगा रहे हैं, तो आप ये
0: गुनाह
1: है। के पॉइंट से कहूँ तो पाप है, और साइंस और हमारे समाज की तो क्रिमिनल ऑफेंस है ये,
0: ठीक
1: है। आप सोचिए कि बहुत लोग मुझसे पूछते हैं, विक्रांत जी एक बात बताइए, एक पेड़ में लगा रहा हूँ उस पे कितने लोग निर्भर होते हैं। हमने कहा कभी पेड़ को करीब से जाकर देखिएगा, इतने छोटे छोटे चींटी, इतने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े रहते हैं उसमें, रेप्टाइल्स रहते हैं, बर्ड्स रहते हैं। आप सोचिए कि उतने सारे जान जीवों को, मतलब उतने सारी आत्माओं को, जीव को आपने घर दिया,
0: बेघर कर दिया,
1: उनको रहने का जगह दिया, आपने आश्रय ना दिया। आप सोचिए कि आप एक पेड़ से कितने लोगों को फायदा पहुंचा रहे हैं। हर आदमी इंसान को ही फायदा पहुंचाए जरूरी नहीं है, है ना। अभी देखिए, मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कर्नाटका गवर्नमेंट ने, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने अभी बैन किया कि पहले क्या थे कि जो जंगलों में जो जीव जंतु मरते थे, है ना, उनके कार्कस को जला दिया जाता था, ठीक है, या दफन कर दिया जाता था, ठीक है, या तो जला दिया था या दफन कर दिया था। अभी मैं आज ही न्यूज पढ़ रहा था, कर्नाटका हाईकोर्ट ने बोला, कर्नाटका फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने बोला है, गवर्नमेंट ने, कि अब भविष्य में सिवाय टाइगर के किसी भी जानवर के कार्कस को उसके डेड बॉडी को न तो दफन किया जाएगा न जलाया जाएगा। और उसके पीछे जानते हैं लॉजिक क्या है उनका?
0: जी
1: सेम जो मैंने अभी आपको कहा कि अगर मान लीजिए हम उसको छोड़ देते हैं
0: छोटे-छोटे जी
1: कितने सारे फंगस कितने सारे दूसरे जानवर जो उसके ऊपर निर्भर होते हैं है ना। जैसे एग्जांपल के तौर पर एक बहुत छोटा सा एग्जांपल था कि अगर हाथी का कार्केस पड़ जाता है तो वो पॉर्चुपाइन एंड हाइना के लिए वो कैल्शियम का काम करता है
0: जी।
1: जब वो नोज से खाता है तो उसके बाद में उसके ऊपर कितने सारे फंगस उसमें जमीन में नाइट्रोजन फिक्सअप करता है। आप समझ रहे हैं कि कुदरत में कितना बढ़िया उसका रोल प्ले किया गया है। तो जो लोग ये सोच रहे हैं कि कुछ पैसा बचा करके हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, तो नितिन गडकरी जी मुझे तो लगता है कि आपने अगर पैसा दे दिया वही बहुत बात है। अगर दे दिया तो बहुत बड़ी बात है, अदरवाइज तो इसमें आपको इसकी जरूरत नहीं है।
0: जी जी जी ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने लिए करें, अपने पर्यावरण के लिए करें, अपने बच्चों के लिए करें, जैसे कि आपने हमें कहा जी। और साथ ही साथ आपने हमें वाकई डिटेल में बताया सर कि किस तरीके से जो वन्य जीव हैं, एक अगर कोई वन्य जीव मर जाता है, जिस तरीके से कोर्ट का आपने वर्डिक्ट यहां जिक्र किया कि पहले उसके शव को दफना दिया जाता था या जला दिया जाता था, लेकिन अब आगे से ऐसा न हो क्योंकि उसके ऊपर भी कई वन्य जीव निर्भर करते हैं। सर जंगल जब कट रहे होते हैं तो जाहिर सी बात है कि वन्य जीव भी बेघर हो जाते हैं और वो शहर की तरफ रुख करते हैं और फिर इंसान अपने आप को बचाने के लिए उन वन्य जीवों का खात्मा कर रहा होता है, वाकई बहुत दुख होता है। तो कहने का आशय मेरा यही कि आप सर, आपकी संस्था और आप वाकई बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लोगों को अवेयर कर रहे हैं और यही जन जागरूकता अभियान के माध्यम से लोगों के बीच में जब ये बातें जाएंगी तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं क्रांति जरूर आएगी। तो मैं ये भी कहूंगा कि आपके जरिए कई लोगों को रोजगार भी मिल रहा है। तो साथ ही साथ मैं जी जी
1: जैसे अभी हमारा भारत में 23 राज्यों में काम चलता है, ठीक है, तो जब हम कहते हैं काम चलता है तो वहां पर सीड कलेक्शन, नर्सरी के लिए बीज को कलेक्शन करना, नर्सरी बनाना, गड्ढे करना, पौधे लगाना, उसका देखभाल करना, ये सब उसका हिस्सा होता है
0: जी।
1: इस दरम्यान में हम कोशिश करते हैं कि खास करके आदिवासी समुदाय के महिलाओं को अधिकांश रूप से रोजगार मिले। तो आज भारत में हमने लगभग 1 करोड़ से ऊपर पौधे लगा चुके हैं
0: बहुत,
1: और हमने लाखों कार्य दिवस हमने सृजन किए हैं अभी तक। इसमें हमने कोशिश किया है खास करके महिलाओं को, जो कहते हैं ना वुमेन एम्पावरमेंट, महिलाओं को स्वावलंबी बनाने की बात की है। उसके साथ ही साथ में जब लोगों को लगता है ना जंगल या पेड़ जो है वो ऑब्स्टिकल है, बाधा है उनके डेवलपमेंट में, है ना, इसीलिए तो काट देते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि ये ऑब्स्टिकल नहीं है, ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड का सबसे बेस्ट उपाय है। एग्जाम्पल के तौर पर समझाने के लिए आपको बताऊं, अगर मान लीजिए कि आपने एक महुआ का पेड़ ले लिया, आप एग्जाम्पल महुआ, मैं बता दूं कि ये जो ट्राइबल बेल्ट है आपका झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल, छत्तीसगढ़, इस बेल्ट का काफी होता है, ठीक है, और एक एक विशाल पेड़ होता है जिसके जो फूल होते हैं उस फूल का नॉर्मली जो वहाँ के ट्राइबल्स होते हैं वो प्रयोग करते हैं बहुत सारी चीजों में, महुआ का जूस बनता है, जली बनता है, यू नो उसके अचार बनते हैं, बहुत सारी चीज बनते हैं, ठीक है। अब सोच अभी मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने बताया था महुआ बोर्ड भी बना रखा उसके लिए। अब एक जो यू नो विकसित महुआ का पेड़ है वो साल में लगभग 20 से 25 किलो महुआ का फल देता है, 20 से 25 किलो एक पेड़। अब 20 से 25 किलो अगर महुआ का फल है और उसका बाजार में लोकल मंडी में भाव है 25 रुपए किलो, ठीक है, तो समझिए कि एक पेड़ से लगभग 500 रुपए का उसको फायदा हो गया एक पेड़ से। अब अगर मान लीजिए हमने कहीं 1 लाख पौधे लगाए हैं तो आप सोचिए कि 1 लाख पौधे गुने 500 रुपए कितने हो गए,
0: जी जी
1: उतना रुपए हर साल उस गांव की आमदनी हो गई, आप समझ रहे हैं ना
0: जी जी।
1: तो ये जो मैथ है, ये जो इकोनॉमिक्स है, ये संबंध की आवश्यकता है। उस महुआ को पेड़ को अगर काट करके वहां पर आप कुछ और बना दिए होते हैं बिल्डिंग या कुछ भी, तो उन मजदूरों को एक बार मजदूरी मिलती है, कहानी खत्म।
0: सही बात
1: है। यहाँ से मैंने 1 लाख पौधे लगाए वो आने वाले 50-60 साल तक उनको पैसा मिलता रहेगा उसमें
0: जी।
1: ये सस्टेनेबल लाइवलीहुड है, इसकी बात मैं करता हूँ। और इससे ज्यादा जो ऑक्सीजन मिलना है या बाकी जो फायदे हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी तुलना नहीं कर रहा, मैं सिर्फ डायरेक्ट बेनिफिट की बात कर रहा हूँ, है ना। अब जैसे मैं बैम्बू लगाता हूँ, है ना, बांस लगाता हूँ नदी के किनारों में ताकि मिट्टी का कटाव बचे, वो एक एक बांस जो है वो 5 से 6 साल बाद में हार्वेस्ट के लायक हो जाता है। अगर मान लीजिए कि उसको हार्वेस्ट कर एक बांस आप लगाइए, अभी बांस का पौधा कभी आप देखे होंगे वो झुंड में होता है ना, एक बांस आप लगाएंगे तो कम से कम 50 बांस उसमें निकल जाता है, 50
0: जी।
1: अब 5 साल के बाद हम उसको बाकी जो पौधे उसमें 50 शूट्स निकले हैं उसको आप हार्वेस्ट करते हैं तो एक की कीमत लगभग 50 रुपए है लोकल मंडी में, ठीक है, बाहर 100 रुपए मिलते हैं। अब मान लीजिए कि हर 5 साल में एक किसान ने एक बांस लगाया और उसे 50 पौधे निकल गए, 5 साल बाद में से उसमें से 40 पौधे को हार्वेस्ट कर सकता है, तो 40 पौधे हार्वेस्ट किया तो 50 रुपए के हिसाब से कितना हो गया आप देख लीजिए।
0: जी जी जी, नाइस नाइस।
1: ऐसे करके हर 5-6 साल में फसल ले सकता है। तो और बांस जो होता है बहुत ज्यादा कार्बन भी अवशोषित करता है, मिट्टी के कटाव को रोकता है।
0: क्या बात है, नाइस नाइस। विक्रांत जी, मेरे पास अगर वो कहते हैं ना कि एक राइट होता, एक अधिकार होता, जिस तरीके से लोग जब कोई सराहनीय कार्य कर रहे होते हैं, मानक की उपाधि दी जाती है, तो निश्चित तौर पर आपने पीएचडी कर रखी है इस क्षेत्र में, तो मैं आज आपको डॉक्टरी की उपाधि दे देता। रियली नाइस सर, रियली नाइस सर। बाकी आप बहुत सकारात्मक काम कर रहे हैं, नेचर के लिए काम कर रहे हैं, लोगों के लिए काम कर रहे हैं, और ये सच बात है जो आपने उदाहरण हमारे सामने रखा कि जब कोरोना के समय में दूसरी लहर में ऑक्सीजन की जरूरत थी तब पेड़ पौधों की कीमत हमें समझ आ रही थी। सो लिसनर्स, कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अगर हमने नेचर का ख्याल रखा तो निश्चित तौर पर नेचर हमारा ख्याल रखेगी, अदरवाइज नेचर जब रौद्र रूप अख्तियार कर लेगी तो फिर हमें कोई नहीं बचा पाएगा।
1: बिल्कुल सही कहा, कोई नहीं बचा पाएगा।
0: लिसनर्स हमारे साथ जुड़े रहे growtrees.com के CEO विक्रांत जी। विक्रांत जी, आपने हमें बहुत समय दिया, बहुत अच्छी अच्छी बातें आपने हमें। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू सो मच गगन, एंड रियली रियली विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर, यू नो, जो आप काम कर रहे हैं लोगों तक पहुंचाने का कम्युनिकेशन के थ्रू, बहुत बढ़िया।
0: थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा? 01204060205 पर आप हमें कॉल कर बता सकते हैं। इसके अलावा 90.8 FM @sharda.ac.in पर भी आप हमें मेल कर सकते हैं। कहने का आशय यही है कि जिंदगी वाकई बहुत खूबसूरत है, और जिंदगी बेहद खूबसूरत हो जाती है तब जब आप एक पौधा लगाते हैं और उसके बाद वही पौधा वट वृक्ष का रूप धारण कर लेता है। मिस्टर विक्रांत को हमने ये कहते हुए सुना कि अक्सर हमने जिंदगी में सुना है लोगों से कि जल ही जीवन है, लेकिन उनका मानना है कि जंगल है, पेड़ पौधे हैं, तभी जीवन है। तो इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए, नेचर से प्यार करिए, और नेचर बदले में हमें बहुत कुछ देती है, तो इसलिए पौधे जरूर लगाइए। सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: Chowda School of Media, Film and Entertainment is a temple of creativity. यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट. ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग.
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM. ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन. आर्जिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है. तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in. शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश.

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर टीबी की मुफ्त जांच, मुफ्त इलाज और पोषण सहायता उपलब्ध है। मन में हो टीबी से जुड़ा सवाल तो करें टोल फ्री नंबर पर कॉल 1800 11 66 66। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

Yeah. Gagan Kokri. Fateh. Heartbeat.

0: समझ में नहीं आ रहा क्या करूं, किसे दिखाऊं, पता नहीं कितना पैसा खर्च हुई है।
1: अरे मैं तो कहूँ कि तुम इसे लेकर बाबा जी के पास जाओ, बच्चों को अक्सर नजर लग जाती है, अरे नजर झड़वाते ही सब कुछ ठीक हो जाएगा।
2: अरे कहीं ले जाने में जाने की जरूरत नहीं है, जाके मेडिकल स्टोर से दवा ले लो या गांव के बंगाली डॉक्टर को दिखा लो, दोनों ही बहुत जानकार हैं। बड़े अस्पताल में बस बड़ा पैसा खर्च होता है और कुछ नहीं।
3: चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है।

0: सोचिए कि सरकार ने अगर इतनी व्यवस्था की है तो हम क्यों अपने नन्हे मुन्ने की जान को जोखिम में डालें और क्यों फालतू पैसा खर्च करें।
1: मैंने सोच लिया है, अब अपने बच्चे को 102 एम्बुलेंस में ले जाकर SNCU में ही दिखाऊंगा।
0: तो आपको क्या समझ में आया? फर्क पड़ता है अगर आप अपने बीमार नन्हे मुन्ने को झाड़ फूंक, मेडिकल स्टोर, झोला छाप डॉक्टर या फिर महंगे प्राइवेट डॉक्टर की बजाय जिला अस्पताल में स्थित SNCU में दिखाते हैं, क्योंकि फर्क पड़ता है।
2: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
4: राम नाथ दोसलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। स्टूडियो की घड़ी में 9:25 हो चुके हैं। 9 तारीख है, जुलाई का महीना है। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत जरूरी है। एक लाइन मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, उससे पहले जो अक्सर कभी लिखता था, थोड़ा लिखा है और कभी आकाशवाणी पर जब गया था तो ये मौका मिला तो मैंने लिखा कि पानी बरसे तो परेशानी, पानी न बरसे तो परेशानी। ऐसा होता है, अक्सर लोग हम कहते हैं कि पानी न बरसे तो परेशानी, पानी बरसे तो परेशानी, पानी न बरसे तो पानी को पानी की परेशानी, और पानी अगर बरसे इतना ज्यादा पानी हो जाता है तो पानी को बहाने की परेशानी। कुल मिलाकर यही जिक्र हो रहा है कि बारिश बहुत ज्यादा हो रही है, बहुत ज्यादा हो रही है, लगातार बारिश हो रही है, रात से बारिश हो रही है। मथुरा में 5 घंटे से लगातार बारिश थी कल, आज कुछ ऐसी दिल्ली NCR में बारिश हमें देखने को मिल रही है, और जिसकी वजह से रेनी डे लोगों ने घोषित कर दिया है। ऑफिस नहीं पहुंच पा रहे, वर्क फ्रॉम होम है, या वो लोग कह रहे हैं कि हम फोन पर अवेलेबल रहेंगे, आप ईमेल के माध्यम से हमसे संपर्क कर सकते हैं, वगैरह वगैरह। हमारे एक बंधु हैं, हाँ उनका भी कॉल आ गया, मैसेज आ गया। मुझे लगता है कि घटना दुर्घटना घटने से तो अच्छा है कि आप एक दिन रेनी डे ले लें, क्योंकि आपकी छुट्टियां भी बहुत हैं, और अगर आप 10 बजे के बजाय 12-1-2 बजे ऑफिस पहुंचेंगे उसका कोई मतलब नहीं बनता। इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए गुरुग्राम में वर्क फ्रॉम होम 50% घोषित कर दिया गया है, क्योंकि दिल्ली NCR के हालात कुछ ऐसे ही हैं, क्योंकि ऑन रोड सच बात तो है कि हमें गड्ढे नजर नहीं आते, पोस्ट में करंट उतर जाता है, ऑन रोड पेड़ गिरते हुए नजर आते हैं, जन धन हानि होती है। तो अगर संभव हो तो कुछ आप ऐसा कर सकते हैं। कुल मिलाकर बारिश का लुत्फ उठाइए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए और बाहर के खान पान से अपने आप को बचा कर रखिएगा, क्योंकि सच बात तो यही है कि जान है तो जाने सारी मुश्किलें आसान है। एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते हमारा फर्ज बनता है कि हम आपको हमेशा अप टू डेट रखें, अपडेट करते रहें। ब्यूटीफुल ट्रैक ऑलियो सुरुशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ।

दिल तेरा लेके ही तो लिख बेबी, किसी से भी पूछ लौंडा टू मच। बोली में थोड़ा रियान भी टच है, जितने भी रूमर सुने तूने अपनी सहेलियों से मेरे बारे में वो सारे सच है। बेबी मैं हूँ वो जिसके बारे में चेतावनी देती होगी तुझे तेरी माँ। BADSHA नाम बदल दियो मेरा बेबी, जो ना कर रही तेरी ना।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

वेलकम बैक, गुड मॉर्निंग सुप्रभात। मैं हूं गगन आपके साथ एक बार फिर से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत, इस्तकबाल, खुशामदीद, खैर मकदम। मैं हूं गगन आपके साथ। 9:36 हो चुके हैं, 9 तारीख है, 7वां महीना यानी कि जुलाई का महीना है। जुलाई के महीने में बड़ी बेसब्री से हम सब इंतजार करते हैं कि बारिश हो, बारिश हो, बारिश हो, अल्लाह मेघ दे, पानी दे, पानी दे। ऐसे गाने अक्सर पुराने फिल्मों में हमने देखा है, मेघारे मेघारे, रिमझिम गिरे सावन, वगैरह वगैरह। ऐसे मौसम में ये गाने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, खाने में भी कुछ चीज़ें बहुत अच्छी लगती है, समोसा, गर्म गर्म चाय। ऐसे मौसम में अगर आप अपनी बालकनी में बैठे हों, चाय की चुस्की ले रहे हों और अखबार पढ़ रहे हों, म्यूजिक सुन रहे हों, आपके साथ आपकी फैमिली बैठी हो, तो बहुत अच्छा लगता है। थोड़ा उनके बारे में सोचिए जो आज ऑफिस निकल रहे हैं, जिनको हर हाल में हालात में पहुंचना है ऑफिस। एक बात मैं जब ऑब्जर्व करता हूं तो मुझे लगता है कि उसके बारे में कहना बहुत जरूरी है। आप हमेशा गाड़ी में नहीं बैठे रहेंगे, कहीं ना कहीं कभी ना कभी तो आप उतरेंगे, ऑन रोड चलेंगे। आप उस वक्त कल्पना करिए कि आपकी एक गाड़ी की वजह से जो राहगीर चल रहा था, आपने ध्यान दिया या नहीं दिया, आपकी इस गाड़ी की वजह से उस पर छींटे पड़ी जब वो ऑफिस जा रहा था। एक छोटा बच्चा भी वहां था जिस पर छींटे पड़ी, उसका बैग भी गीला हो गया। और कल्पना करिए कि जब आप नीचे चल रहे हैं, ऑन रोड हैं, तो कोई व्यक्ति आकर आपके साथ वही करे तो आपको अच्छा लगेगा? नहीं लगेगा। थोड़ी समझदारी दिखानी होगी, सुरक्षित चलना होगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचना होगा। और अगर संभव हो, यकीन मानिए कि बहुत सारी दुआएं मिलेंगी अगर आप ऐसे समय में किसी को आप लिफ्ट दे देंगे। और लिफ्ट आदमी तभी मांग रहा है क्योंकि मजबूरी है, वहां कोई साधन या संसाधन नहीं है, है ना। दिल्ली एनसीआर में ऐसी हालत है, गाजियाबाद में स्कूल्स में छुट्टियां कर दी गई हैं, और जहां संभव हो तो जरूर आप रेनी डे कर सकते हैं या वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं, और फोन कॉल जरूर पे करेगा, अदरवाइज दिक्कतें आपके साथ हो सकती है। ईमेल पर अपने ऑफिस में इंफॉर्मेशन देते रहेगा, टच में रहेगा ऑफिस के साथ अगर आपने छुट्टी की है, क्योंकि आपके पास बहुत सारी ELPLCL वगैरह वगैरह बची हुई है। मौसम की हालत ऐसी है, दिल्ली एनसीआर में अच्छी बारिश है और आने वाले समय में भी अच्छी बारिश, बारिश का लुत्फ उठाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। अगर पीआर नहीं बोलता तो गाना सुनाइए और उनको मनाइए। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन आपके साथ, फ्रॉम द मूवी राजनीति। राजनीति नहीं होनी चाहिए, एक कुशल नीति होनी चाहिए जिंदगी में, प्यार की नीति होनी चाहिए। आए हाय, मना लीजिए, मना लीजिए।

0: लक्षण है। इसी से तो किसी की पहचान बनती है। और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो, फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: ये संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
2: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो की घड़ी में इस वक्त 9:47 हो चुके हैं। 9 तारीख है, जुलाई का महीना है और बारिश का महीना है। और बारिश के मौसम में बहुत सारी चीजें याद आती हैं, वो लेखन याद आता है, वो कविताएं याद आती हैं, वो शायरी याद आती है, वो म्यूजिक याद आता है, उनका साथ रहना याद आता है। अरे वाह ठोको, नहीं नहीं ऐसी क्या गलती कर दी मैंने, नहीं ताली ताली ताली ठोको, गुड मॉर्निंग। चलिए हंसते मुस्कुराते सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन। फन मस्ती जबरदस्त इन्फॉर्मेशन के साथ हम आपके साथ यूं ही जुड़े रहते हैं। सामुदायिक रेडियो होने के नाते ज्ञान विज्ञान पढ़ने बढ़ाने की, जिंदगी को जीने की बातें, ये तमाम बातें हम आप तक पहुंचा रहे होते हैं। बारिश के मौसम में भी एक छोटा सा संदेश मैंने आप तक पहुंचाया, रिक्वेस्ट की कि जब आप ऑन रोड होते हैं, बाइक पर होते हैं या अपनी गाड़ी में बैठे होते हैं, तो जो राहगीर है, जो पैदल यात्री है, उनका प्लीज प्लीज समझदारी से ख्याल रखिएगा। बारिश में गाड़ी तेज मत दौड़ाएगा, क्योंकि आपकी छींट की वजह से, एक हरकत की वजह से उसके कपड़े खराब हो सकते हैं। बच्चे स्कूल जा रहे होते हैं, बुजुर्ग भी राहगीर होते हैं, और थोड़े समय के बाद आप भी गाड़ी से उतर कर पैदल चलेंगे और वही हादसा आपके साथ हो जाए तो आपको बहुत बुरा लगेगा। चलिए बारिश से निकलकर आगे बढ़ते हैं, शमोशों की बात कर सकते हैं, चाय की, नहीं नहीं इसके अलावा कुछ और आसपास क्या हो रहा है? अच्छा ऐसे आ रहे हो। तो सुनने वाला है कि नीट का पूरा पैटर्न बदलेगा, अब एक नहीं 6 दिन तक चलेंगे पेपर आने वाले समय, मतलब पहले राउंड में निकल जाओ भैया, चीजें दिन ब दिन कंडीशन अप्लाई। बहुत सारी चीजें हैं। तो वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टूड ऑल यू सुरशादा 90.8 एफएम विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। माशाल्लाह ये गाना तो बनता है ना, सूरज हुआ मध्यम, सोनू निगम की आवाज, सिर्फ सुरशादा 90.8 एफएम पर। बहुत ही खूबसूरत गाना, चाहे तो वॉल्यूम अप कर सकते हैं, लेकिन रिक्वेस्ट वही है कि स्लोली स्लोली आप आगे बढ़ेगा, है ना, कभी खुशी कभी गम। लेकिन एक बात तो यह है कि हर मौसम में आपको रहना चाहिए सम, ना ज्यादा खुश होइए ना ज्यादा उदास होइए। और जब ये जीवन जीने की कला आपके पास आ जाएगी, यकीन मानिए कि आप सदा खुश रहेंगे। क्या बात है गगन जी, गुड मॉर्निंग।

क्या बात है। इस ब्यूटीफुल ट्रैक को सुनने के बाद एक बार फिर से आप सबका स्वागत। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9:11। अपना ख्याल रखिएगा, बारिश के मौसम में कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो इसलिए सुरक्षित चलिएगा, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचेगा, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है ना। फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड कीप लिसनिंग सुरशादा 90.8 FM। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। वेयर आर यू, द वर्ल्ड इज हियर एट शारदा यूनिवर्सिटी। नमस्कार।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज़ पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो? तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई और मैं हूं आपकी आरजे वैष्णवी। आज से हमारी इस श्रृंखला की बहुत अहम कड़ी शुरू होने जा रही है। हम बात करेंगे एक बहुत ही खास अभियान की जिसका नाम है 8वां राष्ट्रीय पोषण माह 2025।

क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें डब्ल्यू

0: sharda.ac.in.
1: The world is here.
2: ट्यूबरकुलोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है। अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखे, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखे कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है। सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं, तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।
0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें। इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन। जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान चल रहा है, तो इसी क्रम में सुनते हैं सेहत सही लाभ कई के अंतर्गत एक विशेष कार्यक्रम जो आपको टीबी के प्रति जागरूक करेगा और आप इस बीमारी से बच पाएंगे और अपने परिवार को बचाएंगे, साथ ही साथ औरों को भी जागरूक करेंगे। तो आइए सुनते हैं ये विशेष कार्यक्रम जो आधारित है 100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर।

0: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम से मैं शशि कपूर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि आप जानते हैं, आपका अपना रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कई, और इसी के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं टीबी के बारे में। और आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में, जहां पर हम बैठे हैं दीपक कौशिक जी के सामने। उनसे हम बात करेंगे, जानेंगे कि क्या कुछ सेवाएं वो शारदा हॉस्पिटल के डॉट सेंटर में प्रोवाइड करा रहे हैं। तो कौशिक जी, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। मैं सभी आपके श्रोतागण है सभी का धन्यवाद करता हूँ।
0: बिल्कुल, और सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे आपसे कि जो शारदा हॉस्पिटल का डॉट सेंटर है, यहाँ पर आप किस पद पर कार्यरत हैं और क्या क्या कार्य आप यहाँ पर देखते हैं, और किस तरह से जो डॉट सेंटर है वो लोगों की सेवा कर रहा है।
1: सर, मेरा नाम दीपक कौशिक है और मैं बेसिकली यूपी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से बिलोंग करता हूँ, और शारदा हम विजिट के लिए यहाँ आते हैं, डॉट सेंटर को रन कर रहे हैं क्योंकि अंडरटेकिंग गवर्नमेंट के यहाँ डॉट सेंटर चलता है। विगत 2011 से हम लोग यहाँ पे हैं, जो डॉट सेंटर को हम लोग चला रहे हैं, और इन 2011 से हमने कई हजार मरीज जो टीबी से ग्रसित थे उनको हमने ठीक किया है। और देखा जाए तो टीबी एक जो पहली सदी में एक महामारी के रूप में जानी जाती थी, लोग उसको लाइलाज बीमारी के रूप में बताते थे, लेकिन जैसे जैसे डॉट्स आया, पहले हमने आरएनटीसीपी से स्टार्ट की, आरएनटीसीपी के बाद में हमने इसको अब एनटीपी में ला के आए, अब एलिमिनेट की तरफ हमने इसको प्रोग्राम को चलाया हुआ है। तो हमारे यशस्वी माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक लक्ष्य विजन रखा है कि हमें अपने देश से टीवी को जड़ से भगाना है, टीवी फ्री इंडिया करना है। तो इसी मुहिम में हम सभी लोग उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर कार्य कर रहे हैं,
0: और इसी उद्देश्य को लेकर के टीवी कैंपेन भी चलाया जा रहा है। तो इस कैंपेन को सफल बनाने में आप और आपका जो स्टाफ है और आपका जो स्वास्थ्य विभाग है, किस तरह से योगदान कर रहे हैं ताकि हम इस लक्ष्य को हासिल कर पाएं?
1: हमारे माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री मोदी जी ने, जो कि एक विश्व से टीवी को जड़ से समाप्त करने का एक लक्ष्य रखा था 2030, एलिमिनेट करना है, टीवी फ्री करना है इंडिया को, बट थोड़ा सा अभी ये महामारी एक कोविड के रूप में हमारे पास आई, जिसने हमारे 3 साल इसमें हमारे खराब हो गए, लेकिन फिर भी हमने अब महामारी से अपने आप को उभरते हुए इस टीवी प्रोग्राम पे हमने अपना फोकस रखा हुआ है कि हम आज भी अपने जो माननीय मोदी जी का विजन है 2025 तक टीवी फ्री करने का, तो उसको हम सुचारू रूप से सभी लोग कंधे से कंधा मिलाकर कहीं ना कहीं हम इसको जड़ से समाप्त करेंगे भी। और रही बात हमारे योगदान की, तो देखिए सर, हम तो गवर्नमेंट से जुड़े हुए हैं, तो हमारा तो मेनली उद्देश्य ही है कि टीवी को जड़ से समाप्त करना। तो सभी हमारी पूरी टीम, आशा, आंगनबाड़ी और आपका जितने भी एमओज हैं, सीएचओज हैं, सुपरवाइजर्स हैं, और भी जो भी हेल्थ से हमारे रिलेटेड, चाहे वो प्राइवेट प्रैक्टिशनर्स हैं, वो सभी लोग इस मुहिम में लगे हुए हैं कि कैसे ही हम इसको बीमारी को जल्द से जल्द अपने टीवी इंडिया से बाहर कर सके।
0: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने आशाओं की बात की, हमारी जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ती हैं उनकी बात की, तो ये किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे रही हैं?
1: सर, इसमें अभी हमको ना 100 दिवसीय टीवी सघन रोगी खोज अभियान हमने सरकार ने चलाया हुआ है। उस 100 दिवसीय में क्या है कि हम 1 जनवरी से हमने प्रोग्राम स्टार्ट किया है अपने प्रदेश में, और उसको हम 24 मार्च तक हम इसको चलाएंगे। तो इस 24 मार्च तक हमको वेनरेबल जो पॉपुलेशन है उसको स्क्रीनिंग करना है, क्योंकि जब हम स्क्रीन करेंगे तो उसमें हमें टीबी के

0: उनको भी हमने क्या कह रहे हैं वल्नरेबल पॉपुलेशन में चिन्हित किया है।
1: स्मोकिंग करने वाले, एल्कोहल कंज्यूम करने वाले, वो भी व्यक्ति हमारी सस्पेक्ट वाली श्रेणी में आते हैं। और ऐसा व्यक्ति जिसका बीएमआई 18.5 से कम हो, उस व्यक्ति को भी हम क्या कह रहे हैं इसमें वल्नरेबल, उसमें हम क्या चिन्हित करते हैं। कुछ आपका डायबिटीज से ग्रसित पेशेंट, क्योंकि जो डायबिटीज जो होती है वो भी कहीं ना कहीं एक जननी होती है हर बीमारी की, तो हमने उस डायबिटीज पेशेंट को भी हमने एक चिन्हित करा है अपनी इसी स्क्रीनिंग में। तो ज्यादा से ज्यादा हम उन लोगों को चिन्हित कर रहे हैं। चिन्हित करने के बाद में हम उनका क्या कह रहे हैं उचित माध्यम के द्वारा, प्लेटफॉर्म के द्वारा, चाहे वो सरकारी हॉस्पिटल हो चाहे प्राइवेट सेक्टर से हो पीपीपी मॉडल पे, तो उनमें हम उनकी जांचें करवा रहे हैं स्क्रीनिंग करने के बाद। तो अगर पेशेंट पॉजिटिव आता है तो देन उसका हम ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं।
2: बिल्कुल सर, जैसा कि अभी आपने उनके लक्षणों के बारे में बताया, और जो हमारी आशाएं हैं या आपने आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्ती हैं उनका नाम लिया, और भी हमारे जो सीएचओ हैं, ये तो अपनी भूमिका बखूबी निभाई रहे हैं, लेकिन हमारे जो आम इंसान है, कहते हैं ना कोई भी अभियान जब तक सफल नहीं होता जब तक हर इंसान उसमें अपना योगदान ना दे, तो हमारा जो आम इंसान है वो किस तरह से इस अभियान में अपना योगदान दे सकता है ताकि हम टीबी मुक्त भारत बना सके।
0: सर, जैसे कि मैंने अभी आपको पूर्व में बताया कि 5-6 लक्षण मेन लक्षण होते हैं, 2 हफ्ते से लगातार ज्यादा खांसी, कोई ऐसा व्यक्ति जिसका बुखार ठीक नहीं हो रहा हो, ऐसा व्यक्ति जिसको क्या कह रहे हैं लगातार उसका वजन कम होता जा रहा हो, बलगम में खून आ रहा हो, या रात में कमर पर ज्यादा पसीने आ रहे हों, या किसी को गांठें दिखाई दे रही हों बॉडी पे, तो ऐसा व्यक्ति, आम लोग भी हम ऐसे व्यक्ति देख सकते हैं कि हमारे सराउंडिंग वातावरण में कहीं ऐसा कोई व्यक्ति तो नहीं है। अगर हम उनको लगता है कि ऐसा कोई व्यक्ति है कि पड़ोस में कोई खांस रहा है, 2 हफ्ते से ज्यादा खांस रहा है, तो हम उसको एक सलाह दे सकते हैं कि आप नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पे जाएं, जहां फ्री में आपकी जांचें होंगी। अगर उसमें टीबी आपको पॉजिटिव पाया जाता है तो आपको फ्री में ही उसका इलाज भी मिलेगा, और साथ में सरकार जो एक इलाज के साथ में निक्षय पोषण योजना के तहत उसको 3,000 रुपये, अभी पहले क्या था 500 रुपये पर मंथ था, लेकिन सरकार ने उसको भी बढ़ा दिया, उसको 1,000 रुपये पर मंथ कर दिया। तो जो ड्यूरिंग है आपका इलाज के दौरान 6 मंथ का इलाज होता है, तो उसमें उसको पेशेंट को 6,000 रुपये भी मिलते हैं।
2: तो सर, ये तो निक्षय पोषण जो पोर्टल है उसके बारे में आप बात कर रहे हैं। जैसे किसी व्यक्ति को टीबी हो जाता है, टेस्ट के जरिए ये पुष्टि भी हो जाती है कि भाई आपको टीबी है, तो उस दौरान जरूरत पड़ती है उसको अच्छे पोषण की, तो क्या क्या उसको खाना चाहिए उसके बारे में भी आपसे ही जानना चाहिए।
0: जी जी, देखिए टीबी का जो पेशेंट होता है अल्टीमेटली ये माना जाता है कि कहीं ना कहीं उसकी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जब इम्यूनिटी वीक हो जाती है तो कोई भी रोग उसको बड़ी जल्दी घेर लेता है। तो जो टीबी के पेशेंट हैं उनको ज्यादा से ज्यादा हाई प्रोटीन डाइट्स का लेना जरूरी है। मैं ये नहीं कहता कि सभी लोग मांसाहारी हैं तो मांस से ही आपको क्या कह रहे प्रोटीन मिलेगा। दाल है हमारी, अंकुरित करके दालें खाइए, चने खाइए, आप पनीर ले सकते हैं, और जो भी क्या कह रहे प्रोटीन जिसमें दूध आप ज्यादा से ज्यादा ले सकते हैं, तो जो भी प्रोटीन फुल क्या कह रहे हैं आपकी डाइट में उसको ज्यादा से ज्यादा शुमार करिए। तो जब आप प्रोटीन युक्त अगर डाइट लेंगे तो पेशेंट का इम्यून जो पावर है वो स्ट्रांग होता है। तो मेरा तो यही कहना है कि ज्यादा से ज्यादा प्रोटीन अपने उसमें आहार में वो सम्मिलित करें, जिससे कि इस बीमारी को जल्दी से वो भगा सके।
2: बहुत से टीबी के मरीज ऐसे हैं जो सक्षम हैं, जो आपने बताया कि प्रोटीन युक्त आहार उनको ज्यादा से ज्यादा खाना चाहिए, लेकिन हमारा जो ग्रेटर नोएडा है यहाँ पर प्रवासी मजदूर बहुत ज्यादा रहते हैं, घनी बस्तियां हैं, अब ऐसे में अगर उनको टीबी हो जाता है तो पोषण की बड़ी दिक्कत रहती है, कैसे एक तो मजदूरी मिली ना मिली, तो ऐसे में क्या उनके लिए कोई ऐसी कोई योजना है या कोई ऐसे लोग हैं इस योजना से जुड़े हुए जो उनकी मदद कर पाए।
0: देखिए, मलिन बस्तियां हमेशा हमारे प्रायोरिटी पे रही हैं और हम समय समय पर मलिन बस्तियों में जाके कैंप भी लगाते हैं, वहाँ स्क्रीनिंग करते हैं, स्क्रीनिंग करने के बाद उनकी निःशुल्क जाँचें करवाते हैं। जाँच करवाने के बाद अगर टीबी रोगी पाया जाता है पॉजिटिव, तो सरकार उनको निश्चय पोषण योजना, एक निश्चय पोषण योजना सरकार ने चला रखी है, उसके माध्यम से सरकार उनको 1,000 रुपये डीबीटी के माध्यम से उनके डायरेक्ट बैंक में उनके खाते में वो 1,000 रुपये देती है, और वो जब तक इलाज उसका चलता है जब तक सरकार हर महीने प्रति उसमें क्या कह रहे उनको 1,000 रुपये देती है।
2: ये योजना इसके अंतर्गत जो निक्षय मित्र हैं वो भी अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, तो ऐसे अगर हमारे कोई सुनने वाले हैं वो भी इस अभियान में आगे आना चाहते हैं, सक्षम हैं लेकिन उनके मन में कहीं ना कहीं परोपकार की भावना है, दूसरों का भला चाहते हैं, तो किस तरह से इसमें अपना योगदान कर सकते।
0: सर, जैसा कि आपने पहले भी कहा कि कोई भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं जब तक फलीभूत नहीं हो सकती, जब तक सुचारू रूप से नहीं चल सकती, जब तक उसमें आम लोगों की भागीदारी ना हो, तो ये निक्षय मित्र जो कॉन्सेप्ट है, ये सरकार क्या कह रहे हैं आम लोगों की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व करने के लिए बनाया गया है। तो इसमें क्या होता है, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति हो सकता है, चाहे वो हमारे क्या कह रहे जनप्रतिनिधि हो, हमारे कोई अफसर हो, क्योंकि हमारे तो राज्य

0: काल जी ने इसका शुभारंभ किया था निक्षय मित्र बनाने का, तो मैं तो यही कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस योजना में जुड़े। निक्षय मित्र वो व्यक्ति हो सकता है जो भी अपनी जिम्मेदारी समझते हुए टीबी रोगी को उस इलाज के दौरान उसके हालचाल पूछे, उसको खान पीन की भी अगर वो व्यवस्था कर सकता है, एक निक्षय पोषण पोटली बोलते हैं उसको हम, तो वो निक्षय पोषण पोटली भी उसके इलाज के ड्यूरिंग उसको देता रहे, और सबसे बड़ी बात है उसका मोरल, जो उसको बार बार पूछ के उसका जो मोरल को हाई करता है कि भाई अगर बीमारी है आपको ये बीमारी ठीक हो जाएगी, और बीच बीच में उसको बताता भी रहे, क्योंकि ये भी एक निक्षय मित्र की मैं समझता हूँ कि एक उसका दायित्व है ये टीबी की बीमारी स्प्रेड ना हो, तो टीबी के मरीजों को ये भी समझाए वो कि भाई आप हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अपने मुंह पे कपड़ा रखें, इधर उधर ना थूके, पान बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू शराब ना खाए पिए, जिससे कि ये बीमारी अपना विकराल रूप ना ले सके।
1: कहने का मतलब यह है कि जो निक्षय मित्र हैं वो टीबी पेशेंट का हालचाल पूछे, उनका मनोबल भी उड़ाते रहे, साथ ही साथ उनको कुछ सावधानियां भी बताते रहे ताकि वो इस बीमारी से जल्दी छुटकारा पा जाए। अब बात आती है कि कोई भी व्यक्ति हमारी आपकी बात सुनकर के रेडियो के माध्यम से निक्षय मित्र बनना चाहता है तो कहां पर जाके संपर्क करें?
0: सर, निक्षय मित्र कोई भी व्यक्ति अगर बनना चाहता है तो वो जितने भी हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जहां भी डॉट सेंटर्स हैं, वो वहां जाके सिर्फ मिल सकता है हमसे, और एक आधार कार्ड और एक मोबाइल नंबर अपना उसको देना है। हम उसका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से उसको क्या कहते अपने निक्षय उस पर रजिस्टर्ड कर देंगे और वो निक्षय मित्र के रूप में हमारा वर्किंग कर सकते।
1: बिल्कुल, तो हमारे जो भी सुनने वाले हैं अगर अपना योगदान इस अभियान में देना चाहते हैं तो जैसा सर ने बताया है उसके जरिए आप निक्षय मित्र बन के किसी का भला कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। और सर अब आगे बढ़ते हैं, जैसे कि बहुत सारे आपके पास पेशेंट भी आते हैं और वो उन्होंने टीबी को हराया भी होगा, तो हम कुछ ऐसे जो टीबी चैंपियन है उनके बारे में भी आपसे जानना चाहेंगे कि वो पहले बहुत परेशान थे लेकिन अब वो सामान्य जीवन जी रहे हैं आराम से, तो उनके बारे में कुछ बताइए।
0: जी बिल्कुल सर, क्योंकि बातें करें तो मैं 2004 से इस जॉब में हूँ और 2004 से ही मैं क्या कह रहा टीबी के पेशेंट देख रहा हूँ, और हजारों पेशेंटों को मैंने अपने सामने ठीक होते हुए देखा है। और एक टीबी का रोगी जब आता है तो हम देखते हैं कि कहीं ना कहीं उसकी ऐसी स्थिति होती है कि वो खटिया पे ही लेटा हुआ आता है, और जब वो अपना डॉट्स का पूरा इलाज लेता है तो वो एक स्वस्थ जीवन जीता है, और कुछ सावधानियों के साथ में। जैसे अभी अगर मैं एक उदाहरण दूं कि अगर कपड़ा है कोई आपकी शर्ट है और शर्ट पर एक ही शर्ट है, आप पे कोई ऑप्शन है ही नहीं दूसरा, तो करते क्या है कि शर्ट अगर कहीं फट गई तो उसमें क्या करेंगे, सिलाई लगाएंगे। अगर हम उसी सिलाई को सहेज के रखेंगे, यानी कि उसको हम अपनी शर्ट का ध्यान रखेंगे, तो वो जीवन पर्यंत आपकी शर्ट चलती रहेगी। तो ऐसे ही हमारे टीबी का मरीज है, टीबी का मरीज अगर अपने एक बार ग्रसित होने के बाद पूरा इलाज लेता है और अपने वो शरीर के लिए कुछ सावधानियां बरतता है तो वो अपना एक सुरक्षित और सामान्य जीवन जी सकता है। और ऐसे बहुत हजारों मरीज हैं जो आज सामान्य जीवन जी रहे हैं, पहले टीबी से ग्रसित थे, आज वो सामान्य जीवन जीते हैं, और वही लोग दूसरे लोगों की मदद कर रहे हैं, वही लोग आगे बढ़ के, क्योंकि जिन्होंने इस दर्द को झेला है वो जब ये दवाइयां खा के वो स्वस्थ हुए हैं तो उन्होंने जो सामने वाले व्यक्तियों को देखते हैं तो उनको समझाते हैं वो लोग। तो यही लोग हमारे जो टीबी चैंपियन है सर, तो ये लोग कहीं ना कहीं हमारी जो सरकार की योजना है टीबी फ्री इंडिया करने की, उसमें ये भी लोग हमारे बहुत बड़े मदद।
1: बिल्कुल सर, तो बहुत सारी बातें आज रेडियो के माध्यम से आपने हमें बताई, हमारे श्रोता भी सुन रहे होंगे और जो टीबी पेशेंट है हो सकता है वो भी सुन रहे होंगे, बिल्कुल जागरूक रहेंगे। चलते चलते हम आपसे जानना चाहेंगे, कहना चाहेंगे कि अभी जो टीबी कैंपेन चल रहा है इसको सफल बनाने के लिए क्या कहना चाहेंगे?
0: सर मैं यही कहना चाहूंगा, एक तो टीवी के जो भी मैंने अभी पूर्व में लक्षण बताए थे उन लक्षणों को सभी लोग जो हमारे श्रोता हैं वो सभी लोग इसको जान लें, और जानने के बाद अगर ऐसा कोई भी व्यक्ति अपने सराउंडिंग में दिखाई देता है, रिश्तेदारी में हो, आपके ऑफिस में हो, आपके क्या कहते पड़ोस में हो, या कहीं पे भी ऐसा कोई व्यक्ति है तो आप उसे चिन्हित करें, और चिन्हित करने के बाद में उस व्यक्ति को ये समझाएं कि भैया ये लाइलाज बीमारी नहीं है, आप इसके लिए पहले सरकारी जो केंद्र है डॉट सेंटर है उस पर आप जाइए, जाने के बाद वहाँ निशुल्क जांचें होती हैं। अगर आपको ये पॉजिटिव आ भी जाता है, टीबी रोग आ भी जाता है, तो आप घबराइए मत, ये बिल्कुल ठीक हो जाता है, और इसमें पूर्णतः क्या कह रहे हैं आपको इलाज लेना है जितनी भी अवधि का वो डॉट सेंटर में बताते हैं। तो दो तरीके की हमारे यहाँ टीबी अभी मुख्यतः चल रही है, एक सिंपल टीबी और एक एमडीआर टीबी। उसमें क्या होता है मल्टी ड्रग्स रेजिस्टेंस हो जाता है, तो कुछ ड्रग्स हैं जिससे वो रेजिस्टेंस हो जाता है, तो उसका भी कारण ये कहीं ना कहीं वो डिफॉल्टर पेशेंट रहा होता है, या कहीं ना कहीं वो ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आता है जो पहले से वो एमडीआर का पेशेंट था। तो यही है कि सभी लोग जागरूक बने, इन चीजों को देखें, और हमेशा छींकते वक्त खांसते वक्त अगर आपको लगता है कि पॉजिटिव पेशेंट है तो उसको भी जागरूक करें कि भैया समाज में आपको तो इलाज लेके ठीक होना ही है, लेकिन आपको दूसरे को भी बचाना है, दूसरे व्यक्ति को आपसे ग्रसित नहीं होना। ये चीजें आप थोड़ा सा वो जागरूकता सभी लोग फैलाएं। और जैसे कि आपने बताया ही है पूर्व में कि भाई आम लोगों की भागीदारी ज्यादा से ज्यादा होगी तभी हम इस रोग को हरा पाएंगे। ऐसा कोई सरकारी तंत्र नहीं है कि वो स्वयं इसको हरा देगा। जब तक आम मानस घर घर में प्रत्येक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी नहीं समझेगा, अपने दायित्व को नहीं समझेगा, जब तक हम टीबी को नहीं हरा पाएंगे। तो इसलिए ज्यादा से ज्यादा लोग इसमें भागीदारी करें।
1: बिल्कुल सर, जो भी इस अभियान से जुड़े हैं वो अपनी अपनी जिम्मेदारी निभाएं और जो सूचना लोगों तक पहुंच रही है वो भी अपनी भागीदारी निभाएं तो हम टीबी मुक्त भारत बना सकते हैं। एक और चलते चलते बात सवाल आपसे हम पूछना चाहेंगे, जैसे कि हमारा जो शारदा विश्वविद्यालय का अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन है सुनो शारदा 90.8 FM, ये भी जन जागरूकता फैला रहा है टीबी के लिए, तो इसके लिए आप क्या कुछ कहना चाहेंगे इस अभियान में जो अब तक भूमिका रही है शारदा रेडियो स्टेशन की?
0: सर, शारदा रेडियो स्टेशन की जो भूमिका रही है वो काबिले तारीफ है। मैं दिल से क्या सभी आपके श्रोताओं और आप चैनल के सभी लोगों को दिल से धन्यवाद देता हूं कि ऐसे ही जागरूकता प्रोग्राम आप चलाते रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी इस जागरूकता से बहुत से लोगों का जीवन बच सकता है। तो ऐसे ही मैं आपको धन्यवाद पुनः देते हुए कि आप ऐसे जागरूकता अभियान टीवी है या और भी डिसीज को लेकर जो भी जागरूकता अभियान है वो हमेशा चलाते रहे।
1: बिल्कुल सर, आगे भी ऐसे ही अभियान चलते रहेंगे। आपने अपने कीमती वक्त में से वक्त निकाल के हमसे बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: और भाई शुक्ला, तेरी टीबी के क्या हाल हैं?
4: अरे भाई, दो चार हफ्ते का इलाज करवाया और टीबी की हो गई अचानक।
5: ये लीजिए हुजूर, आपकी ये हजामत भी पूरी हो गई।
4: ये क्या आधी दाढ़ी? भाई कर क्या रहे हो?
5: कमाल करते हैं आप, आधी दाढ़ी मंजूर नहीं, टीबी का आधा अधूरा इलाज मंजूर है आपको।
4: है?
5: याद रखिए, टीबी का आधा अधूरा इलाज करवाइएगा तो टीबी आपको दोबारा हो सकता है, इसलिए टीबी से मुक्ति पाने के लिए टीबी का पूरा इलाज करवाइए, फुल कोर्स। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: नमस्कार, मैं अमिताभ बच्चन बोल रहा हूं। मैंने टीबी को बहुत करीब से देखा है और हराया भी है। सही सुना आपने, बड़े धैर्य की लड़ाई थी वो। पहले मैंने टीबी के लक्षण सही पहचाने, फिर डॉक्टर की सलाह लेकर टीबी का कोर्स पूरा किया और टीबी हार गया। इलाज के दौरान थोड़ा राहत महसूस करते ही कोर्स अधूरा ना छोड़ दीजिएगा, बस इसी गलती से ड्रग रेजिस्टेंट टीबी हो सकता है आपको, इसीलिए टीबी का कोर्स पूरा कीजिए, यही है इसका पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। मेरी तरह आप भी पूरा इलाज कीजिए और टीबी पे जीत पाइए। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: नमस्कार, सुनो शारदा 90.8 एफएम से, मैं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम और स्मार्ट मिलकर मुहिम चला रहे हैं सेहत सही लाभ कही, जिसका फोकस टीवी पर है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का भी कहना है कि हमें देश को टीवी मुक्त करना है, तो इसी क्रम में हम आपको जागरूक कर रहे हैं। बार बार रेडियो के जरिए आप तक बहुत सारी जानकारियां पहुंचती हैं और आगे भी हम पहुंचाते रहेंगे, क्योंकि टीवी मुक्त भारत बनाना हम सबका कर्तव्य है। और इसी क्रम में आज हम आए हैं शारदा हॉस्पिटल और शारदा हॉस्पिटल के रेस्पिरेटरी मेडिसिन डिपार्टमेंट के प्रोफेसर एंड एचओडी डॉक्टर देवेंद्र कुमार सिंह इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करेंगे टीबी के बारे में। तो सर, सबसे पहले आपका सुनो शारदा 90.8 एफएम पर बहुत बहुत स्वागत है।
6: थैंक यू इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से मेरे विचार श्रोताओं तक पहुँचाने के लिए। सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार।
1: बिल्कुल सर, और हम आपसे सबसे पहले यही जानना चाहेंगे कि जो टीबी है आखिर ये है क्या, क्यों लोग इससे इतना डरते हैं?
6: देखिए, इस सवाल का जवाब देना या समझना थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। अब यूं समझिए कि ये टीबी ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जैसे अभी कोविड आया कुछ दिन में जो इवॉल्व हुआ, ये हजारों साल से चली आ रही है। पहले इसको एक आनुवंशिक बीमारी माना जाता था। रीजन ये था कि एक परिवार में अगर किसी एक सदस्य को हो गई तो ये हम जानते हैं कि एक से दूसरे में फैलने में देर नहीं लगती, और इलाज थानी इलाज की क्वेश्चन तो बाद में उठता है। पहले किसी को यही नहीं पता था कि क्या प्रॉब्लम है ना, तो लोग बोलते थे कि एक ही परिवार के सभी लोगों में तो ये आनुवंशिक बीमारी है। लेकिन बाद में एक जो लैंडमार्क आया ट्यूबरक्लोसिस में, दैट वाज 1882, जब एक साइंटिस्ट थे रॉबर्ट कोच, तब उन्होंने ये डिक्लेयर किया एक कॉन्फ्रेंस में कि नहीं, ये एक आनुवंशिक बीमारी नहीं है, ये तो एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है। इन्फेक्शियस प्रॉब्लम जो एक कीटाणु से होती है, जिसको बैक्टीरिया बोलते हैं, कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है। तो बेसिकली ये चीज़ तो अब क्लियर है, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, तो अभी सभी जानते हैं कि बैक्टीरिया से होने वाली प्रॉब्लम है, और उस बैक्टीरिया का नाम हम बोलते हैं माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यूजुअली सबसे ज़्यादा फेफड़ों को प्रभावित करती है, और एक इंसान जिसके फेफड़े पहले से ही प्रभावित हैं, जब वो खांसता है, जब वो छींकता है, तो बहुत सारे बैक्टीरिया वो हवा में रिलीज करते हैं, और उसी हवा को जब कोई दूसरा एक इंसान एक सांस के रूप में अंदर लेता है तो उसमें भी चांसेस होते हैं इन्फेक्शन के। मतलब इन्फेक्शन के चांसेस, ये हम ऐसे बोलते हैं कि टीबी होने के चांसेस, कि जितने लोगों के शरीर में बैक्टीरिया जाता है उन सभी को टीबी नहीं होती। जिन लोगों की इम्यूनिटी अच्छी होती है तो वो इम्यूनिटी उन बैक्टीरियाज को मार गिराती है, और जिनकी इम्यूनिटी कुछ कम होती है, या बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा बॉडी के अंदर में जाते हैं, या बैक्टीरिया बहुत एक टर्म यूज़ करते हैं कि विरुलेंट होते हैं, तो उनको उस पर्टिकुलर इंसान की जो इम्यूनिटी है वो किल नहीं कर पाती, और उनमें वो टीबी का फिर प्रोग्रेशन हो जाता है, खांसी होना, बुखार होना, फिर ये सब कुछ चल जाता है, और ये प्रोसेस चलता रहता है। जब वो एक इंसान कहीं दूसरी जगह घूमने फिरने के लिए जाता है, किसी मीटिंग के अंदर में खांसता छींकता, वो दूसरे लोगों को फैलाता है, और ये चेन चलती रहती है।
1: बिल्कुल सर, तो यहाँ पर ये बात क्लियर हो जाती है कि जो टीबी है वो आनुवांशिक बीमारी बिल्कुल भी नहीं है, पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं चलती है, ये एक जैसा कि सर ने बताया बैक्टीरिया से ये बीमारी फैलती है। अब बात आती है सर यहाँ पर लक्षणों के बारे में, तो किस तरह से कोई आम आदमी पहचान ले कि हो सकता है इनको टीबी हो गई है, तो ऐसे कौन कौन से वो सामान्य लक्षण होते हैं?
6: देखिए, वैसे जब बोलते हैं मेडिकल साइंस में 2+2=4 रेयरली होते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि बहुत सारे लक्षण हैं जो जाने जाते हैं कि टीबी के मरीज में होते हैं। जैसे अभी हम बोलते हैं कि अगर खांसी है किसी इंसान को और उसको 2 हफ्ते ऐसे ज़्यादा हो गए हैं, तो हम ये बोलते हैं कि एक सस्पिशन होना चाहिए कि ये टीबी हो सकती है। टीबी के मरीज को बुखार आता है, जिसको हम बोलते हैं लो ग्रेड इवनिंग राइज फीवर, मतलब बुखार बहुत तेज़ नहीं होता लेकिन शाम के टाइम यूजुअली बढ़ने लगता है, और जो पेशेंट है वो बोलते हैं कि जी हरारत सी होने लगती है रात में। कुछ मरीज ये भी शिकायत करते हैं कि भी रात में उनको पसीने आते हैं, मरीज को भूख लगनी कम हो जाती है जिसकी वजह से उसका वज़न कम होना, कभी कभी खांसी के साथ में ब्लड आना। तो ये जो मैंने सिम्टम्स आपको बताए, ये जो लक्षण बताए, ये यूजुअली तब होते हैं जब फेफड़े वाली टीबी होती है, और मोस्ट ऑफ केसेस में फेफड़े वाली टीबी, और उसी के बारे में हम ज़्यादा बात करेंगे। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कोई सुन के ये बोले, कई बार मरीज ये आते हैं कि जी मुझे तो खांसी हुई नहीं, मुझे तो हल्का बुखार आया था डॉक्टर, अब आप बोल रहे हो कि भाई ये टीबी कैसे हो सकती है, मुझे तो खांसी कभी हुई नहीं है ना, दुनिया बोलती है कि खांसी होती है ना। ये कुछ ये बोलते हैं जी मुझे तो बुखार आया ही नहीं है ना। तो मैं यहाँ ये कहना चाहता हूँ कि ज़रूरी नहीं, जितने सिम्टम्स जितने लक्षण का मैंने नाम लिया वो सभी एक साथ हों या सभी मरीजों में, किसी किसी मरीज में ये सब एक साथ देखने को मिल जाते हैं। कभी कभी मरीज आते हैं कि जी वजन कम हो रहा है, सिर्फ वजन कम हो रहा है, खांसी भी नहीं है, बुखार भी नहीं है, लेकिन पता चला या फिर उसने बताया हमें कि पिछले 2 महीने में मेरा 5, 6 या 7 किलो वजन कम हो गया। तो कई बार सिर्फ वजन ही कम होना एक लक्षण होता है, कभी कुछ भी नहीं होता, पेशेंट आता है जी वो खांसा मैंने और खांसी में ब्लड आ गया मेरे। तो ज़रूरी नहीं है कि सारे लक्षण सभी मरीजों में देखने को मिले, कभी कभी एक ही लक्षण होता है, लेकिन अगर नंबर ऑफ लक्षण बढ़ रहे हैं तो ज़्यादा चांसेस हैं कि पीटी की।
1: तो सर ये तो बात रही टीबी के लक्षणों की, अब बात कर लेते हैं कि कौन कौन से वो प्रारंभिक जांच होती हैं, टेस्ट होते हैं जिसके ज़रिए टीबी की पुष्टि की जाती है।
6: एक तो जो डॉट सेंटर है वो गवर्नमेंट के द्वारा हर 5 किलोमीटर के रेडियस में बनाए गए हैं जो सभी जगह उपलब्ध हैं। अगर खुद को भी ये लगता है कि लक्षण टीबी जैसे हो सकते हैं तो आप वहाँ डायरेक्टली जाके भी वो जाँच करा सकते हैं। और जाँच होती है कि सिंपल बलगम देना होता है, और बलगम में एक बोलते हैं कि स्पुटम फॉर AFB एसिड फास्ट बेसिलाई या ZN स्टेनिंग, जिसमें हम बैक्टीरिया जो टीबी के बैक्टीरिया हैं उनको स्टेन करके देखने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरा साथ के साथ अगर फैसिलिटी है तो छाती का एक्सरे करा सकते हैं, और उसके बाद में तो फिर एडवांस टेस्टिंग बहुत सारे टेस्ट हैं, जैसे हम अभी टर्शियरी लेवल पर काम कर रहे हैं तो बहुत सारी नई टेक्नोलॉजी हैं हम पता करते हैं, बलगम भी नहीं आ रहा तो उसके लिए भी बहुत कुछ हम कर पाते हैं। लेकिन जो दो मेन टेस्ट हैं जिनकी हम बात करते हैं, जो यूजुअली प्राइमरी लेवल की जो केयर होता है वहाँ पे भी होते हैं, वो एक्सरे से छाती का एक्सरे और बलगम की जांच टीबी के कीटाणु के लिए।
1: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही टीबी की जांच की, अब बात कर लेते हैं अगर किसी भी व्यक्ति की टीबी की जांच में पुष्टि हो जाती है टीबी की, कि आपको टीबी का संक्रमण हो चुका है, तो इसका इलाज क्या है?
6: देखो इलाज है, सबसे पहली बात तो कुछ लोग का तो क्वेश्चन यही होता है कि डॉक्टर साहब ये ठीक हो जाएगी, इसका इलाज है भी कि नहीं है। हाँ, मैं बोलता हूँ इलाज है। सबसे अच्छी बात यह है कि गवर्नमेंट द्वारा हर एक इंसान के लिए फ्री में जो मेडिसिन है वो उपलब्ध है। जैसे मैंने बोला कि हर 5 किलोमीटर के रेडियस में गवर्नमेंट ने एक डॉट सेंटर डेवलप करने की कोशिश की है, और हैं भी वो, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट में भी डॉट सेंटर है जहाँ से हम टीबी की दवाई मुफ्त में देते हैं। और यहाँ तो खैर हमारा वो एक मेडिकल कॉलेज का डॉट सेंटर है, तो हम यहाँ तो हम बिगड़ी हुई टीबी की दवाई भी जो बहुत कॉस्टली होती है, और उनमें एक मेडिसिन तो आपको जान के ताजुब होगा कि एक टैबलेट की कीमत 10,000 रुपये होती है ना, और वो भी फ्री में दी जाती है हमारे डॉट सेंटर के माध्यम से। और ये है कि ऑलमोस्ट 97-98% रिकवर्ड ईजिली हो जाते हैं। 1-2% केसेस में कुछ थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेशन आते हैं, या फिर कई बार मेडिसिन बंद करनी पड़ जाती है कि भाई उसका लीवर ख़राब होने लगा या पेशेंट को उल्टी आने लगी, वो चीज़ भी मैनेजेबल है। मैं आपके माध्यम से ये संदेश देना चाहूँगा श्रोताओं को कि बहुत सारे मरीज हमारे पास ऐसे आते हैं कि मैंने दवाइयाँ स्टार्ट तो की थी लेकिन मुझे उल्टी आने लगी, जी मुझे सूट नहीं की, मैंने तो छोड़ दी वो। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि छोड़ना समस्या का समाधान नहीं है, आप डॉक्टर के पास आइए, जो साइड इफेक्ट है उनको कंट्रोल करने के लिए भी मेडिसिन होती है, तो अल्टीमेटली वो भी कंट्रोल हो जाएगी।
1: बिल्कुल, आपके कहने का मतलब ये है कि अगर जो पेशेंट हैं, मरीज हैं, अगर वो नियमित रूप से दवा खाते हैं तो इस बीमारी से बच सकते हैं। आगे हम बात करना चाहेंगे जो भी पेशेंट हैं उनको टीबी हो गया, उनका इलाज चल रहा है, दवाई वो खा रहे हैं, तो उस दौरान उनका जो पोषण है, उनकी जो दिनचर्या है वो कैसी होनी चाहिए?
6: अभी जब मैंने आपसे जिक्र किया कि सैकड़ों हजारों साल पुरानी टीबी है, उस समय हमें ये भी नहीं पता था कि ये एक इन्फेक्शियस प्रॉब्लम है, उस समय इसका ट्रीटमेंट भी कुछ नहीं था, तो उस समय हुआ करते थे सैनिटोरियम। सैनिटोरियम का मतलब होता है कि शहर के बाहर, आबादी के बाहर एक खुली हवा में एक शेल्टर बना दिए जाते थे जहाँ सभी टीबी के पेशेंट रहते थे, और कॉन्सेप्ट ये होता था कि अच्छी धूप, अच्छी हवा और अच्छा खाना पीना किसी हद तक उनको ठीक करेगा। तो वही है कि एक अच्छा एनवायरनमेंट जहाँ पर पोल्यूशन कम हो। यहाँ पे हम जो पौष्टिक खाने की बात करते हैं, एक तो हम बैलेंस डाइट की बात करते हैं और एक इसमें करते हैं स्पेशली हाई प्रोटीन डाइट। तो पहले मैं हाई प्रोटीन डाइट के बारे में बताऊंगा कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जिनको खाने से प्रोटीन हमें मिलता है। एक तो जितने भी दालें होती हैं, सब टाइप की दालें, चाहे मसूर की दाल, उड़द की दाल, काली दाल, पीली दाल, उन सबको खाने से हमें प्रोटीन मिलता है, मिल्क और मिल्क प्रोडक्ट, और अगर आप नॉनवेज खाते हैं तो अंडा, मांस, मछली, ये सब ये प्रोटीन के पार्ट हैं। बैलेंस डाइट की बात करते हैं, इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि उसके अंदर में कुछ विटामिन्स भी हों, तो हम यहाँ एडवाइस करते हैं कि कुछ फ्रूट्स लें। और ये पोषक तत्वों को बढ़ाने के लिए या इसकी डाइट को बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट भी रुपये हर महीने उन मरीजों को देती है जिनको टीबी पाई जाती है।
1: तो सब चलते चलते हमारे और श्रोताओं से क्या कुछ कहना चाहेंगे आखिर में?
6: मैं देखिए ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई कैंसर का पेशेंट एक्सपायर होने जा रहा, मैं ज्यादा चिंतित नहीं हूँ, लेकिन टीबी के पेशेंट को मेरी भी जिम्मेदारी बनती है, उनके परिवार की भी जिम्मेदारी बनती है और हम सब समाज की जिम्मेदारी बनती है कि उसको प्रॉपर ट्रीटमेंट तक ले जाएं, उसको पकड़ के उसका इलाज कराएं और ट्रीटमेंट कराएं, क्योंकि अगर उसको आज ठीक नहीं कराया तो वो आपको भी फैलाएगा, कुछ दिनों बाद आप भी उसी प्रॉब्लम से ग्रसित होंगे।
1: डॉक्टर साहब बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अभी आप सुन रहे थे

100 दिवसीय टीबी जागरूकता अभियान पर विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई। और अब समय हो चला है आपसे अनुमति लेने का। अगले एपिसोड में फिर से आपसे करेंगे मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

0: सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट खड़े हैं रणभूमि में लेकर जागरूकता की तीर कमान जो ग्रेटर नोएडा से मिटा देंगे टीबी का नामोनिशान। टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है। प्रत्येक टीबी के मरीज को उपचार के दौरान सरकार द्वारा 1,000 रुपए प्रतिमाह दिए जाते हैं, जिसके लिए मरीज का एक बैंक अकाउंट नंबर और आधार कार्ड होना जरूरी है। स्वास्थ्य सही लाभ कही, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
0: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
2: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें, अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, OTT प्रोडक्शन, एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: हाय, मैं हूँ नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं कार्यक्रम खेत खलियान। किसान मित्रों, भारत सरकार देश के किसान भाइयों और गरीबों को सहायता पहुंचाने के लिए कई तरह की योजनाएं चला रही है, जिनमें से एक योजना है राष्ट्रीय गोकुल मिशन। राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का मुख्य उद्देश्य है कि गौवंशीय पशुओं में नस्ल सुधार, संरक्षण और दूध की उत्पादकता में वैज्ञानिक रूप से वृद्धि करने के लिए काम किया जाए। किसान मित्रों, पशुपालन के अंदर गाय हम सबका आधार रही है। गाय का महत्व देश में ही नहीं बल्कि विदेशों तक है। गाय का सामाजिक, पारंपरिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से भी बहुत ही महत्व माना गया है। हमारे भारत में गाय की जो प्रजाति पाई जाती है उसे बांस इंडिकस के नाम से जाना जाता, जिसे हम साधारण भाषा में देसी गाय कहते हैं। ऐसे में स्वदेशी गायों के संरक्षण और विकास के लिए कई प्रकार की प्रयोगशाला बनाई गई हैं और वैज्ञानिक विधियों का उपयोग करके किसान भाइयों को देसी गायों के पालन और इनके उत्पादन क्षमता बढ़ाने के लिए मदद की जा रही है। तो किसान भाइयों, आगे भी हम आपको इस योजना के बारे में बताते रहेंगे, लेकिन इस समय आपका करवाते हैं मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।
1: हम देश के वीर किसान खेत में,
2: सही बात है,
1: हम देश के वीर किसान खेत में, हम दिन रात कमावे से।
2: ओहो, हमारी भी तो बात सुन लो।
3: कहिए।
2: ड्यूट

किसान भाई कहिए फौजी भाई, हमें आराम का सोना नहीं मिलता, लेकिन हमको भी नहीं मिलता फौजी भाई, कभी कभी तो बॉर्डर

तो किसान मित्रों, अभी आप ये रागनी सुन रहे थे। कलाकार थे ऋषिपाल खदाना और कोशिंदर खदाना। किस्सा था जय जवान जय किसान का। और आज के खेत खलियान कार्यक्रम में हम बात कर रहे हैं गोकुल मिशन योजना की। किसान मित्रों, इस योजना के जरिए भारतीय देसी गाय की नस्ल जैसे गिर, साहिवाल, राठी, देवनी, थारपरकर, रेड सिंधवी, इन गायों का विकास किया जाएगा और कृत्रिम गर्भाधान के जरिए इनकी नस्ल को अधिक गुणवत्तापूर्ण बनाया जाएगा। अब बात करते हैं कि इस योजना का लाभ हमारे किसान भाई, पशुपालक भाई कैसे ले सकते हैं। तो सरकार ने कुछ शर्तें रखी हैं इस योजना का लाभ लेने के लिए। तो सबसे पहले तो हमारे जो किसान भाई हैं, पशुपालक भाई हैं, उनकी आयु 18 साल से अधिक होनी चाहिए। जो छोटे पशुपालक और किसान हैं, उन सभी को इस योजना के तहत आवेदन करने के लिए पात्र माना जाएगा और केवल वही किसान आवेदन कर सकते हैं। और हाँ, यदि हमारा कोई भी किसान भाई सरकारी कर्मचारी है या वो सरकारी पेंशन लेता है तो उसे इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा। तो अब बात आती है कि इस योजना का लाभ कैसे लिया जाए। जी हाँ, राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना का लाभ लेने के लिए आपको अपने नजदीकी पशुपालन और डेयरी विभाग में संपर्क करना पड़ेगा। तो वहां पर जाकर आप संपर्क करें और इस योजना का लाभ उठाएं। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही राष्ट्रीय गोकुल मिशन योजना की। और आइए फिर से करवाते हैं आपका मनोरंजन और आपको सुनवाते हैं एक और रागनी। कलाकार हैं रविंद्र खालौर और किस्सा रहेगा द्रौपदी चीर हरण का। तो आइए सुनते हैं ये रागनी।

तो किसान मित्र, अभी आप द्रौपदी चीर हरण के खिस्से से ये रागनी सुन रहे थे और कलाकार थे रविंद्र खालौर और उनके साथी। किसान मित्रों, मिट्टी में लगातार रसायनों के छिड़काव और रासायनिक उर्वरकों की बढ़ती मांग ने पर्यावरण को प्रदूषित करने के साथ साथ हमारी मिट्टी की उर्वरा शक्ति को भी घटाया है। इन रसायनों के प्रभाव से मिट्टी को उर्वरकता प्रदान करने वाले सूक्ष्म जीवों की संख्या में अत्यधिक कमी हो गई है, लेकिन खेतों में रासायनिक उर्वरकों की जगह जैव उर्वरकों का इस्तेमाल करने से इस कमी को पूरा किया जा सकता है। किसान मित्रों, जैव उर्वरक विभिन्न प्रकार की मिट्टी जनित रोगों के नियंत्रण में सहायक सिद्ध होते हैं। इसके अतिरिक्त जैव उर्वरकों से किसी भी प्रकार का प्रदूषण नहीं फैलता और इसका कोई दुष्परिणाम भी नहीं होता, ना देखने में आया है अभी तक, और ना ही इसका प्रयोग करने वालों पर इनका कोई दुष्प्रभाव देखा गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जैव उर्वरकों के उपयोग करने से रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता में कमी आ सकती है। पिछले कुछ दशकों से हमारे बहुत से किसान बहन भाई जैव उर्वरकों का प्रयोग अपने खेतों में कर रहे हैं। तो किसान मित्रों, और भी क्या क्या फायदे होते हैं जैव उर्वरकों के, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन एक और रागनी आपको सुनवाते हैं। कलाकार हैं प्रियंका चौधरी और किस्सा रहेगा नरसी के भात का। तो आइए सुनते हैं प्रियंका चौधरी से ये रागनी।

मनसा सेठ को बुलाया, बोले महाराज आपने बड़ी लंबी चौड़ी चिट्ठी लिखी थी, अगर उसकी कोई कॉपी आपके पास हो तो मिला लो, कोई सामान कम या ज्यादा तो नहीं है, या कोई ऐसा हो हम भूल गए हो, बहुत ज्यादा था। दूसरी बात में

क्योंकि जब नरसिंह जी भात भरने आए थे 16 साधुओं के साथ, तो उससे पहले रात्रि को उनकी बेटी मिलने आई थी गौशाला में, तो यूं कहती है पिताजी कि हसी करावण ने आज्ञा ले मोढ़े साथ में, और तेरे पल्ले में दमड़ी कोन्या के देगा भात में। बोले लाडो चिंता ना कर, मेरे को उस पे भरोसा है, जिसने सारी दुनिया को बनाया है वो मेरा भात भरने के लिए जरूर आएगा। और तीसरी बात में गेल गिड़िया

तो किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे प्रियंका चौधरी से ये रागनी, और किस्सा था नरसी के भात का। आपको जरूर ये रागनी पसंद आई होगी। और आज के खेत खलियान कार्यक्रम में आपको पता है कि अभी हम जो बात कर रहे हैं वो कर रहे हैं जैव उर्वरकों की। किसान मित्रों, फसलों में जैव उर्वरकों के इस्तेमाल करने से वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन पौधों को अमोनिया के रूप में सुगमता से उपलब्ध हो जाती है, और जमीन में पहले से मौजूद अघुलनशील फास्फोरस पोषक तत्व घुलनशील अवस्था में परिवर्तित होकर पौधों को आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। क्योंकि जीवाणु प्राकृतिक हैं, इसलिए इनके प्रयोग से भूमि की उर्वरा शक्ति बढ़ती है और पर्यावरण पर विपरीत असर नहीं पड़ता। रासायनिक उर्वरकों के पूरक के रूप में जैव उर्वरकों का प्रयोग करने से हम अपनी खेती में बेहतर परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। तो किसान बहन भाइयों, आपने जाना जैव उर्वरकों के उपयोग के बारे में और इनसे होने वाले फायदे के बारे में। और देखिए, अब समय हो चला है कि आपसे अनुमति ली जाए। तो आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

इस अभियान का आह्वान, यदि है आपको टीबी के लक्षण तो जल्द जांच से ही होगा सबसे तेज समाधान। टीबी होने पर जल्द जांच से उपचार में आती है तेजी और गंभीर बीमारी का खतरा होता है कम। सुरक्षित

0: सकता है आपका परिवार और अन्य करीबी जन। कुछ समूहों में टीबी का खतरा अधिक होता है, जैसे वे लोग जिन्हें पिछले 5 वर्ष में टीबी हुआ हो, 60 वर्ष या उससे अधिक आयु, धूम्रपान और शराब का सेवन करने वाले, कुपोषित,
1: टीबी रोगी के साथ रहते हों,
0: मधुमेह रोगी, एचआईवी से पीड़ित लोग, तो टीबी के लक्षण होने पर अपने नजदीकी सरकारी या निजी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में निःशुल्क जाँच और उपचार पाएं। आइए हम सब साथ मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: टीबी फ्री इंडिया बनाने में सक्रिय भूमिका निभाएं।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: ओले ओले ओले, ओ शोनक। हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर। आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है,
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना। घर में ORS और जिंक है ना? स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
7: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
6: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

तो दोस्तों अब तो नारद जी हताश हो जाते हैं और उधर सावित्री के पिताजी अश्वपति, उन्होंने सोचा इकलौती पुत्री है, हो सकता है इसके दिलो दिमाग में आ जाए और फिर कहने लगे, बेटी मेरी एक बात सुन,

0: आइए समझते हैं महावारी के चक्र को। महावारी की शुरुआत गर्भाशय की परत के टूटने से शुरू होती है। इस दौरान हार्मोन के कम स्तर की वजह से महिला या लड़की अक्सर चिड़चिड़ा महसूस करती है। महावारी के दौरान अंडाशय पर तरल से भरे हुए फॉलिक्स आने लगते हैं। इनमें से प्रत्येक में एक अंडा होता है जो बाहर आने की प्रतीक्षा कर रहा होता है।
1: फॉलिकुलर चरण, इस चरण में गर्भाशय की परत फिर से बनने लगती है। एस्ट्रोजन का स्तर लगातार बढ़ता रहता है और फॉलिकल जिसमें अंडा रहता है और बड़ा हो जाता है। अंडे के छूटने से ठीक एक दिन पहले और अंडे के छूटने का दिन सबसे ज्यादा प्रजनन योग होते हैं। ये आमतौर पर माहवारी के 11वें से 14वें दिन के बीच में होता है, लेकिन ये बहुत अधिक इस बात पर भी निर्भर करता है कि महिला या लड़की का मासिक चक्र कितना लंबा है।
0: ओव्यूलेशन चरण, इस चरण में अंडा बाहर निकलता है। यदि महिला इस दिन या 3 दिन पहले यौन

0: संबंध बनाती हैं, तो गर्भवती होने की संभावना सबसे ज्यादा रहती है। फॉलिकल का फटना गर्भाशय की परत को और भी मोटा बना देता है। अंडाशय से निकला हुआ अंडा फैलोपियन ट्यूब के जरिए अपनी यात्रा शुरू करता है और आगे जारी रखता है।
1: ल्यूटियल चरण के दौरान होने वाले हार्मोनल परिवर्तन अक्सर माहवारी के पहले महसूस किए जाने वाले सामान्य लक्षणों से संबंधित होते हैं, जैसे कि आमतौर पर माहवारी से पहले मूड में बदलाव, सिर दर्द, चेहरे पर मुहासे, पेट फूलना, अस्तरों में भारीपन और दर्द आदि का अनुभव हो सकता है, जो कि सामान्य है। गर्भाशय में जमी हुई परत एक प्रकार का रसायन छोड़ती है, जो कि अंडे के निषेचित होने पर उसे गर्भाशय की दीवार से चिपकने में मदद करती है, और यदि निषेचन नहीं हुआ है तो वही रसायन उस परत को टूटने और बहकर बाहर निकलने में मदद करता है।
0: महावारी संबंधी अधिक जानकारी के लिए नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
1: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।
2: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: The world is here.

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ किरण पांचाल आपके साथ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और आज मैं लेकर आई हूँ आप लोगों के लिए बहुत ही उमदा डिस्कशन, जिस पर कि हमारे साथ होंगे कुछ गेस्ट और वो डिस्कशन है महिलाओं पर और मीडिया पर। लेकिन विषय क्या है? विषय है मीडिया में महिलाओं का आज के युग में चित्रण। और इस डिस्कशन में आज हमारे साथ हैं डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया, डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी, डॉक्टर सीपी रश्मि और मिस्टर प्रवीण जैन। ये सभी अतिथि आज हमारे साथ जो है वो SMFE डिपार्टमेंट शारदा यूनिवर्सिटी से। आप सभी का इस डिस्कशन में बहुत बहुत स्वागत है।
6: धन्यवाद किरण जी।
7: थैंक यू।
5: धन्यवाद। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया से। डॉक्टर मुक्ता, जैसे कि आज हम बात कर रहे हैं मीडिया में औरतों का जो चरित्र चित्रण किया जा रहा है या फिर जिस भी तरह से उन्हें प्रेजेंट किया जा रहा है, उसमें सबसे पहले हम पॉजिटिविटी से बात करते हैं, तो आपको क्या लगता है कितना पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन आज की तारीख में हो रहा है?
6: किरण जी, देखिए ये बहुत ही एक संगीन मुद्दा है जिस विषय में हम आज बात कर रहे हैं, और महिलाओं का मीडिया में जो चरित्र चित्रण है इसके ऊपर बहुत डिस्कशंस होते भी रहे हैं, काफी फ्रूटफुल भी हैं। तो अगर पॉजिटिव की तरफ जाएं तो दरअसल मीडिया काफी अच्छे तरीके से आजकल यू नो जो विमेन है या जो महिलाएं हैं उनका पोर्ट्रे कर रहे हैं। जैसे अगर हम देखें कुछ एडवर्टाइजिंग की अगर हम बात करें, अगर वहां पे आप देखेंगे तो जो एक स्टीरियोटाइप इमेज विमेन्स का रहा है हमेशा से मीडिया में, हम रिप्रेजेंट करते हैं और मीडिया हमेशा एक्यूज्ड भी होता रहा है इस चीज को लेके कि उन्होंने शायद महिलाओं को कहीं एक टाइड तरीके में बांध दिया है, तो उसको वो कहीं वो रूढ़िवादी जो विचारधारा है तोड़ रहा है। जैसे कुछ एडवर्टीजमेंट्स हैं जहाँ पे दिखाया जाता है कि पहले ये होता था कि महिलाओं का काम है वो घर की देखभाल करेंगे, घर में मतलब अपने हस्बैंड्स बच्चों को देखेंगे, कहीं ना कहीं वो टूट रहा है। वो चाहे आप धारा के एड्स हो या कैसे भी, जहाँ पे ये है कि अब वो वॉइसलेस नहीं होकर उनका घर की जिम्मेदारियों में और घर की कहे ना जैसे बहुत सारे जिम्मेदारियां हैं उनमें उनका पक्ष रहता है या वो जो कहेंगी वो माना जाता है। तो ये जो एड्स हैं ये बहुत तरीके से अगर बोले तो सोसाइटी में हम, क्योंकि मीडिया हमेशा सोसाइटी का एक मिरर रहा, जो सोसाइटी में होता है वो मीडिया में दिखता है और जो मीडिया में दिख रहा है वो सोसाइटी में होना शुरू होता है। तो मैं ये कहूंगी कि अभी जो कंटेम्प्रेरी सोसाइटी है वहाँ पे मीडिया का जो पोर्ट्रेल है, मतलब मीडिया में जो विमेन्स का पोर्ट्रेल है, वो बहुत हद तक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से जा रहा है, जहाँ पे दिखाया जा रहा है कि महिलाएं अब सिर्फ आओ बहन चुगली करें इसमें नहीं दबके रह गई है, वो अब घर में उतना ही हिस्सेदारी निभा रही है जितना कि हमेशा से पुरुष निभाते आए हैं। तो मेरे हिसाब से मीडिया काफी अच्छा कर रहा है व्हेन इट कम्स टू यू द पोर्ट्रेल ऑफ विमेन इन मीडिया।
5: तो डॉक्टर मुक्ता से जब हमने जाना कि महिलाओं को मीडिया में जो उनका चित्रण किया जा रहा है उसकी पॉजिटिविटी के बारे में जाना, तो इसमें अब मैं डॉक्टर उत्सव कृष्ण मुरारी जी से बात करना चाहूंगी कि जिस तरह डॉक्टर मुक्ता जी ने बताया कि अब उनका पॉजिटिव पोर्ट्रेयल जो है वो हो रहा है, लेकिन अगर हम देखें कि पुराने अगर हम सिर्फ 10 या 15 साल पहले ही जाएं तो वहां से लेकर अब तक कितना बदलाव आप देखते हैं, आपको क्या लगता है कि जो महिलाएं हैं वो पहले सिर्फ और सिर्फ ऑब्जेक्टिफाई की जा रही थी या फिर सिर्फ सेक्सुअलिज्म के लिए यूज किया जा रहा था, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट हो, सिनेमा हो, उन्हें एक बेहतरीन रोल देने के लिए, या फिर सिनेमा में अगर हम बात करें तो वो उनकी जो विमेन ओरिएंटेड मूवीज थी वो कितनी चल रही थी या फिर उनमें उनको किस तरह के रोल्स दिए जा रहे थे, सोसाइटी में कितना एक्सेप्टेंस था। तो तब की एरा में, ज्यादा नहीं 10-15 साल पुरानी बात कर रही हूँ, और आज में आप कितना फर्क महसूस करते हैं?
7: देखिए, पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा कि जब आप किसी महिला के बारे में सोचते हैं या सोचने के लिए शुरू करते हैं तो सोच नहीं समझ रखिए। आए दिन ऑटो के पीछे जो मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये महज शब्द नहीं है। यहाँ सिर्फ महिला की बात नहीं हो रही है, यहाँ उस जीवन की बात हो रही है जो प्रकृति आपको देती है। जो प्रकृति की बात आती है तो प्राकृतिक रूप से आप समझिए कि जितना एक पुरुष के पास ये राइट्स है उतना ही उस महिला के पास भी राइट्स है। पहले तो वो दायरे को समझना जरूरी है जो इंसान ने स्वयं ही बना दिया है, और जब इसको बनाता है तो समझिए आप एक दूसरे पर हावी हो। अब हावी हो जाते हैं तो ना वहाँ पे जीवन है ना मृत्यु है, यहाँ ना मीडिया रहती है ना मीडियम रहता है। माध्यम तो हम और आप हैं, और माध्यम बनने के साथ साथ संवाद भी जरूरी है। अब मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म सामने होकर आया जो वॉइस फॉर वॉइसलेस, यहाँ सिर्फ वॉइस फॉर वॉइसलेस वाली बात है। तो ये मीडिया की जरूरत क्यों पड़ी? जब मीडिया कोई चीज दिखाता है तब आपके दिमाग में ये चीज समझ में आती है कि नहीं, ये सही दिखा रहा है। ये चीज तो, ये तालीम तो आपको घर से ही शुरू करनी पड़ेगी कि आपकी सोच जो है वो सकारात्मक कब होगी। सोच सकारात्मक जब आप संवाद करेंगे, बिना संवाद के कोई भी चीज। अब चलते हैं 15-20 साल पहले महिलाओं की स्थिति क्या थी, नहीं थी, किताबों के माध्यम से हम लोग जानते हैं, या कई ऐसे शिक्षाविद हैं या कई ऐसे सोशल साइंटिस्ट हैं जिन्होंने कई ऐसे कार्य किए हैं और कई ऐसे कार्य हुए हैं जो सामने आए हैं और उसके बारे में हम जान पाए हैं। लेकिन जानना ही सिर्फ जरूरत नहीं थी, समझ बनाना बहुत जरूरी है। जहाँ तक मीडिया एक महिला को जिस प्रकार से रिप्रेजेंट करता आया है, उसको सामने वाला व्यक्ति किस प्रकार से प्रसीव कर रहा है, किस प्रकार से ले रहा है, इसकी समझ वो सामाजिक दायरे में समझना बहुत जरूरी है। मीडिया समाज से है, समाज मीडिया से है, परस्पर मेलभाव बनाना बहुत जरूरी है। तो यहाँ सिर्फ मुद्दा यह नहीं है कि महिलाओं का सम्मान, महिलाओं के लिए साथ समझ, महिलाओं का कहिए प्राकृतिक रूप से जो संरचना है पुरुष से बिल्कुल अलग है। अब पुरुषों के लिए ये बहुत जरूरी है कि उनके साथ सामंजस्य बिठाएं, समझ बिठाएं, क्योंकि बिना सामंजस्य और संवाद के कोई भी चीज संभव नहीं। तो मीडिया है तो मीडियम है, आप हैं तो हम हैं, इस तरीके से। तो महिलाओं, मेरा अभिमान, महिलाओं का सम्मान, ये कह लेने से नहीं, इसको सार्थक करना हम सब के लिए ये सबसे बड़ा दायित्व है।
5: उत्सव जी, जैसे कि आपने बात कही अभी कि हमें महिलाओं का सम्मान करना चाहिए, ये आपने एक एथिकल बात कही है जो कि हमारे समाज में होनी चाहिए। लेकिन मेरा प्रश्न यहाँ पर ये है कि पिछले 15 साल में आप कितना डिफरेंस अभी देख रहे हैं, क्योंकि जब हम पहले के एडवर्टाइजमेंट्स देखते थे तो उसमें महिलाओं को एक खूबसूरत महिला होनी चाहिए, एक मतलब आज्ञाकारी महिला होनी चाहिए, वो महिला जो सिर्फ घर का काम कर रही है, अपने घर की जिम्मेदारियों को पूर्ण कर रही है, वहाँ पर किसी तरह की भी कोई कमी रह ना जाए, और अगर कमी रह रही है तो उसे सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट हो, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हो, वहाँ पर उसे एक नेगेटिव रोल के तौर पर उसका पोर्ट्रेल किया जाता है। जैसे हम डेली सोप्स भी देख लें तो जो महिला बगावती है या फिर जो महिला ये सब चीजें नहीं कर रही है, घर की जिम्मेदारियां नहीं कर रही है, तो हम उसे एक नेगेटिव रोल में देखते हैं।
7: मैंने आपको इस बीच में एक शब्द कहा था कि मीडिया जो दिखा रही है वो आदमी सबसे पहले समझ जाता है, और यहाँ पे सामने बैठा व्यक्ति कुछ कह रहा है या समझ रहा है, उसको समझने में हम शायद पूरा जीवन लगा देते हैं। तो शायद संवाद की कमी है। आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इतने टेक्नोलॉजिकल आइडियाज के साथ घिरे हुए हैं कि खाना तक ऑर्डर करने के लिए अपनी माँ से ना कह के अब जोमेटो हमारी माँ। तो बड़ा जो है द्वंद पैदा हो रहा है। इमोशन जो है, एक तरफ टेक्नोलॉजी आपको सहूलियत देता है, दूसरी तरफ रिलेशनल आइडियाज को समझने में द्वंद पैदा करता है। जरा सी दूरी हुई नहीं कि आपकी समझ गड़बड़ा जाती है और आप बेचैन से हो जाते हैं। मीडिया अच्छी बात है, रिप्रेजेंटेशन को बढ़ा रहा है, बहुत तरीके से बढ़ा रहा है, लेकिन मीडिया का भी एक जिम्मेदारी बनती है कि मीडिया का भी एक दायित्व बनता है कि मीडिया, कई ऐसे मीडियाज हैं, मैं किसी मीडिया पे आरोप प्रत्यारोप के लिए नहीं बैठा हूं, लेकिन कई ऐसे मीडियाज हैं जो शायद समय से परे होकर के कई चीजों को प्रेजेंट कर देते हैं। आज सोशल मीडिया के दायरे में देखें तो फेक न्यूज का जो एक दौर चला तो उसमें फेक न्यूज लोग कंज्यूम कर रहे हैं। ऐसा ही महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन रीजन, महिला सिर्फ महिला है, पुरुष सिर्फ पुरुष है।
3: जी, तो जिस तरह से आप बता रहे हैं कि वो दोनों जो है वो एक डिफरेंट क्रिएचर्स हैं, तो उनको उन्हीं की तरह से सम्मान मिलना चाहिए, एक्सेप्ट करना चाहिए। अब हम बात करते हैं डॉक्टर सीपी रश्मि जी से। रश्मि जी, आज हम जब देख रहे हैं सिनेमा हो या एडवर्टाइजमेंट्स हो या फिर हम थिएटर भी देखते हैं, कोई भी ऑडियो विजुअल मीडियम हम देखते हैं, तो वहाँ पर हमें हमेशा खूबसूरत महिलाएं ही दिखाई देती हैं। वहाँ पर जगह नहीं है भद्देपन की, लेकिन महिलाएं तो वो भी हैं, राइट्स उनके भी हैं, टैलेंट उनके अंदर भी है। तो आप क्या सोचती हैं कि आज की मीडिया में जो बॉडी इमेज या ब्यूटी स्टैंडर्ड्स हैं वो किस तरह के हैं, क्या उनमें कोई बदलाव देख रही हैं आप पिछले 15 सालों में?
8: किरण जी, बहुत ही ज्यादा बदलाव है। ठीक है, अभी आपने दो बातें करी, एक कि सिर्फ सुंदर महिलाओं को देखते हैं, बट जो कि डॉक्टर मुक्ता ने बोला कि कैसे चीजें बदली और कैसे मीडिया का पॉजिटिविटी उन्होंने दिखाई कि कैसे, मतलब आजकल आप देखेंगे प्लस साइजेस के भी एड्स आ रहे हैं। बट समवेयर डाउन द लाइन मैं आपको एक बात समझाना चाह रही हूँ कि देयर इज अ थिंग कॉल्ड लिपस्टिक फेमिनिज्म जो कि आजकल चल रहा है, जिसमें हर औरत को बोला जाता है, जहाँ पे कि मैं डॉक्टर उत्सव की भी बात को लेकर आना चाहूंगी, जहाँ पे दिखाया जाता है कि वो औरत एम्पावर्ड है या सशक्त है जो कि किसी भी टाइम महीने के उन दिनों में भी सफेद पैंट पहन के दौड़ रही है। ठीक है, आपको एक बात समझनी पड़ेगी, मीडिया आज के दौर में इज एवरीथिंग अबाउट कंज्यूमरिज्म। ठीक है, अब उस सेक्टर को, उसको क्या कहते हैं, टारगेट किया जा रहा है जो कि कंज्यूमर्स ने छोड़ दिया था। ठीक है, अब जैसे कि आज की तारीख में अगर आप एक चीज नोटिस करेंगे, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स बहुत है जहाँ पे हम बहुत ऑनलाइन कपड़े खरीदने लगे हैं। एक टाइम ऐसा था जब आप स्टोर पे जाते थे, आपको एक्सेल और डबल एक्सेल कपड़े मिलना मुश्किल होते थे, वहाँ आज आपको 7XL से लेके 8XL तक के कपड़े आराम से मिल जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं मार्केट ने ये समझा है कि ये भी एक क्या कहते हैं
5: ग्रुप है
8: जिसे आइडेंटिफाई किया गया, जिसे हम कपड़े बेच सकते हैं। हमारी इंडियन संस्कृति में एक बहुत चीज है कि कपड़ा वो पहनो जो कि आपको कंफर्टेबल हो, बट आज की तारीख में अगर आप देखेंगे कि मॉडल्स होती हैं जो कि टाइट जीन्स पहनती हैं, 15XL तक की मॉडल होती हैं, चाहे वो देखने में अच्छी नहीं लगे, बट बोला जाता है कि ये नारी सशक्तिकरण का एक रूप है। ठीक है, सो दिस इज समथिंग जो कि मैं ऑडियंस पे ही छोड़ती हूँ कि वो खुद सोचे कि क्या सही है गलत है, सबको पता है
5: जी।
8: बट कहीं ना कहीं हमें ये सोचना पड़ेगा कि जो बॉडी इमेज की बात आ रही है उसको एक नए मार्केट को डेवलप किया जा रहा है
5: जी।
8: ठीक है, कहीं ना कहीं जिसकी वजह से डिप्रेशन बहुत हो रहा है, एक तरफ हम ये प्रमोट कर रहे हैं चाहे गोरा हो चाहे काला हो चाहे मोटा हो चाहे पतला हो, सब अच्छा है, सब क्या कहते हैं हर औरत का एक रूप है, वहीं दूसरी तरफ फिल्टर्स
5: जी
8: को भी प्रमोट किया जा रहा है। अगर मैं मोटी हूँ या कोई पतला है तो अलग एक पर्टिकुलर एंगल से ही फोटो लेगा, उसको प्रमोट किया जा रहा है, कोई भी अपनी नेचुरल फोटो डालना नहीं चाह रहा है इंटरनेट पे। अगर आप किसी लोगों को डीपी के थ्रू जानते हैं और उन्हें रियल में मिलेंगे तो बहुत डिफरेंस होता है उसमें, स्पेशली फीमेल ज्यादा क्या कहते हैं फिल्टर्स का प्रयोग करती हैं।
5: तो आपको क्या लगता है कि ब्यूटी स्टैंडर्ड्स को लेकर महिलाओं में किसी तरह का प्रेशर है?
8: बहुत प्रेशर है, ऐसी बहुत रिसर्च की गई है, अगर आप जाएंगे इंटरनेट में पढ़ेंगे, इसकी वजह से बहुत साइकोलॉजिकल इश्यूज हो रहे हैं। लोग औरतें मतलब ऐसे केसेस आपको मिलेंगे जहाँ पे लोग अपनी डीपीज में फिल्टर्स यूज कर करके, स्पेशली स्नैपचैट जैसे फिल्टर, उसमें बहुत तरीके के फिल्टर्स हैं, कि उन्होंने अपना जो ऑनलाइन स्पेशली जो इंटरनेट पे अपना रिप्रेजेंटेशन जिस तरीके से अपने आपको प्रस्तुत किया है वो इस तौर पे किया है कि वो अपने कुछ इंटरनेट के दोस्तों से मिलने से पहले जाके प्लास्टिक सर्जरी करा रहे हैं लोग, तो मतलब इतना असर पड़ रहा है। तो अभी क्या है ना, हम एक ऐसी जनरेशन बना रहे हैं जो कंफ्यूज्ड है, जहाँ पे हर बात को किया जा रहा है क्योंकि हर तरीके के प्रोडक्ट बिक रहे हैं, एक फोन से लेके फिल्टर से लेके अलग तरीके के कपड़े से लेके मेकअप से लेके सब बिक रहा है, और हर चीज को बेचने के लिए एक इस तरीके के सूडो फेमिनिज्म जिसे कहते हैं, ठीक है, जिसमें ऐसी ऐसी बातें फीड की जा रही है जिसका फेमिनिज्म या एक औरत होने से कुछ लेना देना ही नहीं है। ठीक है ना, तो हमें ये बात जैसे कि डॉक्टर उत्सव ने कहा समझना जरूरी है, मीडिया में जो दिखता है वो नहीं होता है। ठीक है ना, मीडिया आजकल हम शायद वो उस जमाने का मीडिया नहीं रह गया जिसे बहुत मॉनिटर करके प्रस्तुत किया जाता था लोगों के सामने, आजकल इंटरनेट का जमाना है, व्हाट्सएप का जमाना है, फेसबुक स्नैपचैट इंस्टाग्राम, जिसमें कंटेंट कोई भी दे रहा है और हम उन कंटेंट को देख रहे हैं। तो जहाँ पे हमें हर चीज को बहुत सोच समझ के उस चीज को कहते हैं ना आगे ले जा, अगर कोई मुझे कहेगा ये करने से आप एम्पावर्ड हो, तो आपको अपने आप से 5 सवाल पूछने की जरूरत है, क्या मैं एम्पावर्ड होंगी ये करने से या नहीं होंगी। सो आई थिंक इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड व्हाट इज योर बॉडी, आपकी बॉडी क्या है, आप किस चीज में कंफर्टेबल हो, आपके खुद के स्टैंडर्ड्स क्या है सुंदर होने के, ठीक है, क्या चीज आपको डिप्रेस्ड कर रही है, क्या चीज नहीं कर रही है, क्या चीज

0: उनका कॉन्फिडेंस बूस्ट कर रही है क्या नहीं कर रही है।
1: डॉक्टर मुक्ता से मैं इसी के बारे में कॉन्टिन्यूटी में ही एक बात पूछना चाहूंगी। जैसे कि डॉक्टर रश्मि ने बोला, एक वर्ड यूज किया, सूडो फेमिनिज्म, तो मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि ओपनली किसी भी चीज के बारे में बात करना मीडिया में, ओपनली अपने आप को प्रेजेंट करना आजकल फेमिनिज्म की एक बहुत बड़ी डेफिनेशन हो गई है, आप इससे कितना वो रखती हैं?
2: जी, अगर रश्मि जी की बात बोलूं तो मैं आई थिंक पूरा उन्हीं के लाइन में पूरी तरीके से इत्तेफाक रखते हुए बात करूंगी। लेकिन हाँ, ये वो आप कहेंगे ना सामाजिक कॉन्सेप्ट हैं जो समय के साथ बदलते भी हैं। सूडो फेमिनिज्म जैसा भी एक कॉन्सेप्ट है जो हो सकता है आज उसकी एक डेफिनेशन है आने वाले समय में और उसमें और डेवलप हो डेफिनेशन। तो अगर हम मीडिया में ही विमेन के पोर्ट्रेयल की बात कर रहे हैं तो हम हमेशा बात करते हैं महिला सशक्तिकरण का। अब वो सशक्तिकरण जो है उसके अपने ही बहुत सारे डेफिनेशन हैं। हमें लगता है कि यदि महिला आजाद है, मतलब अपने डिसीजंस खुद लेने के लिए आजाद है, वो सशक्त है। अगर वो अपना परिवार चलाने में इकोनॉमिकली अपने हस्बैंड की भागीदारी कर रही है तो वो सशक्त है, ठीक है। तो इसमें भी हमें देखना पड़ेगा कि हम सशक्तिकरण के नाम पे मीडिया में क्या परोस रहे हैं। इसमें जैसे आप देखें कुछ ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स की अगर बात करें या सिनेमा की बात करें ज्यादा, क्योंकि वहां पे एक हमें बड़ा कंटेंट मिलता है, एडवर्टीजमेंट में छोटे कंटेंट्स मिलते हैं। तो जैसे एक सीरीज है जिसके बहुत सारे एपिसोड्स चल रहे हैं या उसके फर्दर सीरीज चल रहे हैं, फोर मोर शॉर्ट्स प्लीज आई थिंक, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो, उसमें भी महिलाएं हैं। लेकिन क्या वहां जो पोर्ट्रेल है हम उसे सशक्तिकरण कहेंगे? मतलब बीइंग अ वुमन, मैंने उसका एक एपिसोड या दो देखे, मुझे वो लगा कि नहीं, वो पोर्ट्रेल ऑफ वुमन नहीं चाहती मैं। मतलब मैं भी एक महिला हूँ, मैं कभी नहीं चाहूंगी कि वो, क्योंकि वो मैं उसके साथ एसोसिएट अपने आप को नहीं कर पाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि समाज में महिलाओं को रिस्पेक्ट चाहिए तो मैं नहीं चाहूंगी कि ऐसी महिला मैं नजर आऊं, और मैं हूँ भी नहीं, तो मैं कनेक्ट नहीं कर पाती उससे। तो अगर मीडिया की जिम्मेदारी है तो क्यों नहीं हम ऐसा कुछ पोर्ट्रे करें जिसमें जो महिलाएं हैं वो वैसी दिखें। सशक्तिकरण के नाम पर कुछ बहुत अलग तरीके से उन्हें पोर्ट्रे नहीं करना चाहिए ना। तो मैं आई थिंक ये कहूंगी, आप सूडो जर्नलिज्म या सूडो सॉरी फेमिनिज्म, इसकी अगर हम बात करें तो मैंने आपको कहा ना, सबका अपना देखने का नजरिया है, ठीक। और अगर मैं महिलाओं की बात करूं, मैंने बहुत सारे पुरुषों को महिलाओं के लिए अच्छी बातें करते सुना है और मैंने उन्हीं लोगों के अगेंस्ट लोगों को बोलते भी सुना है कि वो तो फेमिनिस्ट हैं। तो ये जो एक टाइट हो जाते हैं ना कि आप महिलाओं के बारे में बात करें तो आप फेमिनिस्ट हैं, ये विचारधारा भी नहीं होनी चाहिए। तो आई थिंक मीडिया कहीं ना कहीं कोशिश तो कर रहा है, लेकिन हाँ, जैसे कंज्यूमरिज्म है, आप उससे पीछे नहीं हट सकते। हम सिर्फ कॉन्टेंट बनाए और इन रिटर्न हमारे को कुछ भी नहीं मिले, ये भी नहीं हो सकता। बट हाँ, कितनी जरूरत है और वो कैसे पहुंचाया जाए, जैसे उत्सव जी ने भी बहुत अच्छे से बोला, उन्होंने बताया कि हमें समझ डेवलप करनी है, और आई थिंक यही सबसे बड़ा एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है मीडिया की। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं मीडिया दोनों रोल प्ले कर रहा है, लेकिन हाँ, हमारा ऑडियंस इतना समझदार होना चाहिए कि जो उसे दिखाया जा रहा है उसे कैसे परसीव
1: करता है। बिल्कुल। डिस्कशन में हमारे साथ प्रवीण जैन जी भी मौजूद हैं। सर, जिस तरह से हमारे बाकी अतिथियों ने बताया कि मीडिया में वुमेन को किस तरह से आज रिप्रेजेंट किया जा रहा है या फिर पहले से अब तक कितना बदलाव आया है, उसी को ही आगे ले जाते हुए मैं आपसे सिनेमा को लेकर सवाल पूछना चाहूंगी कि सिनेमा में जैसे कि पहले हम देखते थे तो औरतों के रोल्स होते थे, वो सिर्फ और सिर्फ हीरो के आजू बाजू नाचने के या उनसे सिर्फ उनका लव इंटरेस्ट होना, सिर्फ इतना ही उनका होता था। लेकिन अब जो हम सिनेमा देख रहे हैं उसमें अब उन्हें बहुत ही सशक्त महिला के तौर पर भी दिखाया जा रहा है, मेन लीड्स में भी दिखाया जा रहा है, पूरी की पूरी सीरीज भी वुमेन ओरिएंटेड है जो कि बहुत हिट भी हो रही है। लेकिन अभी भी कई सारी सीरीज और मूवीज में हम देखते हैं कि उन्हें भोग की वस्तु के तौर पर ही दिखाया जाता है। तो आप किस तरह से अभी जान पा रहे हैं कि कितना फर्क पड़ा है?
3: मैम, ऐसा है कि आज से 15 से 20 साल पहले भी जो सिनेमा बनता था उसमें भी कई जो फीमेल कैरेक्टर होती थी वो लीड रोल करती थी, जैसे श्रीदेवी थी, रेखा थी, उन्होंने फीमेल रोल करे हैं। हाँ, इम्सा पाटिल, बट स्मिता पाटिल को छोड़ दे तो श्रीदेवी के भी जो लीड रोल थे वो बेसिकली हीरोइन टाइप ही थे, उसमें उनका पोर्ट्रेल एक हीरोइन या गर्लफ्रेंड का रोल ही निभाने का होता था। बट अभी रिसेंटली बिकॉज ऑफ ओटीटी प्लेटफॉर्म्स और वेरियस ओटीटी प्लेटफॉर्म्स नए नए टाइप की वेरियस सीरीजेस आ रही है जहाँ पे वुमेन ओरिएंटेड स्ट्रॉन्ग कैरेक्टर दिखाया जा रहा है। कि पहले होता था अगर एक लेडी फीमेल है तो वो फीमेल है, बट अभी दिखा रहे एक लेडी फीमेल भी है, वो गृहिणी भी है, माँ भी है, पत्नी भी है, और सारे रोल एक साथ निभा रही है और अपना काम कर रही है। मतलब आपको देख के लगेगा हाँ यार, ये वुमेन तो मेरे आसपास ही कहीं होती है, पर वो हो सकता है पुलिस वाली हो, पुलिस इंस्पेक्टर हो, या किसी बड़े इन्वेस्टिगेशन एजेंसी में हो, वो दिखाया जा रहा है। लेकिन अभी भी उसका जो प्रतिशत है, अगर हम देखें कि मेल प्रतिशत जो फिल्में आती हैं, ओटीटी आती है, उसके मुकाबले कम है, और एक दो कुछ को छोड़ दिया जाए तो उनमें ज्यादातर कुछ में उनको ग्लैमरस ही दिखाने की कोशिश की जा रही है। इवन इन सम कॉप फिल्म तो उसमें भी दिखाया जा रहा है कॉप है, फीमेल है, स्ट्रॉन्ग है,
0: बट उसमें भी पूरा ग्लैमर
3: घुसा दिया जाए कि वो हैज टू बी लाइक स्लिम फिट फाइटर टाइप की। बट ऐसा जरूरी नहीं हर औरत स्लिम फिट वैसी ही हो लेकिन वो पोटे पुलिस वाली ना हो सकती हो, जबकि रियल लाइफ में हम देखें तो ऐसा नहीं होता है कभी। तो प्रतिशत कम है और इसमें समाज को औरतों को भी स्वीकार करने की जरूरत
1: मतलब
3: है।
1: मतलब आप ये कह रहे हैं कि जैसे अगर साधारण पुलिस वाली को देखा जाए, हाँ, जो हमारे समाज में हम देखते ही हैं, हाँ, आते जाते जाए, वो ट्रैफिक पुलिस में हो, हाँ, या फिर किसी इन्वेस्टिगेशन में हो, तो उनका जो आउटफिट है, हाँ, वो सेम आउटफिट आप मूवी में इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, जबकि मेल्स के लिए हम यूज करते हैं, पर फीमेल्स के लिए जो आउटफिट यूज किया जाता है वो उसमें भी वो लोग फैशन ग्लैमर और इस तरीके की चीजें डाल देते हैं,
3: फिटनेस को दिखाया जा रहा है। जबरदस्ती भाई, आप कॉप, एक जो इंटेलिजेंट कॉप होता है उसकी बुद्धि से उसको इंटेलिजेंट माना जाता है, ना कि उसकी फिटनेस अच्छी चीज होती है, लेकिन वो एक प्रायोरिटी नहीं होती कि वो स्लिम फिट ही हो हमेशा। तो ये मेरे को लग रहा है रीजन है कि अभी भी मीडिया में इस तरह का पोर्ट्रेल कम किया जा रहा है, जो कि इसको बढ़ाने की जरूरत है, और लोगों को भी ऐसे अपनी समझ इस बारे में, जैसा डॉक्टर साहब ने कहा कि समझ विकसित करने की जरूरत है, जो कि मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूं।
1: जी, आपने बहुत सही बात करी प्रवीण जी। उत्सव जी, आपसे एक आखिरी सवाल मैं पूछना चाहूंगी कि जिस तरह से हम टीवी न्यूज चैनल्स में देखते हैं, तो टीवी न्यूज चैनल में हमने शुरू से ही देखा है कि विमेन जो है वो सॉफ्ट न्यूज कवर कर रही हैं, पेज 3 न्यूज कवर कर रही हैं, मेल्स जो है वो हार्ड न्यूज कवर कर रहे हैं, या फिर औरतें जो है वो सिर्फ और सिर्फ स्क्रीन के लिए बनी हुई है कि कैमरे के सामने स्क्रीन पे बैठना है। उनमें भी बहुत सिलेक्टेड विमेन ही है जो आज ऊंचाइयों पर है, और उनके साथ भी अगर हम देखा जाए तो उसमें भी खूबसूरत महिलाएं ही हैं ज्यादातर। तो आपको ये क्या लग रहा है कि ये अभी भी हमारा यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन है, या फिर ऑब्जेक्टिफिकेशन है, या बॉडी इमेज जिस तरह की है, यही चीज आज भी काम कर रही है?
4: जहाँ तक आपने कहा खूबसूरत होना, एक न्यूज एंकर जो मैं डीडी नेशनल पे सुना करता था, सुकन्या बाला कृष्णा
1: जी,
4: जिनको देख के ही ऐसा भारतीयता की जो महक होती है जिस तरीके से वो, लेकिन आज मीडिया ने, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बताया कि मीडिया जो चीज आपको देगा वही आप कंज्यूम करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पे कई ऐसे कम्युनिकेशन की थ्योरीज अप्लाई करने के बाद, बेतुके ऐसे कई सवाल खड़े करने के बाद, क्योंकि कई मीडिया सिर्फ टीआरपी को लेकर काम कर रही होती है, वो संजीदा नहीं है महिला को लेकर के, जहाँ कोई संजीदगी नहीं है वहाँ पे विचार नहीं पनपेगा। पहले विचारों के साथ अभ्यास किया जाता था, जहाँ अभ्यास खत्म हो गया तो आप कुछ भी परोस सकते हैं, और सामने वाला व्यक्ति जो है उसके पास आज की डेट में समय नहीं है। जैसा कि मैं आपको बताऊं कि इन शॉर्ट ऐसी क्या जरूरत पड़गी कि अखबार जो है, अब लोग इन शॉर्ट में खबरों को जानना देखना पसंद करते हैं, क्योंकि व्यक्ति अब समय नहीं देना चाह रहा, ना ही रिश्तों को, ना ही अपने जीवन को, ना ही अपने कार्यशैली को। कार्यशैली ही उसको जो है चला रही है, अपने जीवन को चला रही है, और वो फिर जो भी कंज्यूम करता है वही वो सामने निकाल के देता है। तो सिर्फ उसका दिनचर्या जो जब शुरू होता है तो कई ऐसी चीजें, कई ऐसे सवाल, तो मीडिया जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, उसका दायित्व अब और बढ़ गया है। उसका जैसे जैसे दायरा बढ़ता जा रहा है उसका दायित्व बढ़ता जा रहा है। मुक्ता जी ने कहा कि कई ऐसे जो है समाज में ओटीटी प्लेटफॉर्म आने के बाद एक तरफ आप समझ पा रहे हैं कि महिला सशक्त हो रही है, लेकिन क्या वह सही कंटेंट दे रहा है कि नहीं। ओटीटी का एक दायित्व तो होता भाई 18+ कंटेंट है। 18+ कंटेंट का मतलब, कहने का मतलब यह है कि उसमें आप भद्दापन भी दिखा सकते हैं, अभद्र भाषा का भी प्रयोग कर सकते हैं। अब 18+ कंटेंट आप ये तो नहीं जान पा रहे ना कि कौन कंज्यूम कर रहा है। तो यहाँ पे ओटीटी हो चाहे कोई भी हो, हर एक व्यक्ति का एक विश्वास और एक दायित्व तो होना चाहिए कि वह जहाँ कहीं भी महिला, तो उसको महिला के नाम से ना रिप्रेजेंट करे, उसको पहले जीवन के नाम से रिप्रेजेंट करे, क्योंकि वो पहले जीवन है, महिला बाद में है। मेरा मानना है कि अब पशु पक्षी को भी आप, वो पुरुष है, वो नर है, वो मादा है, पहले जीवन देखिए, पहले श्वसन क्रिया देखिए कि वो चलता फिरता एक जीवन है, तब आप समझ पाएंगे कि वह महिला नहीं, पहले जीवन है। शरीर के आवरण से कौन खूबसूरत है, कौन भद्दा है, इसको जान लेने से शायद आपको क्षणभंगुर आत्म तृप्ति हो सकती है, लेकिन आप खुद में जब एनालाइज करेंगे जीवन के उन आखिरी पलों में, तो वो सारी जो है कृतियां आप तक आएंगी, आपका आएंगे, आपके नजरों के सामने आएंगे। तो महिला कोई उपभोग या संभोग या कोई भी ऐसा शब्द यूज कर सकते हैं, मुझे इस चीज का कोई डर नहीं है कि मैं शब्दों को लेकर के, हाँ, संजीदा हूँ, शब्दों को लेकर संजीदा हूँ, लेकिन हाँ, महिला सिर्फ एक दायरे के लिए नहीं, महिला महिला है, पुरुष पुरुष है, फिर कहता हूँ जीवंत है, जीवन है, श्वसन क्रिया उसमें भी है। व्यक्तिगत रूप से आप देखेंगे तो महिला का सम्मान या पुरुष का सम्मान, फेमिनिज्म का मतलब यह नहीं कि फेमिनिज्म ही आप एक महिला होकर के, फेमिनिज्म का मतलब है जहाँ बोथ द जेंडर्स आर बीइंग रिप्रेजेंट एज इक्वल,
1: राइट,
4: तो दोनों जेंडर को समान रूप से देखें। अब तीसरे जेंडर की बात आती है तो उसको भी समान रूप से देखें। जी। हाँ, क्योंकि लड़ाई ये उसकी नहीं है, लड़ाई इस मानव सभ्यता और समाज के साथ हम सब की लड़ाई है। जिस दिन ये दायित्व हम सब ने उठा लिया तो शायद हमें इस चीज का डर ही नहीं रहेगा कि हमारी घर से बहने माताएं बहने बाहर जा रही हैं और उनके साथ जो है कोई ऐसा अभद्र व्यवहार होगा। तो ये दायित्व हम सब का बनता है।
1: जी, धन्यवाद आप सभी का। आज जो हमने बात यहाँ पर की है उसमें एक बात तो निकल कर यही आई है कि हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक अच्छा तो एक बुरा। कुछ चीजें पॉजिटिविटी की तरफ भी जा रही हैं, सकारात्मक भी हैं, कुछ चीजें नकारात्मक भी हैं, लेकिन अभी भी हमें औरतों की स्थिति को मीडिया में सुधारने की बहुत जरूरत है। इसके लिए डॉक्टर उत्सव जी हैं, डॉक्टर मुक्ता मर्तोलिया जी हैं, या फिर डॉक्टर सीपी रश्मि हैं, या प्रवीण जैन जी हैं, सभी ने एक ही बात कही है कि समाज को अभी बहुत सुधरना है, बहुत समझना है, बहुत सीखना है। तो पहल खुद से होती है, सबसे पहले हमें अपनी सोच को सुधारना है और फिर उसके बाद हम किसी का भी जो चित्रण है वो एक जीवंत आत्मा के तौर पर हम कर पाएंगे, एक जीव के तौर पर कर पाएंगे, हम उसे महिला या पुरुष के तौर पर नहीं करेंगे। तो महिला या पुरुष कोई भी है, वो एक जीव है और उसी के हिसाब से वो क्या डिजर्व करता है अपनी लाइफ में, यही हमें चित्रण हमेशा करना चाहिए, चाहे वो मीडिया हो या फिर कोई भी सामाजिक व्यवस्था हो वहाँ पर। सभी अतिथियों का हमारे इस शो में आने के लिए और अपने विचार इस विषय पर रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: धन्यवाद।
3: धन्यवाद।
1: श्रोताओं, हम फिर से आएंगे लेकर कुछ ऐसे ही विषय जिसमें कि हमारे साथ इसी तरह के एक्सपर्ट होंगे और वो अपनी राय आप तक रखेंगे। आशा है आपको ये कार्यक्रम पसंद आया होगा। बने रहिए सुनो शारदा 90.8 के साथ। मैं थी आपके साथ किरण। नमस्कार।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम पर।
1: अरे डब्बा ले आ। बेटा जल्दी आ, स्कूल को लेट हो रहा है।
2: आई पापा। क्या पापा जगह जगह थूकते रहते हो?
1: वो
2: मैं अपने नए नए दोस्त भी बनाऊंगी। पापा
3: क्या हुआ बेटिया?
4: डॉक्टर साहब,
5: आपकी बेटी को टीबी है और ये आपकी ही देन है।
3: मैंने ऐसा क्या कर दिया?
2: पापा आज से आप एक प्रॉमिस करो कि आप थूकोगे नहीं।
4: वादा करता हूँ बेटिया, अब ऐसे कभी नहीं थूकूंगा, प्रॉमिस।
5: पब्लिक प्लेसेस पर थूकना बंद कीजिए, अपनी बुरी आदतें बदलकर एक स्वच्छ और स्वस्थ भारत का निर्माण कीजिए।
6: बेटर लेट देन नेवर। तो देर भले हो गई हो लेकिन अब ये थूकने की आदत छोड़ देनी चाहिए।
7: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं कि सर्दियों में ठंडे पानी से नहाने के आश्चर्यजनक फायदे। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी से नहाने से रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, परिसंचरण में सुधार होता है, मांसपेशियों की रिकवरी में मदद मिलती है, चयापचय में वृद्धि होती है, मूड में सुधार होता है और नींद की गुणवत्ता में सुधार होता है। ये त्वचा और बालों के स्वास्थ्य के लिए भी फायदेमंद हो सकते हैं। विषय है ये रक्त परिसंचरण को बढ़ाता है। किस तरीके से? तो बात सामने आती है कि कोल्ड शावर आपको गर्म रखने के लिए रक्त को आपके अंगों में जाने देता है। गर्म स्नान की बात करें तो ये ठंडे स्नान के प्रभाव को उलटते हुए रक्त को त्वचा की सतह की ओर ले जाने का कारण बनता है। ठंडे पानी से नहाने से धमनियों को मजबूत बनाने और रक्तचाप को कम करने में मदद मिल सकती है। इस प्रकार आप जीवन भर फिट और फाइन रह पाएंगे। ये आपकी त्वचा और बालों के लिए बहुत अच्छा है। ठंडे पानी से नहाने से क्यूटिकल्स और पोर्स टाइट हो जाते हैं, जिससे वो बंद होने से बच जाते हैं। ये त्वचा और स्कैल्प में छिद्रों को भी सील कर सकता है, जिससे बाहरी गंदगी शरीर के अंदर नहीं जा पाती। विषय है, अब इसी के अंतर्गत बात सामने आती है कि ठंडा पानी इम्यूनिटी बढ़ाने में मदद करता है। कैसे? तो बात समझते हैं। यदि आप ठंडे पानी से स्नान करते हैं तो सफेद रक्त कोशिकाओं का प्रतिशत अधिक होगा और उच्च चयापचय दर होगी। ऐसा इसलिए है क्योंकि ठंडे स्नान के दौरान शरीर खुद को गर्म करने की कोशिश करता है। इस प्रक्रिया में सफेद रक्त कोशिकाओं को छोड़ने और प्रतिरक्षा प्रणाली को सक्रिय करने की प्रवृत्ति होती है। ये तेजी से मांसपेशियों को ठीक करने में सहायता करता है। तो एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडा पानी मांसपेशियों की अकड़न को दूर करने में मदद करता है। ये कोल्ड कंप्रेशन जैसा है। तो बात ये भी सामने आती है कि ठंडा पानी डिप्रेशन से निपटने में मदद करता है। इसके अंतर्गत एक्सपर्ट कहते हैं कि ठंडे पानी का हमारे शरीर और मन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और ये मूड को बेहतर बनाता है। इस प्रकार स्नान से बाहर निकलने के बाद आप अधिक तरोताजा महसूस करते हैं। अब इसी से हटकर थोड़ा एक विषय हम जानना चाहते हैं कि अक्सर हम सुबह सुबह गुनगुना पानी पीते हैं, क्या ये पानी पीना चाहिए या नहीं? एक अच्छा विषय। तो इसके अंतर्गत सामने आती है बात कि गुनगुना पानी पीने से शरीर डिटॉक्सिफाई होता है, जो कोलेजन के उत्पादन को बढ़ावा देने के साथ साथ ये त्वचा को स्वस्थ रखने में मदद करता है। सर्दियों के मौसम में मोटापे की समस्या से निजात पाने के लिए आप रोजाना गुनगुने पानी का सेवन करें। गुनगुना पानी पीने से मेटाबॉलिज्म तेज होता है, जिससे फैट को तोड़ने में मदद मिल सकती है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरोशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: स्मार्ट के सौजन्य से प्रोजेक्ट सेहत सही लाभ कई में आपका स्वागत है। इसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। यह एक विशेष सामुदायिक रेडियो पहल है जिसके अंतर्गत हमारा उद्देश्य है समुदाय तक सही और सटीक जानकारी पहुंचाना। तो आइए हाथ मिलाएं और सरकार द्वारा की गई इस पहल को सफल बनाएं।
1: नमस्कार श्रोताओं, हमारे साथ है डॉक्टर कालिंदी और जानते हैं हम उनसे कि इस बदलते मौसम में अपनी सेहत का बचाव कैसे कर सकते हैं।
2: हेलो, मैं हूं डॉक्टर कालिंदी सूद, सीनियर रेसिडेंट इन डिपार्टमेंट ऑफ डर्मेटोलॉजी। मैं आपको बताऊंगी कि आप क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं ड्यूरिंग चेंजिंग वेदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, आपको थोड़ा स्मार्टली ड्रेस करना है। प्लीज वेयर लेयर्स सो दैट आपको अगर तो ठंड लगती है, यू आर इजीली एबल टू पुट ऑन अ जैकेट। देन स्टे हाइड्रेटेड टू कीप योर स्किन एज वेल एज योर इम्यून सिस्टम हेल्दी। सो प्रॉपर हाइड्रेशन इज इम्पॉर्टेंट। अपने साथ पानी हमेशा कैरी कीजिए। अपनी डाइट का ध्यान दीजिए, इंक्लूड विटामिन सी रिच फ्रूट्स एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, बिकॉज इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शन आर वेरी कॉमन। अपनी इम्यूनिटी का ध्यान रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज जरूर कीजिए, वो भी आपकी इम्यूनिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है। अपार्ट फ्रॉम दैट, टेक केयर ऑफ योर स्किन, बिकॉज वेदर कभी भी ड्राई हो सकता है। आपको मॉइस्चराइजर जरूर यूज करना चाहिए ऐसे टाइम में। बाहर जाने से पहले हमेशा सनस्क्रीन यूज करें। अगर आपको कोई सीजनल एलर्जीज हो जाती हैं तो इट विल बी बेनिफिशियल कि आप एक एयर प्योरीफायर में भी इन्वेस्ट करें अपने घर में। हाइजीन हमेशा मेंटेन करें। फ्रीक्वेंट हैंड वॉशिंग विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। जब आप बाहर होते हैं अपने फेस पे आईज पे कहीं पे भी टच ना करें। अपने साथ एक हैंड सैनिटाइजर रखें एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली गेट एडिक्वेट स्लीप। थैंक यू।
1: तो ये थी हमारे साथ डॉक्टर कालिंदी जिन्होंने हमें बताया कि बदलते मौसम में अपने स्वास्थ्य का बचाव कैसे करें।
0: आप सुन रहे थे स्मार्ट के सौजन्य से हमारा विशेष कार्यक्रम सेहत सही लाभ कई, जिसका उद्देश्य है आपको स्वस्थ रखना और आपकी उन्नति प्रगति और खुशहाली में योगदान देना। तो आइए इस मुहिम को सफल बनाएं।
3: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

कभी कभी जब मोहल्ले की पूजा को सचिन की तरह खेलते हुए देखती हूँ तो मन की मुस्कान चेहरे पर आ जाती है। जब राजू, बंटी, मोहन को पिंकी टीचर बनकर पढ़ाती है तो ऐसा लगता है कि एक दिन देश भी पिंकी चला सकती है। इन नन्ही आंखों में कितने सपने बसते हैं और ये सपने सच भी हो जाते हैं अगर सही तरह से हमारी बेटी को हर सुविधा मिले।

0: क्या बात है सावित्री, उदास क्यों हो?
1: बस सपना की बहुत चिंता हो रही है। अच्छा हुआ आप आ गई।
0: अरे मुझे तो आना ही था। और अब हम जब आ गए हैं तो चलो बच्चे की जांच कर लेते हैं।
2: अब सब ठीक तो है ना आशा दीदी?
0: इसे तो तेज बुखार है। मदन तुम एक काम करो
2: जी,
0: सपना को SNCU ले जाओ। वहाँ पर प्रशिक्षित डॉक्टर और नर्स हैं। वहाँ पर इसका सही ढंग से और अच्छी तरह से इलाज हो जाएगा।
2: मतलब खर्चा होगा और आज की दिहाड़ी भी चली जाएगी।
0: जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम के तहत पूरे एक साल तक मुफ्त में इलाज होगा। और इतना ही नहीं, सारी जांचें और दवाइयाँ, यहाँ तक कि एम्बुलेंस की सुविधा भी मुफ्त में उपलब्ध कराई जाएगी। तो इसीलिए तुम अपने खर्चे की चिंता तो एकदम भूल जाओ। और रही बात तुम्हारी दिहाड़ी की, तो इतनी प्यारी बेटी के स्वास्थ्य के सामने तुम्हारी दिहाड़ी कुछ मायने नहीं रखती, समझे?
2: सावित्री, जैसे तुमने इसके लिए हजारों सपने देखे हैं ना, वो सपने सिर्फ तुम्हारे नहीं है, हमारे हैं। ये हमारी सपना है, इसका ख्याल रखना, इसको स्वस्थ रखना, इसका समय समय पर सही इलाज कराना, ये हम सब घर वालों की जिम्मेदारी है ना?
0: मदन, अगर सब लोग तुम्हारी तरह सोचने लगे ना, तो हर घर की बेटी के सपनों को उड़ान मिलेगी। और वो कुछ बनकर न सिर्फ अपने घर और परिवार बल्कि पूरे देश का नाम रोशन करेगी। है ना
3: सपना?
0: सपने होंगे सच जब बेटियां होंगी स्वस्थ, क्योंकि अपनी बेटी की सही समय पर सही देखभाल करने से फर्क पड़ता है।
4: सुरक्षा गुणवत्ता के साथ पालन पोषण एवं विकास सभी नवजात शिशु का जन्मसिद्ध अधिकार है। यूनिसेफ द्वारा जनहित में प्रसारित।
5: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
6: सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
7: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
8: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
6: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: CIET NCERT द्वारा प्रस्तुत है ये श्रृंखला महान विभूतियां। इस श्रृंखला के अंतर्गत सुनते हैं एक वार्ता।
2: संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की ख्याति और पहचान कहें तो सिर्फ एक ही तरीके से देखी जाती है, वो है एक बड़े कानूनविद, एक बड़े राजनेता और संविधान के निर्माता के तौर पर। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर की जब भी चर्चा होती है तो इन्हीं चर्चाओं में सीमित करते हुए भी हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि उनका व्यक्तित्व इससे भी कहीं बहुत बड़ा था, उनकी उपलब्धियां भी इससे कहीं बहुत बड़ी थीं और इससे भी कहीं ज़्यादा उनके व्यक्तित्व के विराट पहलू थे। जैसे बहुत तो ज़्यादा लोग नहीं जानते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान के निर्माता ही नहीं थे बल्कि वो बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, एक अच्छे पत्रकार भी थे। उन्होंने अपने दौर में 3-3 पत्रिकाएं निकाली, उनको सफलतापूर्वक चलाया। आज़ादी के पहले किस तरह की व्यवस्था थी और उस व्यवस्था में पत्रिकाएं निकालना, अखबार निकालना, उन्हें छापना, उन्हें लोगों तक पहुंचाना कितना कठिन रहा होगा। तो कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सिर्फ संविधान निर्माता या कानूनविद ही नहीं थे बल्कि वो एक अच्छे जाने माने अर्थशास्त्री थे, जाने माने पत्रकार भी थे, बहुत अच्छे लेखक थे और उससे भी बड़ी बात वो अपने जिस समाज से आते थे उस समाज के सशक्तिकरण के बहुत बड़े प्रवक्ता थे, बहुत बड़े सेनानी थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अर्थव्यवस्था के बारे में जानकारी को अगर हमें समझना होगा तो उसके लिए हमें देखना होगा भारत के महान अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन, जिन्हें नोबेल पुरस्कार मिल चुका है। वो कहते हैं कि 1934 में भारत का जो केंद्रीय बैंक है, भारतीय रिजर्व बैंक, उसकी स्थापना भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने ही की थी। आज भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में जानना चाहिए कि वो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था का, न सिर्फ बैंकिंग व्यवस्था का बल्कि वो अर्थव्यवस्था की भी एक तरह से कंट्रोलिंग अथॉरिटी है, नियंत्रक है, रेगुलेटरी अथॉरिटी है। उसकी स्थापना करने वाले डॉक्टर अम्बेडकर की सोच कैसी रही होगी आज़ादी के पहले 1934 में, जब कहीं दूर दूर तक ये नहीं दिख रहा था कि भारत आज़ाद हो सकता है, तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने एक ऐसे बैंक के बारे में सोचा जो पूरी भारतीय बैंकिंग व्यवस्था को रेगुलरेट करे। और एक चीज और यहाँ ध्यान देने की बात है कि उस दौर में बैंक भी इतने नहीं थे भारत में। आज तो आप देखेंगे कि लगभग हर तहसील तक बैंकों की, और एक बैंक नहीं बल्कि कई नाम वाले बैंकों की पहुंच हो गई है। उस दौर में एक बैंक होना भी एक जिले में बहुत बड़ी बात होती थी। ऐसे दौर में केंद्रीय बैंक की कल्पना करना यह मामूली बात नहीं है। डॉक्टर अंबेडकर अपने समय के एक प्रशिक्षित अर्थशास्त्री थे, यहाँ तक कि उन्होंने अर्थशास्त्र पर भी बहुत ही अच्छी और बौद्धिक पुस्तकें लिखीं। अमर्त्य सेन का हमने जिक्र किया, कहते हैं कि अंबेडकर अर्थशास्त्र में उनके पिता हैं। हमने चर्चा की एक पत्रकार अंबेडकर की, एक अर्थशास्त्री अंबेडकर की, लेकिन अंबेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे बल्कि वो इससे आगे की शख्सियत थे। भारत जब आज़ाद हुआ था तो बाबा साहब अम्बेडकर ने ही जो संविधान रचा है उसी में कहा गया कि भारत राज्यों का संघ होगा, लेकिन जो राज्य थे वो राज्य संतुलित नहीं थे। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की एक सोच थी कि राज्यों के गठन का क्या आधार होना चाहिए और उस सैद्धांतिक आधार को प्रतिपादित करने के लिए 1955 में एक निबंध लिखा। उस निबंध का आधार था कि राज्यों का गठन वहाँ रहने वाले लोगों की जो भाषा है, जिस भाषा को बोलते हैं, उस भाषा के आधार पर होना चाहिए, यानी भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन होना चाहिए। ये अंबेडकर का विचार था। एक चीज़ यहाँ और ध्यान देने की है कि अंबेडकर जो है वो अंग्रेजी में लिखते थे, कुछ एक हिंदी में भी लिखा है उन्होंने, लेकिन चूंकि यह भारतीय राज्य व्यवस्था से जुड़ा हुआ एक महत्वपूर्ण सवाल था, एक महत्वपूर्ण निबंध था, राज्यों का गठन का सैद्धांतिक आधार वाला निबंध, उन्होंने उसको भारतीय भाषाओं में लिख करके और बहुत सारी भाषाओं में उसका अनुवाद करा के प्रचारित कराया, प्रसारित कराया, प्रकाशित कराया। बाबा साहब अम्बेडकर की प्रतिभा उनके सैद्धांतिक आधार की ही देन है। राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को स्वीकार किया। उस आधार के बाद 1956 में फजलुर रहमान आयोग बना। उस आयोग ने भी राज्यों के पुनर्गठन के लिए भाषाई आधार को मंजूरी दी और इसके बाद ही राज्यों का पुनर्गठन हुआ, कई राज्य बने। कुछ एक अपवाद हो सकते हैं, लेकिन आज भी मतलब तब से लेकर के अब तक भी राज्यों का जो भी गठन हुआ है, नए राज्य बने हैं, कहीं न कहीं उसमें ये फजलुर रहमान कमीशन और डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का दिया हुआ सैद्धांतिक आधार काम करता रहा है, बनता रहा है। आज श्रम कानूनों की बड़ी चर्चा होती है, महिलाओं का अधिकार की बात होती है, श्रमिकों के काम के घंटे की बात होती है। यह बहुत कम लोग जानते हैं कि उन दिनों ब्रिटिश सरकार का जो मंत्रिमंडल होता था, वायस राय की काउंसिल कहा जाता था, वायस राय की परिषद कही जाती थी उसे, उस काउंसिल के बाबा साहब भीमराव अंबेडकर श्रम मंत्री थे, लेबर मिनिस्टर थे। इस नाते उन्होंने भारत में श्रम कानूनों की शुरुआत की, उनमें सुधार लाने की व्यवस्था की। और ताज्जुब होगा जानकर के आज की पीढ़ी को, बहुत सारे लोगों को ये जानकर आश्चर्य होगा कि तब जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यह कानूनी व्यवस्था की, श्रमिकों के अधिकारों की व्यवस्था की, उसके पहले तक काम के घंटों का निर्धारण जो था, प्रतिदिन 12 घंटे काम करना होता था। लेकिन यह बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की ही देन है कि प्रतिदिन 8 घंटे के काम की व्यवस्था हुई। श्रम कल्याण निधि आज बड़ी चर्चा होती है इसकी भी, खासतौर पर जब श्रमिक जो होते हैं, जो लेबर होते हैं, उन पर जो संकट आता है तो उनको सहायता देने के लिए श्रम कल्याण निधि की बात की जाती है, उससे सहायता दी भी जाती है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें अपने अपने तरह से इस निधि की स्थापना कर चुकी हैं, लेकिन बहुत सारे लोगों को जान के आश्चर्य होगा कि इसकी भी व्यवस्था डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने सन 1944 में की थी। तब भी वो ब्रिटिश सरकार थी, उन दिनों की सरकार जिसे वायस राय की काउंसिल कहा जाता था, उस काउंसिल में श्रम मंत्री के नाते वो शामिल थे। श्रमिक हितों की स्थापना के लिए तब की धारा सभा में, जिसे सेंट्रल असेंबली भी कहा जाता था, 8 नवंबर 1943 को कानून ला करके उसे पारित करा करके बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने श्रमिकों के अधिकारों को एक कानूनी जामा पहनाया था, कानूनी आधार मुहैया कराया था। आज भविष्य निधि अधिनियम के बारे में बहुत सारे लोग जानते हैं, स्वास्थ्य बीमा योजना के बारे में बहुत लोग जानते हैं, कारखाना संशोधन अधिनियम की भी बहुत चर्चा होती है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी की तो आज हर संभावित मौके पर चर्चा होती है, फिर श्रमिकों के हड़ताल के क्या अधिकार होंगे इसकी भी चर्चा होती है, और आए दिन जो ट्रेड यूनियंस हैं, जो श्रमिकों के संगठन हैं, वो इस पर भी चर्चा करते हैं, अपनी मांगे भी रखते हैं। बहुत सारे लोगों को जानकर के आश्चर्य होगा कि इन सबकी व्यवस्था ब्रिटिश काउंसिल के, वायस राय की काउंसिल के श्रम मंत्री के नाते बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने की थी। यहाँ याद करना जरूरी है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर सिर्फ वायस राय की काउंसिल में ही श्रम मंत्री की हैसियत से काम नहीं किए थे, बल्कि वो आजाद भारत की पंडित जवाहरलाल नेहरू सरकार में भी श्रम और कानून मंत्री की हैसियत से काम करते रहे। और इस तरह की उनकी दृष्टि विकसित होने के पीछे उनकी जो सामाजिक सोच रही है, समाज के कई मौकों पर, कई स्तरों पर उन्होंने जिस तरह से संवाद किया था, उस संवाद का बड़ा योगदान रहा है। और शायद यही वजह है कि उन्होंने 1937 में मजदूरों के हितों के लिए एक स्वतंत्र मजदूर पार्टी नाम से अलग से पार्टी ही बनाई थी, और उसका जो उन्होंने घोषणा पत्र तैयार किया था उसमें मजदूरों के हित की बात, किसानों को उनकी उपज का उचित मूल्य मिलने की बात, यह सब बात उनके कार्यक्रम में शामिल थी। आज की राजनीति में आप देखेंगे कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो चर्चा होती है, 1937 के पहले इसकी भी कल्पना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की थी। तो हम देखते हैं कि एक अर्थशास्त्री के रूप में, एक समाज सुधारक के रूप में, एक संविधान वेत्ता के रूप में, जहां डॉक्टर अंबेडकर की ख्याति रही है, जहां उनका बहुत बड़ा विपुल योगदान है भारतीय समाज को, वहीं श्रम सुधारों की भी दिशा में जो एक नए विचार दिए, वो कम महत्वपूर्ण नहीं है। देखेंगे हम कि एक संविधान वेत्ता, एक कानून वेत्ता, एक राजनीतिक, एक अर्थशास्त्री के अलावा भारत में जिस तरह से श्रम सुधार होने चाहिए, जो भावी भारत की श्रमिक मामलों की अवसंरचना होनी चाहिए, जो बुनियादी आधार होना चाहिए, उसके बारे में भी एक स्पष्ट दृष्टिकोण डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर रखते थे। और शायद यही वजह है कि श्रमिक मामलों में उन्होंने इतनी सारी कल्पनाएं की, इतने सारे विचार दिए और इतने सारे बुनियादी आधार रखे, जिस पर आगे आज तक श्रमिक कानून बढ़ रहे हैं, श्रमिकों का हित बढ़ रहा है, या उन्हीं के पैमाने पर श्रमिक हितों की बात की जाती है। वह बात कभी राजनीतिक भी होती है, कई बार वह सामाजिक होती है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को हम दो रूपों में मुख्यतः पाते हैं। एक ऐसे बौद्धिक समाज सुधारक के रूप में जिसके दृष्टि में स्पष्ट था कि किस तरह का भावी भारत होना चाहिए, और उस भावी भारत के लिए कभी वो सामाजिक सुधार की बात करता है, कभी वो श्रमिक सुधार की बात करता है, कभी वो कानूनी और संवैधानिक बुनियादी ढांचा बनाने की बात करता है, और कभी महत्वपूर्ण मोर्चे पर अर्थव्यवस्था को संभालने की बात करता है। लेकिन डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर सिर्फ इतने ही नहीं थे, उन्होंने बहुत कुछ और भी किया। क्या आप देखेंगे कि स्वाधीनता संग्राम के दौरान, चाहे वो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर हों, चाहे सरदार वल्लभ भाई पटेल हों, चाहे महात्मा गांधी हों, चाहे लोकमान्य तिलक हों, चाहे लाला लाजपत राय हों, वो एक अच्छे संचारक भी थे, एक अच्छे संप्रेषक भी थे। किस तरह से अपनी बातों को रखना है और अपने लोगों तक उस बात को पहुंचाना है, जैसा कि हमने इसी पाठ में चर्चा की कि किस तरह से उन्होंने भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के विचार को आगे बढ़ाने के लिए अंग्रेजी में लिखने की बजाय भारतीय भाषाओं में उसका अनुवाद करा करके बहुप्रचलित करने की कोशिश की, ताकि हर जन तक उनकी बात पहुंच जाए। इसी आधार को आगे बढ़ाते हुए हम कह सकते हैं कि उन्होंने अपनी बात को, खासतौर पर जो जिस वर्ग से वो आते थे, दलित वर्ग से आते थे, उस वर्ग के जो उस समय सामाजिक चुनौतियां थी, राजनीतिक चुनौतियां भी थी उस वर्ग के पास, उसका मुकाबला करने के लिए और उस वर्ग को तैयार करने के लिए उन्होंने उस वर्ग तक पहुंचाने में बड़ी भूमिका निभाई। और वह भूमिका गांधी जी की तरह की है, वह भूमिका कई बार आपको लोकमान्य तिलक की तरह दिखती है, और वह भूमिका कई बार जवाहरलाल नेहरू की तरह दिखती है, कई बार लाला लाजपत राय की तरह दिखती है। गांधी जी ने अपने विचारों को आम लोगों तक और अपने टारगेट ऑडियंस तक, अपने लक्षित समूह तक पहुंचाने के लिए देखेंगे कि जब वो दक्षिण अफ्रीका में थे तो वहाँ भी उन्होंने अखबार निकाला और उसमें वो लगातार लिखते रहे। इसी तरह से आप देखेंगे कि लोकमान्य तिलक ने पहले मराठी में केसरी निकाला, फिर उसको अंग्रेजी में भी निकाला। इसी तरह से हम देखते हैं कि लाला लाजपत राय पंजाब केसरी निकालते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड और नवजीवन नाम से, अंग्रेजी में नेशनल हेराल्ड नाम से निकालते हैं अखबार और हिंदी में नवजीवन नाम से निकालते हैं। ठीक उसी तरह से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर भी अच्छे पत्रकार हैं। उन्होंने सबसे पहले उन्होंने मराठी में 31 जनवरी 1920 को कोल्हापुर से मूक नायक नाम की पाक्षिक पत्रिका की शुरुआत की। यह पत्रिका आर्थिक समस्याओं के चलते सिर्फ 19 अंक ही प्रकाशित हो सकी, लेकिन वो 19 अंक आज भी आपको अंबेडकर से जुड़े संग्रहालयों में मिल जाएंगे, और उन अंकों से जब आप गुजरेंगे, कोई भी गुजरेगा, तो उसको पता चलेगा कि 1920 में खासतौर पर जो दलित, जिसे आज कहा जाता है समुदाय, उस समुदाय के लिए, उसको सशक्त करने के लिए डॉक्टर अंबेडकर किस तरह से सोच रहे थे, क्या क्या उनके विचार थे। मूक नायक अप्रैल 1923 में बंद हो गया, लेकिन अपनी बात को रखने के लिए, अपने विचारों को अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए डॉक्टर अंबेडकर के मन में कुलबुलाहट जारी रही। और ठीक 4 साल बाद 3 अप्रैल 1927 को उन्होंने दूसरा मराठी पाक्षिक बहिष्कृत भारत निकाला, और यह 1929 तक निकलता रहा। बाबा साहब अंबेडकर ने इसके अलावा समता, प्रबुद्ध भारत और जनता जैसी पत्रिकाएं भी निकाली। बाद में आप देखेंगे आज़ादी के बाद यह जनता नाम, मैं अपने छात्रों को बताना चाहूँगा, भी श्रोताओं को बताना चाहूँगा कि इस जनता नाम से भारतीय राजनीति के चिर विद्रोही कहे जाने वाले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया भी लंबे समय तक पत्रिका निकालते रहे। व्याख्यान की शुरुआत में हमने बताया था कि आज के दौर में भी पत्रिकाएँ निकालना बहुत आसान काम नहीं है, खासतौर पर प्रिंट माध्यम जिस तरह से चुनौतियों का सामना कर रहा है। ऐसी स्थिति में सोचना होगा कि जब भारत में अर्थव्यवस्था नहीं थी, खासतौर पर 20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में उन दिनों अगर अंबेडकर इतनी सारी पत्रिकाएं निकाल सकते थे तो निश्चित तौर पर उनके साहस को दाद दिया जाना चाहिए। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर इसके बाद भी नहीं रुके। हमने बताया कि वो अक्सर उनका जो लेखन था, ज़्यादातर लेखन जो था वो अंग्रेजी में करते थे। और आज भी दुनिया में जिन अखबारों की बड़ी धमक है, जैसे लंदन का द टाइम्स, ऑस्ट्रेलिया का डेली मर्करी, अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स, इसी तरह से अमेरिका में एक दौर में बड़ा मशहूर अखबार रहा न्यूयॉर्क एम्स्टर्डम न्यूज, बाल्टीमर एफ्रो अमेरिकन, द नॉरफॉक जर्नल, ऐसे अखबारों में डॉक्टर अम्बेडकर मृत्यु पर्यंत तक अपने विचारों को जाहिर करते रहे, उन अखबारों में लेख लिखते रहे। और ना सिर्फ भारत की संवैधानिक स्थिति पर, भारत के संवैधानिक यात्रा पर, भारतीय राज व्यवस्था पर, बल्कि भारत की अर्थव्यवस्था पर, भारत में समतामूलक समाज बनाने का जो उनका सपना था उस पर, भारत में दलितों उद्धार पर, दलितों के सशक्तिकरण पर सैकड़ों लेख लिखा। संविधान की भी बात जब चल रही है तो डॉक्टर अंबेडकर के एक और कथन को उद्धृत किया जाना चाहिए। और चूंकि वो संविधान की निर्माण करने वाली जो प्रारूप समिति थी उसके वो अध्यक्ष थे, जो ड्राफ्टिंग कमेटी थी उसके अध्यक्ष थे, तो उसमें उन्होंने एक बात कही है कि भारतीय संविधान में हर नागरिक को एक अधिकार मिला हुआ है, संवैधानिक उपचार का अधिकार, जिसको अंग्रेजी में हम राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी कहते हैं। संवैधानिक उपचार का जो सिद्धांत है वह दुनिया के बहुत कम संविधानों में मिलता है। और यह क्या है? यह है कि संविधान के सामने, न्याय व्यवस्था के सामने हर व्यक्ति बराबर है। और अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई व्यवस्था की ओर से कोई गलती हो जाती है तो वह व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट में जा करके उस गलती को सुधारने की अपील कर सकता है। और यह मामूली बात नहीं है कि अगर किसी के साथ अन्याय हुआ हो, चाहे वो किसी भी स्तर पर हुआ हो, वह व्यक्ति उसका अधिकार सुरक्षित रहता है कि उस अन्याय का प्रतिकार करने के लिए और उसको संवैधानिक आधार देने के लिए संवैधानिक जो व्यवस्था के तहत सर्वोच्च न्यायालय है वहां जाकर के दस्तक दे सके। डॉक्टर अंबेडकर ने इस व्यवस्था को संविधान की आत्मा कहा है। देखिए कि जो संविधान 2 साल 11 महीने 17 दिनों में बना, उस संविधान की आत्मा अम्बेडकर उसे कहते हैं जिस अधिकार के तहत हर नागरिक को बराबर माना गया है और उसको मौके देने की बात हुई अगर उसके साथ अन्याय हुआ है। अंबेडकर के व्यक्तित्व को देखना है तो देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र के प्रमुख समाज सुधारक महादेव गोविंद रानाडे के व्यक्तित्व को भी उन्होंने कितनी गहराई से देखा था, गांधी जी को भी कितनी गहराई से देखा था और उन्होंने जिन्ना को भी समझा था। और इसको देखना है तो हमें अंबेडकर का लिखा हुआ निबंध रानाडे, गांधी और जिन्ना को देखना हो। इस लेख में उन्होंने रानाडे से गांधी की तुलना की है। रानाडे बहुत बड़े समाज सुधारक थे, महाराष्ट्र का तो बच्चा बच्चा उनका ऋणी है। और जिन्ना के बारे में तो काफी तल्ख लिखा है, लेकिन इसी बहाने वो तत्कालीन पत्रकारिता पर, उस दौर की पत्रकारिता पर कुछ सवाल भी उठाते हैं। और वो सवाल उठा करके कहते हैं कि बेसिकली, क्योंकि उन दिनों जिन्ना की एक छवि बहुत अच्छे नेता की गढ़ दी गई थी, तो वो बोलते हैं कि ये पत्रकारिता ने एक छवि गढ़ी है जिन्ना की, वो छवि बहुत अच्छी नहीं है। और इसी लेख में वो एक बहुत बड़ी बात बोलते हैं जिसको आज के पत्रकारों को बहुत पढ़ाया जाता है, बहुत उसको उद्धृत किया जाता है पत्रकारों के संदर्भ में। अम्बेडकर ने लिखा है, कभी भारत में पत्रकारिता एक व्यवसाय था, अब वह व्यापार बन गया है। वह तो साबुन बनाने जैसा है, उससे अधिक कुछ नहीं, उसमें कोई नैतिक दायित्व नहीं है। वह स्वयं को जनता का जिम्मेदार सलाहकार नहीं मानता। 20वीं सदी के शुरुआती दौर में लिखी हुई ये पंक्तियाँ आज के दौर में भी कितनी प्रभावी हैं, हमें इसको देखना होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो श्रोता हैं, हमारे जो वरिष्ठ छात्र हैं, इस बात को समझेंगे। चूँकि डॉक्टर अम्बेडकर की ख्याति संविधान वेत्ता के रूप में सबसे ज़्यादा रही है, इसलिए कई बार जब हमारे भारतीय संविधान की चर्चा होती है तो उसके अच्छाइयों और बुराइयों की भी चर्चा करते वक्त डॉक्टर अंबेडकर याद आते हैं। अंबेडकर का एक कथन जो उन्होंने 26 नवंबर 1949 को जब भारतीय संविधान स्वीकृत हो रहा था, एडॉप्ट हो रहा था, उस समय दिया था जो व्याख्यान संविधान सभा में, उस संविधान सभा में उन्होंने एक बड़ी बात की थी, हमें उसको हमेशा याद रखना चाहिए। उन्होंने कहा था कि अगर संविधान को लागू करने वाले अच्छे होंगे तो थोड़ा खराब संविधान भी अच्छे ढंग से लागू हो सकता है, और अगर अच्छे संविधान को लागू करने वाले अच्छे नहीं होंगे तो अच्छा संविधान भी अपनी जनता के साथ पूरी तरह से न्याय नहीं कर सकता है। मुझे लगता है कि संविधान सभा के अपने आखिरी भाषण में अंबेडकर ने जो कहा था उसका एक मूल अभिप्राय यही है कि दुनिया की अच्छी से अच्छी व्यवस्था तभी बेहतर बन सकती है जब उस व्यवस्था को लागू करने वाला तंत्र, उस लागू करने वाले हाथ बेहतर हों, नैतिक हों, ईमानदार हों। मुझे लगता है संविधान सभा में आखिरी व्याख्यान में डॉक्टर अंबेडकर ने एक तरह से जो भारतीय संस्कारों पर आधारित जो व्यवस्था है, भारतीय मूल्य जो व्यवस्था है, उसको याद करते हुए उन्होंने अपनी पूरी बात कह दी थी। एक तरह से वो भारत को संदेश दे दिया था कि भारत को अगर आगे बढ़ना है तो उसकी व्यवस्था में अच्छे आचरण वाले लोगों की ज़रूरत हमेशा बनी रहेगी। अंबेडकर को हम कई रूपों में याद कर सकते हैं, चाहे वो राजनीतिक रूप हो, चाहे संविधान वेत्ता का रूप हो, चाहे वो एक अच्छे लेखक का रूप हो, चाहे एक अर्थशास्त्री का रूप हो, चाहे वो समाज सुधारक का हो, चाहे श्रमिक हितों का पैरवीकार हो। जब भी आज़ाद भारत में हम जिधर भी देखेंगे, हर रूप में, हर व्यवस्था में अपने बुनियादी आधार के ढांचे के चलते याद आते रहेंगे। धन्यवाद।
1: अभी आप सुन रहे थे ये वार्ता, प्रस्तुति CIET NCERT नई दिल्ली।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से

पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें। यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी। हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: इस अभियान का नारा टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
1: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
0: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
2: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: हाय नमस्कार, मैं हूं आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। HIV और टीबी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। एक HIV रोगी को टीबी होने का खतरा आम आदमी से 10 गुना अधिक होता है। अगर HIV संक्रमित व्यक्ति को टीबी होता है तो टीबी का रोग HIV को एड्स में तेजी से बदल देता है। टीबी के इलाज का कोर्स पूरा करने पर HIV रोगी टीबी से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। मैं विनती करता हूं कि हर HIV मरीज तुरंत टीबी की जांच कराएं और सभी टीबी मरीज भी HIV की जांच कराएं।
2: अधिक जानकारी के 1-800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मुझे भी तो मेहंदी लगा दे। देख लो, 2 महीने के इलाज में इतना सुधार है तो अब तो मैंने दवा खानी भी बंद कर दी है।
2: टीबी की दवा तो 6 से 8 महीने लगातार चलती है। इसका मतलब कि आपने डॉट्स का कोर्स बीच में ही बंद कर दिया।
1: ये क्या, मेहंदी अधूरी क्यों छोड़ दी?
2: तुम डॉट्स का इलाज अधूरा छोड़ सकती हो और सोचती हो कि बात बन जाएगी? जानती हो ना, अधूरा इलाज यानी टीबी लाइलाज।
3: डॉट्स का इलाज अधूरा ना छोड़े। ये इलाज 6 से 8 महीने लगातार चलता है। अधूरे इलाज से टीबी बिगड़ जाती है और इलाज कठिन हो जाता है। याद रखें, पूरा कोर्स तो पक्का इलाज।
2: भाभी, कल ही डॉट सेंटर चली जाना।
1: कल नहीं, अभी।
3: राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहनें और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी पड़ेगी भारी। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
3: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपाली। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। और इसी बीच हमारे से जुड़ी हुई है एक बहुत ही खास हस्ती, जिनका परिचय हम आपसे कराएंगे। परिचय कराने से पहले हम बता देते हैं कि उनको रेडियो की दुनिया का अच्छा खासा अनुभव है, तो मैं अपने श्रोताओं से कहूंगी कि कहीं ना जाएं, उन्हें सुने। सबसे पहले हम उनका स्वागत करते हैं। मैम, आपका स्वागत है। आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है गीतिका उनियाल जी, जो कि FM रेनबो पर बतौर रेडियो जॉकी अपनी सेवाएं दे रही हैं। तो मैम, आज आप हमारे स्टूडियो में हैं, आपको कैसा लग रहा है?
2: सबसे पहले आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और सुनो शारदा 90.8 FM इसके माध्यम से आज मैं आप सभी के बीच सम्मिलित हूँ, यानी कि रेडियो की इस दुनिया से मेरा संबंध और भी ज्यादा गहरा हो जाता है, क्योंकि आज के विशेष दिन पर आपने मुझे आमंत्रित किया और आज मुझसे वार्तालाप कर रहे हैं। सौभाग्य की बात है मेरे लिए, और बहुत ही सुहाना सफर रहा है अभी तक रेडियो की दुनिया में, और उम्मीद करती हूँ कि आगे चलकर भी हम कुछ नया देंगे। हमारा हमेशा प्रयास यही रहना चाहिए।
1: जी, बहुत खूबसूरत बात आपने कही। आज हम बात कर रहे हैं रेडियो के बारे में, और रेडियो को जोड़ रहे हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से, जैसा कि हमारी थीम भी है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड रेडियो एम्पावरिंग वॉइस ऑफ कम्युनिटी। तो मैम, सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि क्या AI कम्युनिटी की आवाज को और सशक्त बना सकता है?
2: जी बिल्कुल, बहुत अच्छा प्रश्न आपने किया। जब हम कम्युनिटी की बात करते हैं, समुदाय की बात करते हैं, तो उसमें कम्युनिटी रेडियो बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। और आज युग में जब हम टेक्नोलॉजी का सहारा ले रहे हैं, और ऐसे में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र हर जगह है, तो रेडियो की दुनिया में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हमें कहीं ना कहीं और सशक्त करेगा। सशक्त कहने का मतलब ये है कि हम और भी ज्यादा इम्पावर हो जाएंगे। जहां पहले हम स्ट्रगल किया करते थे कि हम उचित सामग्री इकट्ठा करें और फिर अपनी स्क्रिप्ट बनाएं, स्क्रिप्ट बनाने के बाद फिर प्रॉपर प्रोग्रामिंग करें, फिर उस प्रोग्राम को रिकॉर्ड करें या फिर लाइव जाकर अपने प्रोग्राम्स को दें, लेकिन अब चुटकियों में, क्षण भर में प्रोग्रामिंग आसानी से की जा सकेगी, क्योंकि हमारे पास AI के उपकरण यानी कि टूल्स मौजूद होंगे, जिसकी मदद से हम कुछ ही समय के अंदर अपने काम को कर पाएंगे।
1: हाँ, तो मैम, हम मान सकते हैं कि AI समुदाय की आवाज को और सशक्त बनाएगा और समुदाय के बीच में जाकर और बेहतर प्रोग्रामिंग करेगा। ग्रामीण लोगों से जुड़े मुद्दे, महिलाओं से जुड़े मुद्दे, बच्चों से जुड़े मुद्दे, युवाओं से जुड़े मुद्दे, सब पर AI बेहतर कंटेंट के साथ प्रोग्राम बना रहा है और लोगों के बीच में जाकर एक लोकप्रिय भूमिका में स्थित भी है। तो मैम, मेरा आपसे दूसरा सवाल है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से रेडियो के कंटेंट प्रोडक्शन में सबसे बड़ा बदलाव हमें क्या देखने को मिलेगा?
2: देखिए, अगर कंटेंट की बात करते हैं, प्रोडक्शन की बात करते हैं, तो हम अगर अतीत के पन्नों को झांक कर देखिए, तो हमेशा से ही हमने रेडियो के माध्यम से कंटेंट पर बहुत ज़्यादा जोर दिया है। कंटेंट का अर्थ यहाँ पर है हमारी जो आम जनता है, जिनके लिए हम प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, उन्हीं की बात उन्हीं तक पहुँचानी है, जो मुद्दे हैं उन तक पहुँचाने हैं। तो प्रोग्राम के कंटेंट में इस तरह से फर्क पड़ेगा कि अब हम AI टूल्स के माध्यम से या AI के संपर्क में आने के बाद ये आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि कौन से क्षेत्र में, यानी कि हमारे समुदाय के भी किस क्षेत्र में क्या प्रॉब्लम है। जब हम प्रॉब्लम आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो हम उन लोगों तक आसानी से पहुंच पाएंगे जो उस परेशानी से ग्रसित हैं या जो चाहते हैं कि उनकी आवाज आम आवाज बन जाए और सब तक बात पहुंचे, तो प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन बहुत आसान हो जाएगी।
1: जी गीतिका जी, आपने हमारे लिसनर्स को बहुत जरूरी और बहुत ही बेहतर जानकारी दी है। जैसा कि आप FM रेनबो पर इस समय अपनी सेवाएं दे रही हैं, समुदाय के लोगों से जुड़ रही हैं, अनेक कार्यक्रम बना रही हैं, लोक संस्कृति, रीति रिवाज, देश विदेश से संबंधित कार्यक्रम लोग सुन रहे हैं, आपको पसंद कर रहे हैं, और आपकी आवाज एक सशक्त माध्यम है। मैम, मेरा आपसे ये सवाल है कि जिस तरीके से हम किसी भी रेडियो प्रोग्राम की स्क्रिप्ट लिखते समय मानवीय संवेदनाओं को समझते हैं, क्या AI भी जब कोई स्क्रिप्ट लिखता है तो वो मानवीय संवेदनाओं को समझ पाता है?
2: जी, यहाँ पर मैं एक बात जरूर कहना चाहूंगी, AI अगर हम संवेदनाओं की बात कर रहे हैं, तो AI हमें सशक्त सिर्फ डेटा देकर बनाएगा।
1: जी,
2: हमारी पूरी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, क्योंकि भावनात्मकता की अगर बात की जाए तो मनुष्य में है। जब मनुष्य की बात की जाए तो मनुष्य ही आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या आर्टिफिशियल टूल्स बना रहा है जो उसको सपोर्ट करेंगे, उसको हेल्प करेंगे, ना कि उसको रिप्लेस करेंगे। आपने कभी क्या किसी को सुना है कि उसने अपना ही कॉम्पिटिटर तैयार कर दिया? ऐसा कभी होता नहीं है, और कभी होगा भी नहीं। तो एआई सिर्फ मदद करने वाला एक ऐसा टूल है जो हमारे समय को कम करेगा, यानी कि जितना समय हम पहले से लगाते आ रहे हैं किसी काम को करने में उसे कम कर देगा। लेकिन जब भावनाओं की बात होती है, ह्यूमन वैल्यूज की बात होती है, तो मनुष्य के आगे कोई और नहीं, मनुष्य अपने आप में एक ही है और एक ही रहेगा, और उसकी जो भावनाएं हैं, उसकी जो वैल्यू सिस्टम है, वही रहेंगी जो मनुष्य के पास है। मनुष्य कोई रोबोट नहीं है, मनुष्य एक समय पर एक काम कर पाता है, चीजों का आकलन कर पाता है, सोच पाता है, समझ पाता है, रो पाता है, हंस पाता है। आपने अगर अपने बच्चे के लिए घर पर किसी रोबोट को खरीदा है जो सिर्फ चलता है, नाचता है, गाता है, क्या कभी आपने उसको रोते हुए सुना है? कभी क्या आपने उसको हंसते हुए सुना है? वो तो आप ही के द्वारा चाबी घुमाने पर आपकी भाषा बोलता है, लेकिन आप नहीं बनता।
1: बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने मैम। जैसा कि एआई इन दिनों कंटेंट फॉर्मेशन को लेकर बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन हम सामुदायिक रेडियो हैं, सुनो शारदा 90.8 एफएम। हम काम ही समुदाय के लिए करते हैं, लोकल वॉइस को आगे लेकर जाना। हम उन मुद्दों पर बात करते हैं जिन मुद्दों पर सरकार गंभीरता से बात करना चाहती है। हम समुदाय की आवाज बनकर आगे बढ़ना चाहते हैं। इसी बीच मेरे मन में एक सवाल आता है कि एआई जहां हर तरीके के कंटेंट का निर्माण कर रहा है, क्या लोकल भाषाओं में भी एआई अपना कमांड कर पाएगा? कहीं भोजपुरी बोली जाती है, कहीं अवधी बोली जाती है, कहीं ब्रजभाषी बोली जाती है। अगर हमें अपने समुदाय से जुड़ना है तो हम लोकल लैंग्वेज को इग्नोर नहीं कर सकते। तो क्या एआई लोकल लैंग्वेज पर कमांड कर पाएगा या कर पा रहा है, और वो कितना समुदाय तक पहुंच पा रहा है, ये आप हमारे श्रोताओं को थोड़ा बताएं।
2: जी, ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। जब यहाँ पर बात क्षेत्रीय भाषाओं की हो रही है, जैसा कि आपने स्वयं से प्रश्न किया है इस बात में कि हम कम्युनिटीज के लिए काम करते हैं, और कम्युनिटी यानी कि अलग अलग समुदाय, अलग अलग राज्यों के समुदाय, अलग अलग गांवों के समुदाय स्टेशंस हो गए, तो वहां पर क्षेत्रता बदलेगी तो भाषा बदलेगी, भाषा बदलेगी तो रेडियो एक ऐसा माध्यम है जब हम अपने जो हमारा प्रदेश है, जो हमारी कम्युनिटी है, जिनके लिए हम काम कर रहे हैं, अगर उनकी भाषा में बात नहीं करेंगे ना तो हम कनेक्ट नहीं हो पाएंगे। तो कनेक्शन के लिए जरूरी है उस भाषा का इस्तेमाल करना अपनी प्रोग्रामिंग में, अपने कंटेंट में, जिससे कि समुदाय है वो हमसे जुड़े। अगर मैं किसी समुदाय को संबोधित कर रही हूँ, उनकी प्रॉब्लम्स के बारे में बात कर रही हूँ, लेकिन मैं उनकी भाषा का इस्तेमाल नहीं कर रही हूँ, तो शायद मैं उन तक पहुंच नहीं पाऊंगी। एआई निश्चित रूप से यहाँ मददगार होगा। एआई टूल्स का इस्तेमाल कर हम किसी और भाषा में, मान लीजिए कि मेरे पास कोई कंटेंट ऐसा है जो किसी और भाषा में है, लेकिन मुझे लगता है कि ये जो कंटेंट है ना, ये मेरे समुदाय के लोगों के बड़ा काम आने वाला है, तो एआई टूल्स को यूज कर उसका इस्तेमाल कर मैं उस भाषा का अनुवाद करवा सकती हूँ। क्षण भर में मेरे पास अनुवाद आ जाएगा, और क्योंकि मैं जानकार हूँ, मैं समुदाय से अपना संबंध रखती हूँ और समुदाय के लोगों को जानती हूँ, उनकी भाषा को जानती हूँ, और मैं फिर उसको अनुदित कर अपनी भाषा में उन तक पहुंचा सकती हूँ।
1: हाँ, तो हम मान सकते हैं कि लोकल भाषाओं में एआई अच्छा कंटेंट बना सकता है।
2: जी
1: मैम, आप हमारे श्रोताओं को बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दे रही हैं, और हम चाहते भी हैं कि हमारे समुदाय के लोग जमीनी स्तर पर आपसे जुड़े। मेरा अगला सवाल आपसे है कि कम्युनिटी रेडियो के पास बहुत सीमित संसाधन होते हैं, सीमित संसाधनों में कम्युनिटी रेडियो को रन करना होता है। हम टीम मेंबर्स समुदाय के बीच में जाकर समुदाय की आवाज बनना चाहते हैं, ऐसे में एआई की तकनीक को हम किस तरीके से अपना सकते हैं? क्या इसके लिए किसी ट्रेनिंग का जरूरत है, या हम समुदाय के लोगों के बीच में जाकर कुछ अच्छी स्क्रिप्ट एआई की से बनाकर जो कि लोकल डायलेक्ट में हो उनके बीच पहुंचा सकते हैं? इस बारे में आप मुझे थोड़ा
2: देखिए, जब आपने कहा कि आपको अपने समुदाय से जुड़ना है
1: जी,
2: तो मुझे लगता है कि आधी आत्मीयता तो आपने वहीं पूरी कर ली, जब समुदाय में यानी कि समुदाय में रहने वाले लोगों से आप जाकर मिले, आपने उनसे वन टू वन टॉक करी, तो आपने कहीं ना कहीं उनसे आत्मीयता वहीं स्थापित कर ली। एआई उनकी मनोस्थिति नहीं जानता है, एआई आपको मदद करेगा, टूल्स मदद करेंगे कि उस क्षेत्र में, उस राज्य में क्या क्या परेशानियां हैं। आपके पास हो सकता है सवालों की एक फहरिस्त जरूर बन जाए, लेकिन सच में वो सवाल या वो मुद्दे उस समुदाय में हैं भी, या उस समुदाय को संबोधित करने वाले हैं भी या नहीं है, वो आप समुदाय से बात करके पता करेंगे। तो जो भी आप एआई की मदद से सामग्री इकट्ठी कर रहे हैं उसका क्रॉस चेक जरूर कीजिए। पूरी तरह से किसी भी उपकरण पर अपने आप को निर्भर कर देना ये गलत होगा। आज के युग में जब व्यक्ति व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता, तो आप किसी उपकरण पर विश्वास कर फिर से ऐसे कैसे एक रेडियो प्रोग्राम बना सकते हैं, निर्मित कर सकते हैं जो सीधा जुड़ा हुआ है आम जनमानस से।
1: जी बिल्कुल ठीक कहा मैम आपने। जैसा कि हम कोई भी रेडियो कार्यक्रम बनाते हैं समुदाय के लिए तो हम काफी रिसर्च करते हैं, हम कुछ बुक्स पढ़ते हैं, कुछ रिसर्च पेपर पढ़ते हैं, समुदाय के बीच में जाकर लोगों की बात सुनकर हम स्क्रिप्टिंग करते हैं कि लोगों की असल मुद्दे क्या है जो रेडियो के माध्यम से जाने चाहिए। लेकिन आजकल बहुत तेजी के साथ स्क्रिप्ट तैयार कर ली जाती है। क्या हमारे प्रोग्रामों की जो क्रिएटिविटी है उस पर AI का बहुत गहरा प्रभाव पड़ गया है, या आने वाले समय में AI ही स्क्रिप्ट लिखेगा तो फिर रिसर्च करके प्रोग्राम कैसे बनेंगे? आप इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालिए।
2: ये प्रश्न भी आपका बहुत बहुत अच्छा है। AI स्क्रिप्ट, मैंने फिर कहा कि AI अपना दिमाग इस्तेमाल करेगा जो एकदम आर्टिफिशियल है, वो उतनी ही सामग्री आपको देगा जितना उसके परिप्रेक्ष्य में आती है। मैं ये कहती हूँ कि जो दिमाग ईश्वर ने इंसान को दिया है वो शायद इंसान भी मशीन को नहीं दे सकता।
1: जी बिल्कुल,
2: है ना। तो जब हम कोई स्क्रिप्ट बनाते हैं तो हम उसके कहते हैं ना कि हम किसी चीज के नकारात्मक और सकारात्मक पहलू दोनों को लेकर आप जब स्क्रिप्ट बना रहे होते हैं उसके बाद रिसर्च करते हैं, रिसर्च करने के बाद आपको लगता है ये प्रश्न यहाँ पर ठीक नहीं लगेगा। सिर्फ ये मानव जाति के पास ही इस तरीके के गुण मौजूद है कि उसके पास ये शक्ति है कि वो अच्छे और बुरे में से अच्छे को अपने पास रखता है और बुरे को निकाल देता है। AI आपकी मदद कर सकता है, आपको स्क्रिप्ट दे सकता है, लेकिन फिर आपको पुनः निर्माण अपनी स्क्रिप्ट का, अपने प्रोग्राम का खुद करना होगा। ये मान लीजिए कि आपने अपने किसी साथी से हेल्प मांगी कि मेरी मदद कर दोगे क्या?
1: बिल्कुल,
2: उसने मदद की, पर आपको पूर्ण रूप से भी अपने साथी पर निर्भर नहीं होना है। उसने सिर्फ मदद की है,
1: जी
2: वो आप नहीं है। जिस तरह से दुनिया में हर व्यक्ति अपने आप में एक है, आप मुझ जैसी नहीं और मैं आप जैसी नहीं, तो भला फिर मुझ जैसा AI कैसे हो सकता है?
1: बिल्कुल,
2: तो कहते हैं ना कि मेरा क्लोन कोई भी नहीं अगर सही मायने में देखा जाए।
1: हाँ, सब अपने आप में यूनिक है,
2: यूनिक है। तो क्योंकि मुझ जैसा कोई नहीं तो मशीन मेरे जैसी कैसे हो सकती है?
1: बिल्कुल,
2: क्योंकि मशीन मेरे जैसी नहीं हो सकती, इसलिए उस पर हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते।
1: जी मैम, आपने बेहद अच्छी बात कही कि हर इंसान अपने आप में यूनिक है और कोई किसी का क्लोन नहीं बन सकता है। मैम, हम समुदाय से जुड़े हुए लोग हैं, हम समुदाय की बात करते हैं, ऐसे में मेरे मन में एक सवाल आता है कि जो हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ बहुत सी ऐसी कहानियाँ होती हैं जो सरकार तक जानी चाहिए। तो मेरा आपसे प्रश्न है कि क्या AI की मदद से हम ग्रामीण स्तर की कहानियों को राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचा सकते हैं?
2: देखिए, राष्ट्रीय स्तर तक पहुँचाने के लिए आपको अब, जैसा कि आज मैं सिर्फ AI नहीं कहूंगी यहाँ पर, आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं। राष्ट्रीय स्तर तक पहुंचाने के लिए तो मुझे लगता है कि शायद आज सोशल मीडिया ही काफी है।
1: बिल्कुल,
2: कि आपने आज किसी मुद्दे पर बात करी और सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया और उसके बाद जिस तरह से वो वायरल होता है तो निश्चित रूप से वो कहीं ना कहीं वो देश का मुद्दा बन जाता है। और यही कारण है कि शायद मन की बात जैसे कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने शुरू किए हुए हैं कि जो देश के मुद्दे हैं वो उन तक पहुंचे, और जब वो मुद्दे उन तक पहुंचते हैं पत्रों के माध्यम से, चिट्ठियों के माध्यम से, तो वो खुद उन मुद्दों को एड्रेस करते हैं बकायदा रेडियो पर। तो इससे बड़ी और कुछ बात नहीं हो सकती। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें ये नहीं भूलना है कि हमें आत्मिक बने रहना है, एक दूसरे से बात करते रहना है, और निश्चित रूप से हमारी बात पहुंचेगी, जन जन तक पहुंचेगी, घर घर तक पहुंचेगी, क्योंकि आज हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं।
1: जी मैम, बिल्कुल आपने सही कहा कि मानवीय संवेदनाएं और भावनाएं बेहद जरूरी हैं, जो AI उस तरीके से नहीं रख सकता जिस तरीके से हम रखते हैं। तो मैम, मेरा अगला सवाल इसी विषय पर है, क्या AI के कारण रेडियो में मानवीय संवेदनाएं और भावनाओं की कमी देखने को मिलेगी? क्या इस वजह से श्रोताओं का जुड़ाव हमसे कम होगा? अगर हम AI यूज करें तो हम किस हद तक यूज करें कि हमारे श्रोता हमसे जुड़े रहें?
2: जी, ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, और मैं इस पर यही कहूंगी कि AI यूज कौन कर रहा है, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ये है। जब हम बात कर रहे हैं प्रोग्रामिंग की, ट्रांसमिशन की, पैकेजिंग की, तब मैं कहती हूँ कि हम AI का ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करें, उसका उपयोग करें, क्योंकि कहीं ना कहीं AI हमारा काम थोड़ा कम कर देगा कि हमें प्रोग्राम को पैकेज करना है। आप और मैं ये साक्षात्कार कर रहे हैं, AI की मदद से आने वाले समय में आपने जो बात की और आपने बीच में मान लीजिए कोई गाना लगाना है तो आपको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि इस परिप्रेक्ष्य में मैं कौन सा गाना लगाऊं। AI टूल का इस्तेमाल कर तुरंत आपके लिए एक गाने को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। और देखिए, जो समय आप आधा घंटा लगाते हैं उस गाने को ढूंढने में, AI टूल की मदद से आपने उस गाने को ढूंढ कर
1: कुछ सेकंड्स में ढूंढ कर लगा दिया।
2: तो कहने का अर्थ यह कि आपकी प्रोग्रामिंग पैकेजिंग के लिए AI टूल्स का इस्तेमाल बेहतरीन है, लेकिन फिर दोबारा से मैं यही कहना चाहूंगी बार बार कि जब मानवीय मुद्दों की बात आती है, मानवता की बात आती है, तो दुनिया में हम जैसा कोई नहीं, यानी कि मनुष्य जैसा कोई नहीं है। अब ये निर्भर करता है कि जो संचालन कर रहा है कार्यक्रम का वो कितना इन्फॉर्म्ड है, वो अपने कार्य के प्रति, अपनी रेडियो प्रोग्रामिंग के लिए कितना ज्यादा सजग है। क्योंकि जो व्यक्ति बोल रहा है वो ये चाहता है कि मैं अपने कार्यक्रम के माध्यम से जो कुछ भी कहूँ ना, वो सब कुछ विश्वसनीय हो।
1: क्रेडिबिलिटी
2: बहुत जरूरी है। तो वो AI पर पूर्ण रूप से निर्भर नहीं रहेगा। वो जो भी सामग्री तैयार कर रहा है, जो भी स्क्रिप्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ AI की मदद से अपनी स्क्रिप्टिंग नहीं करेगा, वो किताबें ढूंढेगा, वो अखबार ढूंढेगा, वो रिसर्च पेपर्स देखेगा, उसके बाद ही संकलन करेगा, संग्रहण करेगा और अपनी स्क्रिप्ट तैयार करेगा। हाँ, AI की मदद ले सकता है, पर पूर्ण रूप से वो AI पर निर्भर नहीं करेगा। जो लोग AI पर पूर्ण रूप से निर्भर रहेंगे, निश्चित रूप से उनके प्रोग्रामिंग में, उनके कार्यक्रमों में आपको कहीं ना कहीं अलगाव महसूस होगा। आपको ये महसूस होने लगेगा कि ये मेरी बात नहीं कही जा।
1: तो हम ये मान सकते हैं कि हमारे श्रोता उतना नहीं जुड़ पाएंगे जितना कि उस प्रोग्राम से जुड़ पाते हैं जो हम खुद रिसर्च करके, मेहनत करके, समुदाय के बीच में जाकर उनकी संवेदनाओं को महसूस कर बनाते हैं।
2: जी, अब देखिए, माना आप और मैं यहाँ पर एक साक्षात्कार कर रहे हैं और आपको मेरी जिंदगी की वो पहलू पता है जो शायद किसी को नहीं पता। तो बताइए कि आत्मीयता इस बात से ज्यादा होगी कि आपने उन पहलुओं को यहाँ पर उजागर किया रेडियो प्रोग्राम के माध्यम से, या फिर आपने AI के माध्यम से मेरे बारे में ढूंढ कर या उसके द्वारा एक स्क्रिप्ट बनाकर मुझसे सवाल
1: पूछ लिया। जो मुझे आपके बारे में जानकारी है, जो आत्मीय जानकारी है, उस पर अगर मैं अपने श्रोताओं को जानकारी दूंगी तो मेरे श्रोता ज्यादा जुड़ेंगे आपसे।
2: जी जी, तो यही फर्क रहने वाला है कि जो लोग पूर्ण रूप से AI पर निर्भर रहेंगे वो कहीं ना कहीं उस मानवीय पहलू को भूल जाएंगे।
1: जी,
2: वो उसको उजागर ही नहीं कर पाएंगे। लेकिन वो लोग जो काम करेंगे, जो करते आ रहे हैं, निश्चित रूप से वो ज्यादा जुड़ेंगे अपने लोगों तक।
1: अच्छा मैम, कहते हैं कि रेडियो दिल की आवाज़ है। रेडियो पर जब कोई गाना बजता है तो वो हमारे दिल तक पहुंचता है। क्या मशीन दिल की आवाज सुन सकती है? मशीन से मेरा मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से है।
2: जी, सच कहूं तो बिल्कुल नहीं। जब ईश्वर ने ये दिल सिर्फ इंसान को दिया है, मशीन को नहीं, तो भला मशीन हमारे दिल की धड़कन कैसे सुन पाएगी। मैं फिर से कहूंगी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसकी बार बार बात हो रही है, ये मानव की ही खोज है। भगवान ईश्वर ने अगर इंसान को बनाया है तो इंसान ने मशीन को बनाया है। जिस तरह से ईश्वर सर्वोपरि है, उसी प्रकार मानव सर्वोपरि है मशीन के लिए। मशीन को भी ऑपरेट करना पड़ेगा, मशीन को भी चलाना पड़ेगा, मशीन को भी कमांड देना पड़ेगा। तो वो हम ही तो देंगे ना। तो जब हम ही देंगे तो हम क्यों सिर्फ मशीन लर्निंग पर, सिर्फ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से। मैं बार बार यही कह रही हूँ कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के टूल्स को सिर्फ हमें इस्तेमाल करना है, प्रयोग में लाना है, लेकिन पूर्ण रूप से निर्भर।
1: तो मैं अपने श्रोताओं को कहना चाहूंगी कि हमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज तो करना है, लेकिन हमें पूरी तरीके से उस पर डिपेंड नहीं रहना। मैम, आजकल एक चीज बहुत सुनने में आ रही है, वॉइस क्लोनिंग। कई लोगों ने कहा भी कि हमारी वॉइस का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या ये नैतिक रूप से सही है?
2: मैं कहूंगी कि नैतिक रूप से सही इसलिए नहीं है कि कल चलकर, माना कि रेडियो स्टेशंस के लिए अगर क्लोन बना दिए गए और इस्तेमाल भी कर लिए गए, आपने अपनी मैन पावर को कम कर लिया, आपके बहुत सारे मुद्दे सुलझ गए, जहां आप मान लीजिए कि अगर आप किसी रेडियो स्टेशन में 12 घंटे अपने देते हैं तो आपको 6 घंटे देने पड़ेंगे, उसके बाद आपका क्लोन चल जाएगा, यानी कि क्लोनिंग वॉइस चल जाएगी। लेकिन ये मानिए कि ये जो दुनिया है ना, ये पूर्ण रूप से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर निर्भर है, खासतौर पर अगर रेडियो की बात की जाए।
1: जी,
2: तो जो हमें यहाँ सुनाई देता है, दिखाई देता है, वो कल चलकर लोग अपनाते हैं। और जब किसी चीज को अपनाया जाता है तो उसके सकारात्मक पहलू भी अपनाए जाते हैं और नकारात्मक भी। तो कहीं ना कहीं अगर वॉइस क्लोनिंग का इस्तेमाल होने लगा तो कल चलकर बहुत ज्वलंत मुद्दे शुरू होने की आशंका है। क्योंकि कहते हैं कि संसाधन हमारे लिए, मनुष्य के लिए, पर मनुष्य पर निर्भर करता है कि उन संसाधनों को वो कैसे उपयोग में लेकर आएगा। इसका उपयोग गलत तरीके से होने लगा तो हो सकता है, जिसको हम कहते हैं ब्रीच ऑफ प्राइवेसी, वो शायद कहीं ना कहीं बाधित हो सकती है। कोई भी मेरी आवाज का इस्तेमाल कर मैं बनकर कुछ भी गलत कर सकता है। तो इस पर थोड़ा सा नियंत्रण होना चाहिए
1: और इस पर हमें ध्यान देने की भी जरूरत है। मैम, हम सामुदायिक रेडियो हैं, हम समुदाय के लिए ही काम करते हैं। तो आपने सुना होगा कि सोशल स्टोरी टेलिंग मतलब समाज से जुड़े हुए मुद्दों की कहानियां जब बड़े मंच पर पहुंचती हैं तो वो लोगों पर काफी गहरा प्रभाव डालती हैं। साथ में जब हम कम्युनिटी के लिए रिपोर्टिंग करते हैं तो क्या AI टूल्स आने से सोशल स्टोरी टेलिंग ज्यादा बढ़े हैं, मतलब लोग सोशल स्टोरी टेलिंग सुनना ज्यादा पसंद करते हैं या पहले की तुलना में कम हुए हैं?
2: देखिए, मैं तो यही कहूंगी कि अगर खास तौर पर पत्रकारिता की बात की जाए ना, तो पूरी पत्रकारिता में बहुत बड़ा बदलाव आया है
1: जी।
2: पहले एक जमाना हुआ करता था जब व्यक्ति, जब पत्रकार सिर्फ पेंसिल से लिखा करता था। फिर उसके बाद कंप्यूटर आया, डिजिटाइजेशन हुआ, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, चीजें बदली हैं, बहुत सारी चीजें बदली हैं। लेकिन मैं यही कहूंगी जो सशक्त पत्रकार हैं, सशक्त लोग हैं, जो आम जन की आवाज आम जन तक पहुंचाना चाहते हैं ना, वो आज भी शब्दों की गरिमा को या ये कह लीजिए विषय की गरिमा को बनाए बैठे हैं। आपके कुछ शब्दों से विषय बदल सकता है, उसका मुद्दा बदल सकता है। आप कितने सजग हैं और आप कितने ज्यादा अपनी जो समुदाय है उसके प्रति आप संवेदनशील हैं, ये इस बात पर निर्भर करेगा कि AI टूल्स का इस्तेमाल कर या AI का इस्तेमाल कर आप अपनी जो स्क्रिप्ट बना रहे हैं, जो कंटेंट बना रहे हैं, उसमें क्या फेरबदल हो गया। तो मेरा मानना तो ये है कि अगर संवेदनशीलता की बात आती है तो सर्वप्रथम अपने दिल की सुनिए, क्योंकि आपका दिल जो है ना वो सबसे पहले आपको सही मार्गदर्शन करता है कि किस रास्ते पर आप जा रहे हैं
1: जी।
2: तो पूर्ण रूप से संवेदनशील विषयों पर AI पर निर्भर रहना, तो मैं यही कहूंगी क्रॉस चेक।
1: बिल्कुल, क्रॉस चेक बहुत जरूरी है,
2: बहुत जरूरी है। सिर्फ हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, बार बार यही कहूंगी, निर्भर नहीं होना है
1: जी। बिल्कुल सही कहा, हमें AI टूल्स की मदद लेनी है, उन पर निर्भर नहीं होना। तो मैम, अभी तक तो हम रेडियो कहते आए थे, लेकिन आजकल हम सुनते हैं स्मार्ट रेडियो। रेडियो अब स्मार्ट होता जा रहा है, रेडियो पहले से काफी आगे बढ़ चुका है। तो ऐसे में जो रेडियो है उसके भविष्य को AI किस तरफ ले जा रहा है? ये ऑटोमेशन की तरफ लेके जा रहा है या इनोवेशन की तरफ लेकर जा रहा है?
2: देखिए, मैं ये कहूंगी कि सर्वप्रथम तो ऑटोमेशन
1: जी।
2: सर्वप्रथम ऑटोमेशन इसलिए है कि एक कार्यक्रम को बनाने के लिए ना जाने कितने दिन लगते थे पहले।
1: बिल्कुल,
2: बहुत दिन लगते थे, रिसर्च की जाती थी, स्क्रिप्ट तैयार की जाती थी, फिर स्क्रिप्ट में भी किस तरह की स्क्रिप्ट है ये डिसाइड किया जाता था। अगर पैनलिस्ट हैं आपके कार्यक्रम में तो आपको पैनलिस्ट को बुलाना होता था, प्रोग्रामिंग करने में बहुत सारे दिन लगा करते थे। लेकिन अब क्या है, अब क्यों भर में काम हो जाया करेंगे। इनोवेशन तो तब होगा जब हम एक नया फॉर्मेट लेकर आएंगे, कि रेडियो के माध्यम से हमने कहा कि हम टॉक शो कर रहे हैं, हम कोई एंटरटेनमेंट का प्रोग्राम कर रहे हैं, इसके अलावा अगर हम कोई फॉर्मेट लेकर आते हैं तो इनोवेशन होगा। लेकिन अगर हम उसी पैटर्न पर काम कर रहे हैं तो मैं कहूंगी सिर्फ ऑटोमेशन है।
1: बिल्कुल, आपने बहुत सही जवाब दिया। मैं अपने श्रोताओं को ये भी बताना चाहूंगी कि AI सिर्फ एक सहायक टूल है, लेकिन उस पर पूरी तरीके से निर्भर होना ठीक नहीं है। मैम, मेरा आपसे एक और सवाल है कि जिस तरीके से AI ने हमारे रेडियो के प्रोग्रामिंग को काफी आसान बनाया है, लेकिन श्रोताओं का जो एनालिसिस है वो किस तरीके से बदलेगा? हम AI से कार्यक्रम तो बना लेंगे, प्रोग्राम तो बना लेंगे, लेकिन श्रोताओं का हमारे लिए इंटरेस्ट लगातार किस तरीके से बदलेगा, इस पर आप थोड़ा सा प्रकाश डालें।
2: देखिए, श्रोताओं का इंटरेस्ट तभी बदलता है जब आप उनसे उनकी जैसी बात नहीं करते हैं।
1: बिल्कुल,
2: जैसे आप और मैं यहाँ पर बैठे हुए बहुत आत्मिक हो रहे हैं, एक दूसरे से अपने दिल की बात कह रहे हैं, कहीं ना कहीं हम दोनों बातों ही बातों में एक दूसरे के साथ जो है ना स्माइल्स एक्सचेंज कर रहे हैं,
1: जुड़ गए हैं हम,
2: जुड़ गए हैं। रेडियो के माध्यम से भले ही आप अपने श्रोता को नहीं देख सकते, श्रोता आपको नहीं देख सकते, लेकिन आपकी जो आवाज कि जो गरिमा है, जो उसका जादू है ना, सुनने वाले को अपने रेडियो सेट्स पर यही सुनाई देता है जैसे साक्षात वो व्यक्ति ना मेरे पास मेरे घर में बैठा हुआ है
1: जी।
2: तो अगर हम AI पर बहुत ज्यादा निर्भर होंगे, देखिए AI की भाषा पर अभी भी हम पूर्ण रूप से निर्भर नहीं हो सकते। आपने कई बार, अगर जो लोग ChatGPT और इन सब का इस्तेमाल करते हैं और बड़े शौक से कहते हैं कि हमने ये स्क्रिप्ट तैयार कर ली है, आप उनकी स्क्रिप्ट और एक व्यक्ति द्वारा लिखी हुई स्क्रिप्ट को जब कंपेयर करेंगे तब आपको महसूस होगा कि आत्मीयता किसमें ज्यादा है। तो मैं यही कहूंगी और हर बार यही कहूंगी कि मानव मूल्यों का कोई तोड़ नहीं, और AI आपको सामग्री दे सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं वो आपके जैसे इमोशंस नहीं डेवलप कर सकता, आपके जैसे बात नहीं कर सकता
1: जी बिल्कुल, वो हमारे जैसे ना तो इमोशन डेवलप कर सकता है ना श्रोताओं से इतना जुड़ाव महसूस कर सकता है। मैम, हम छोटे स्टेशन है, हम समुदाय से जुड़े हुए हैं। मेरा आपसे ये सवाल है कि जो सामुदायिक रेडियो स्टेशन है उन्हें एआई को किस तरीके से देखना चाहिए, एक चुनौती के रूप में देखना चाहिए या एक अवसर के रूप में देखना चाहिए?
2: जी, सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी, चाहे सामुदायिक रेडियो स्टेशन हो, प्राइवेट एफएम स्टेशंस हो, सरकारी हो, गैर सरकारी हो, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि हम किन के लिए काम कर रहे हैं, हमारी आवाज़ किन के लिए है, उन लोगों तक पहुंचने के लिए है जो हमें सुनना चाहते हैं, जिनकी ज़िंदगियों में हमारी वजह से बदलाव आता है, जो बदलाव को महसूस करते हैं। अगर ख़ास तौर पर कम्युनिटी रेडियोज की बात की जाए तो अगर आपको वो उपकरण दिए जा रहे हैं जिसकी वजह से आप अपनी प्रोग्रामिंग को सशक्त कर सकते हैं तो क्यों नहीं। मैं तो यही कहूंगी कि टूल्स का इस्तेमाल चाहे कम्युनिटी रेडियो स्टेशंस हों या कोई भी एफएम स्टेशन क्यों ना हो, जरूर करें, क्योंकि अगर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा अच्छा काम किया जा सकता है, जरूर करें। लेकिन हाँ, अगर हम संचालकों की बात करें जो आवाज की दुनिया के जादूगर हैं, उन्हें अपना जलवा आवाज का अपनी ही आवाज में, यानी कि अपनी दिल की आवाज के जरिए ही करना है, ना कि एआई की दिल की आवाज के जरिए।
1: हाँ, यानी अपनी आवाज का जलवा बरकरार रखना है। मैम, आपसे मेरा अब आखिरी सवाल है, और आपने हमें बड़ा कीमती समय दिया है अपना, लेकिन ये सवाल मेरे श्रोताओं के लिए बेहद जरूरी है। हम सामुदायिक रेडियो हैं तो हम समुदाय की बात ही करेंगे, क्योंकि हमारा समुदाय ही हमारी ताकत है। मैम, समुदाय के बीच में जाकर एक बात मैं हमेशा महसूस करती हूँ कि लोकल भाषाओं को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि समुदाय अपनी भाषाओं से बहुत तेजी से जुड़ता है। तो क्या एआई लोकल भाषाओं में प्रोग्राम बनाकर कंटेंट को और जीवंत बना सकता है, और या उसे और बेहतर तरीके से प्रस्तुत कर सकता है?
2: मैं तो यही कहूँगी, जब मेरी माँ बचपन से मेरे साथ मेरी क्षेत्रीय भाषा में बात करती आई और मैंने उस भाषा में अपनी माँ को ढूंढ लिया, तो बताइए क्या एआई मेरी माँ बन सकती है? उसी भाषा में क्या एआई मुझसे बात कर सकती है जो मार फटकार प्यार दुलार मेरे परिवार से मुझे मिला, मेरी भाषाओं या मेरी भाषा के माध्यम से, जिस भी क्षेत्र को मैं संबंध रखती हूँ जिस भी क्षेत्र से, तो जो चीज़ मुझे बिन मांगे मिल गई वो मांग कर, यानी कि एआई के माध्यम से कैसे मिल सकती है? मेरा पूरा जीवन अपने क्षेत्रीय परिसर में गुजरा है।
1: बिल्कुल,
2: तो जो मेरे क्षेत्रीय लोगों ने मुझे दिया, जो भाषा मुझे प्राप्त हुई वहां से, एआई जिसका जन्म अब हुआ, वो कैसे मुझे वो दे सकता है जो मेरे साथ बचपन से मेरे साथ था ही नहीं? तो जो मेरे साथ बचपन से था ही नहीं वो मुझे समझ ही नहीं सकता, जो मुझे समझ ही नहीं सकता वो मुझे वो क्या कैसे दे सकता है जिस बात की मैं कल्पना कर रही हूँ? तो मैं यही कहूँगी कि क्षेत्रता की अगर आप बात कर रहे हैं तो व्यक्ति जिसका उस क्षेत्र से संबंध है वही उन मूल्यों को आम जनमानस तक पहुंचा सकता है जिस क्षेत्र से वो संबंध रखता है। एआई फिर कहूंगी कि ये सहायता का उपकरण है।
1: बिल्कुल, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारे बीच में एक सेतु का काम कर रहा है।
2: जी,
1: एआई हमारी मदद कर रहा है सूचनाओं को देने में, हमें अपडेट करने में, हमारे टूल्स को आसान बनाने में, तकनीक को आसान बनाने में। फिर भी जो हमारी संवेदनाएं हैं उस पर हमें उसी तरीके से काम करना होगा जिस तरीके से हम करते आए हैं। हमें समुदाय के बीच में जाना होगा, लोगों को सुनना होगा, समझना होगा, और लोगों की हर बात को अपने स्तर से पहुंचाना होगा। हाँ, तो श्रोताओं, आप सुन रहे थे मेरे साथ गीतिका उनियाल जी को, जो कि एफएम रेनबो पर बहुत फेमस प्रेजेंटेटर हैं। उनकी आवाज़ बेहद खूबसूरत है और लोग उनकी आवाज़ से बहुत जल्दी जुड़ जाते हैं, जैसे कि हम और आप भी जुड़ गए। आज स्टूडियो में उन्होंने हमें अपना बहुत कीमती समय दिया और हमसे एआई तकनीक और सामुदायिक रेडियो के भविष्य पर काफ़ी बातें शेयर करी। तो फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं। मैम, आपका स्टूडियो में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।
2: बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
1: फिलहाल हम आपसे विदा लेते हैं, एक और विषय के साथ हम आपसे जुड़ेंगे, और आप लोग हमारे साथ बने रहिए। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 एफएम, आपका अपना सामुदायिक रेडियो। मैं फिर कहना चाहूंगी कि एआई हमारे टूल्स की जानकारी के लिए प्रोडक्शन में मदद करेगा, लेकिन मानवीय संवेदनाओं की जगह, ओरिजिनलिटी की जगह, जिज्ञासा की जगह, समुदाय की आवाज की जगह एआई नहीं ले पाएगा।
3: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कु ताऊ की तरफ से राम राम।
4: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
5: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
3: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
6: सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेंट के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800 11 6666 पर संपर्क करें।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

0: तो इस तरह सुपर हीरो जल रक्षक ने पानी बचा के पूरी दुनिया को बचाया।
1: वाओ, जल रक्षक की कहानी तो कमाल है अप्पा।
0: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी। तारा अब तुम सो जाओ, कल सुबह चमन तुम्हारे साथ खेलने आने वाला है।
1: बहुत मजा आएगा।
2: हाय तारा।
1: ओह हाय चमन, आओ मेरे साथ फल खाओ, फिर हम खेलेंगे।
3: मैं बस साबुन से हाथ धोकर आता हूँ।
1: अरे चमन पानी वेस्ट कर रहा है, लगता है सुपर हीरो जल रक्षक को फिर से पानी बचाना पड़ेगा।
2: अरे तारा ये क्या?
1: तारा नहीं, जल रक्षक तारा।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
1: हर दिन हर व्यक्ति को जितना पानी पीने और खाना बनाने में लगता है, लगभग उतना ही पानी एक व्यक्ति साबुन को हाथ पर या बर्तन पर मलते समय, ब्रश करते समय या दाढ़ी बनाते समय नल को खुला रखने से बर्बाद कर देता है।
3: अच्छा, मैंने तो ये सोचा नहीं था तारा। ओ, मेरा मतलब जल रक्षक तारा।
1: और नलिया पाइप में केवल एक लीकेज से ही हर दिन लगभग उतना पानी बर्बाद हो जाता है जितना एक व्यक्ति एक दिन में घर के सारे काम करने के लिए उपयोग करता है।
3: अरे बाबा रे,
1: आज भी हमारे देश में बहुत सारे लोग हैं जिन्हें शुद्ध पानी नहीं मिलता। जरा सोचो चमन, ये समस्या है कि नहीं? मुझे लगता है ये बहुत बड़ी समस्या है।
3: हाँ तारा, सच्ची ये बहुत बड़ी समस्या है।

0: Cuman-cuman, abang kini.
1: Okey. तारा, मैं थक गया हूँ। मैं थोड़ा सा पानी पी कर आता हूँ, ठीक है?
0: पीने का पानी? चुमन रुको। हाथ को खरी में डुबोने से ये पानी दूषित हो गया है।
1: हैं? लेकिन पानी दिखने में तो बिल्कुल साफ है।
0: पानी दिखने में साफ हो सकता है, पर जरूरी नहीं कि ये पीने लायक भी हो। पता है? कुछ जल स्रोतों जैसे कम गहरे हैंडपंप का पानी भी दिखने में साफ होता है, पर पीने के लिए सुरक्षित नहीं होता।
1: हैं?
0: पानी में जीवाणु, विषाणु या कई प्रदूषक तत्व हो सकते हैं, जो आंखों से नहीं दिखाई देते, और दिखने में पानी साफ लगता है। इसीलिए बिना पानी की जांच किए हम नहीं जान सकते कि पानी पीने के लिए सुरक्षित है या नहीं।
1: अरे बाबा रे, तो फिर

0: बात तो ठीक है जल रक्षक तारा, पर पानी की जांच होगी कैसे?
1: चलो चलो अप्पा से पूछते हैं।
2: ओके
1: अप्पा।
3: अब सरकार की ओर से हर ग्राम पंचायत को जल जांच किट दी जा रही है और हर एक ग्राम पंचायत से 5 महिलाओं को ट्रेनिंग भी दी जा रही है, जिससे हर महीने अपने पंचायत के सभी जल स्रोतों की जल गुणवत्ता जांच और स्वच्छता निरीक्षण सुनिश्चित हो।
2: वाह अंकल, आप भी जल रक्षक?
3: हमारी पूरी फैमिली ही जल रक्षक है।
4: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
2: मैं भी बनूंगा जल रक्षक।

0: पानी में गंदे हाथ या गंदे बर्तन।
1: नो नो नो नो,
2: समझ गया।
3: अब मैं भी जल रक्षक बन गया।
1: जल रक्षक है नाम हमारा, पानी बचाना काम हमारा, खुद का पानी खुद निगरानी।
4: कहीं पानी बर्बाद हो रहा है,
3: लगता है वहाँ जल रक्षकों की जरूरत है।
4: चलो।
0: तुम सब भी जल रक्षक बन सकते हो, आज से अभी से शुरू करो, खुद का पानी खुद निगरानी।
5: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: पवन सिंह, आप हमारे साउथ में?
1: अरे हाँ भाई, लेकिन हमारे साउथ फैंस खाते भी तक कुछ होके के चाहिए ना। गाना बुझे कि नहीं?
0: हाँ
1: चलो धूम मचाते हैं।
0: फिक्स।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने जा रहे हैं हल्दी, मेथी और सौंठ का एक साथ अगर आप सेवन करते हैं तो शरीर की 5 समस्याओं से तुरंत आपको छुटकारा मिल जाएगा। जी हाँ, हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण शरीर के लिए फायदेमंद हो सकता है। कैसे, आइए जानते हैं इसके कुछ लाभ के बारे में विस्तार से बात करते हैं। तो बात सामने आती है कि हल्दी, मेथी और अदरक के पाउडर का मिश्रण के क्या क्या फायदे हैं। तो एक्सपर्ट बताते हैं कि हमारे देश में मसालों का भंडार है। घर की रसोई हो या फिर किसी ढाबे और रेस्टोरेंट की रसोई, हर जगह आपको मसालों की खुशबू आसानी से मिल जाएगी। मसालों का कई मिश्रण ऐसा होता है जो आपके शरीर की बीमारियों को दूर कर सकते हैं। इन मिश्रण में मेथी, हल्दी और अदरक यानी सौंठ का मिश्रण है। मेथी, अदरक और हल्दी के मिश्रण से कई परेशानियों को दूर किया जा सकता है। अब जानते हैं कि अदरक, मेथी और हल्दी से सेहत को होने वाले फायदे क्या क्या हैं। बात सामने आती है कि उल्टी और दस्त में किस तरीके से आराम करता है। अगर आपको उल्टी या फिर जी मिचलाने जैसा अनुभव हो रहा है तो ऐसी स्थिति में अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण फायदेमंद हो सकता है। साथ ही इससे दस्त की परेशानी को कम करने में मदद मिल सकती है। अब बात करते हैं कि हड्डियों को मजबूत कैसे बनाएं। अदरक, मेथी और हल्दी का मिश्रण प्रोटीन, कैल्शियम, जिंक और कई विटामिन्स का संयोजन होता है जो आपकी हड्डियों की मजबूती को बढ़ावा दे सकता है। नियमित रूप से इस मिश्रण के सेवन से हड्डियों को विकास और मजबूती में मदद मिल सकती है। बात जोड़ों के दर्द में किस तरीके से आराम मिलता है, तो हल्दी, मेथी और अदरक में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होता है जो शरीर की सूजन को कम कर सकता है, साथ ही जोड़ों में होने वाले दर्द से आराम दिला सकता है। इन मसालों की तासीर भी गर्म होती है जिससे मांसपेशियों को रिलैक्स महसूस होता है। अगर आप अपने जोड़ों के दर्द से परेशान हैं, तो हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन जरूर करें। बात इम्यूनिटी को कैसे बूस्ट करें। शरीर की कमजोर इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए हल्दी, अदरक और मेथी के मिश्रण का सेवन कर सकते हैं। इसमें एंटीऑक्सीडेंट्स भरपूर रूप से मौजूद होते हैं जो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं। इससे संक्रमण और वायरल बीमारियों से दूर करने में मदद मिल सकती है। बात कफ की परेशानी को कैसे कम करें। तो जिन लोगों को कफ की परेशानी होती है उन लोगों के लिए अदरक, हल्दी और मेथी का मिश्रण फायदेमंद होता है। दरअसल इन मसालों का मिश्रण फायदेमंद होता है जिससे वात कफ की परेशानी कम हो सकती है, साथ ही अन्य बीमारियां भी दूर होती हैं। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। सुनो शारदा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा।
2: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूँ दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराए नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
3: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: महावारी के दौरान सामान्य लक्षण, आइए इनके बारे में जानते हैं। सिर दर्द, स्तनों में दर्द, पेट फूलना, ज्यादा पसीना आना, मांसपेशियों में दर्द या पेड़ू यानी कि पेट के नीचे में दर्द, ये सब महावारी के दौरान दिखाई देते सामान्य लक्षण हैं।
3: यदि महावारी के दौरान आपको पेट में दर्द हो रहा हो तो आप पेट दर्द में राहत के लिए एक बोतल में गर्म पानी भरें और एक तौलिए में लपेटकर उसे पेट पर रखें।
2: पेट की मालिश करें, अदरक की या कोई हर्बल चाय ले सकते हैं, कम नमक वाला आहार लें, पत्तेदार सब्जियां और फल खाएं जिसमें फाइबर अधिक मात्रा में होता है, तेज चलने वाली सैर करें। अगर इन सब से कोई मदद नहीं मिलती है और कोई अनियमितता दिखती है तो नजदीकी ANM या आशा से संपर्क करें।
3: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि न हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: What is this shit? मैं 3 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ.
1: So what? मैं काम में बिजी था यार. तुम मुझसे मिलना चाहती थी. मैंने तो नहीं बोला मेरी वेट करो.
0: You know, Shail, it really hurts.

0: दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 एफएम सुनो शारदा।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम मेरे यानी गगन के साथ। बात हेल्थ की में आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में, तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इन्फ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़ी से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: एरी सुशीला, तेरो बालक ऐसो रो रहे हो है, भूखो है का?
2: हाँ, भूख ही लग रही होएगी।
1: तो यार शहद दे दे।
2: हाँ, तू 2 मिनट बैठ, में लेके आई।
3: भाई पागल वागल हो गई है का? तो उससे कितनी बेर बोली है कि 6 महीने को होने से पहले बालक है, माँ के दूध के अलावा कुछ और न देना चाहिए। ये बालक की सेहत को घना नुकसानदायक है।
2: संगीता की भी तो बालक हुआ हो, वो तो शायद देख रही है अपने बालकन ने जब वाके दूध न उतर रहो।
3: डॉक्टर की बात तो तेरी बुद्धि में पता न क्यों घुसना रही है। वाने कही ना, यू सब देने से बालक बीमार हो जावे। बे मतलब के काम करवा लो बस। बालक के स्तनपान करवाने से बालक की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी होवे, जासु बालक संक्रमण, एलर्जी और बाकी बीमारियों से दूर रहवे। बालक में हड्डी वाली बीमारी होने का भी खतरा कम रहवे और माँ बालक के संबंध में मिठास भी आवे। और स्तनपान न करवाने वाली महिलाओं में जल्दी गर्भाधारण करने की संभावना बनी रहे, खून की कमी और डिलीवरी के टाइम पे अधिक रक्तस्राव की भी संभावना बनी रहे। स्तन और अंडा से कैंसर का भी खतरा ज्यादा हो गए, तो इसलिए अपने बालक के स्तनपान ही कराएं और 6 महीने का होने से पहले बालक है सिर्फ और सिर्फ माँ का दूध ही पिलाएं।
4: यूनिसेफ और सुनो शारदा 90.8 FM की तरफ से जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: अच्छा सोचिए, जरा सी चोट लगे तो आप क्या करेंगे?
2: दवाई की दराज में से पट्टी निकाल के लगा लूंगी।
1: अच्छा, हल्का सा बुखार हो तो?
2: दवाई की दराज में से गोली निकाल के खा लूंगी।
1: और बच्चे को दस्त लगे तो? क्या हुआ,
3: दवाई की दराज में जगह खत्म हो गई क्या?
4: दस्त के इलाज में देर हुई तो बच्चों के शरीर में पानी और पोषण की कमी जानलेवा हो सकती है, इसलिए दवाई की दराज में ORS और जिंक भी रखिए और दस्त शुरू होते ही इलाज शुरू कीजिए। दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
5: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, RJ बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूँ रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Film making a creative field hai. Aur yadi aap creative sochte hain तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
6: The world is here.
1: Beautiful track only on Suno Sharda 90.8 FM. Saw Shart Manzoor, singers Palak Muchal and Muhammad Irfan. Music and lyrics by Sanjeev Chaturvedi. Label Tips Official. So let's listen to it only on Suno Sharda 90.8 FM. So

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो, आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ, मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ, मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो, तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
0: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
4: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: फीलिंग स्ट्रांग।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
5: So where are you? The world is here at Sharda University.
6: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।

0: हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
1: बिल्कुल सोचा है पापा।
0: क्या सोचा है?
1: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
0: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
1: जी पापा।
0: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
1: हाँ पापा बिल्कुल।
2: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
3: So where are you? The world is here at Sharda University. शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: हाँ जी मैडम, किधर चलना है?
5: चले शहर घूमने।
4: चलो फिर।

0: Ali madam ayamıza. Yavrum ne?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय

0: आय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो
1: शारदा। हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
3: बिल्कुल सोचा है पापा।
2: क्या सोचा है?
3: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
2: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया?
3: जी पापा।
2: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
3: हाँ पापा बिल्कुल।
4: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
0: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: वैसे मुझे अमीरों से मिलने का कोई खास शौक नहीं है।
6: तो फिर मुझसे प्यार क्यों किया? हाँ
5: एक कमबख्त दिल है की गलती कर बैठता है और भुगतना हमको पड़ता है।
6: तो भुगतो।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: गर्भ के चौथे महीने से प्रसव के 6 महीने बाद तक हर माँ ले रोजाना संतुलित भोजन के साथ आयरन की एक लाल गोली। एनीमिया मुक्त भारत, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
1: सही पोषण, देश रोशन, नहीं रहे कहीं कुपोषण।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना

0: टीवी न छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी न हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है, और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं, तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प है। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है, जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है, जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है, जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है, जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और type 2 diabetes के खतरे को कम करता है, जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है, जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं उरन विजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: नमस्कार और स्वागत है आपका टीबी हारेगा देश जीतेगा की क्लास में। आज के सब्जेक्ट को ध्यान से सुनिए और टीबी को हराने में मदद कीजिए। टीचर जी।
2: जी
1: प्लीज कैरी ऑन।
2: थैंक यू सर। आज का सब्जेक्ट है टीबी के सिम्टम्स, यानी टीबी के आसार, जैसे कि 2 हफ्ते से ज्यादा खांसी, खांसी में खून का आना, कमजोरी और थकान लगना, वजन घटना, भूख कम लगना और अधिक पसीना छूटना।
1: और इन सब का मैं बताता हूं सार, मिलिए डॉक्टर से न करें विचार, अगर दिखें टीबी के आसार।
2: जी सर, बिल्कुल करेक्ट।
1: तो आइए टीबी से हम सब साथ मिलकर लड़ें। इस क्लासरूम का संदेश ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और टीबी को हराएं। टीबी हारेगा देश जीतेगा।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें, तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: भाभी लो मिठाई खाओ।
2: अरे किस खुशी में?
1: ओ, सीता क्लास में फिर से फर्स्ट आई है।
2: वाह, तेरी बेटी तो बिल्कुल तूफान मेल है। मेरी रिंकी तो हमेशा थकी थकी, नंबर भी कम आते हैं, थकान मेल कहने लग गए हैं सब उसे।
1: ओहो भाभी, रिंकी को अनीमिया तो नहीं?
2: अनीमिया?
3: अनीमिया यानी खून में आयरन की कमी, जिससे दिमाग सुस्त और शरीर की ताकत कम हो सकती है। इसीलिए बढ़ती उम्र के हर लड़की लड़के को हर हफ्ते आयरन की एक गोली लेनी चाहिए, पौष्टिक आहार के एक घंटे बाद। ये गोली सभी सरकारी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों में मुफ्त दी जाती है। याद रहे, आयरन है खास, करे शरीर और दिमाग का विकास।
2: ललिता लो मिठाई खाओ।
1: अरे वाह, रिंकी भी थकान से तूफान बन गई।
4: आओ बनाएं अनीमिया मुक्त भारत। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ RJ रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
2: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नवजात शिशु, लड़की हो या लड़का, उसकी एक समान देखभाल करें।
2: नवजात लड़की या लड़के में खतरे के लक्षण दिखते ही उसे बिना समय गवाए नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र या SNCU में ले जाएं।
1: एक वर्ष तक के सभी नवजात शिशु को स्वास्थ्य संबंधी कोई भी समस्या हो तो सरकारी अस्पताल में उपचार, दवाएं, सभी जांचें तथा जरूरत पड़ने पर रक्त, ये सभी सेवाएं निशुल्क दी जाती हैं।
2: और 102 एम्बुलेंस सेवा घर से अस्पताल और अस्पताल से वापस घर तक निशुल्क पहुंचाएगी।
1: जब होगी सही देखभाल तभी तो आएगी खुशियां बेमिसाल।
2: अधिक जानकारी के लिए नजदीकी आशा या नर्स दीदी को संपर्क करें।
1: शिशु की सही देखभाल से
2: फर्क पड़ता है। यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा जनहित में जारी।

0: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: ताज़ा खबर, कमला के घर में चार औरतें चोरी छिपे घुस गईं। कमला जी, कौन थी औरतें?
2: अरे मेरी सहेलियाँ, वो आई थी पता करने मेरी मुन्नी की तंदुरुस्ती का राज।
1: क्या है राज?
2: 6 महीने पूरे होते ही पेट पूजा। रसोई में जो भी हो, जैसे दाल चावल ले लो, इसमें कोई भी साग सब्जी मिला के पकाओ, इनको मीस के गाढ़ा बनाओ, और अगर घी हो तो ऊपर से थोड़ा घी मिलाओ और बच्चे को खिलाओ। दिन में 3 बार 100 ग्राम की कटोरी में।
3: स्तनपान विकल्प नहीं, संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
4: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
5: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
6: बिल्कुल सोचा है पापा।
5: क्या सोचा है?
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है, और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
5: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
6: जी पापा।
5: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
6: हाँ पापा बिल्कुल।
7: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
8: So where are you? The world is here at Sharda University.
4: Sharda School of Media, Film and Entertainment, जहाँ सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।